मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, सक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 9 जुलाई सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:52 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है खेत खलिहान में वार्ता जैविक खेती। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। आज के दौर में अधिक उत्पादन लेने के लिए हम कृषि रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। उर्वरक, कीटनाशियों, फफूदनाशियों, खरपतवार नाशियों या अन्य कृषि रसायनों के प्रयोग से हमारे पर्यावरण को, हमारे जल को काफ़ी क्षति हो रही है। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जल भी हमारा प्रदूषित हो रहा है और अंततः हम बीमार हो जा रहे हैं। हॉस्पिटल का खर्च जो है वो हमारा बढ़ जा रहा है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आवश्यक है कि हम जैविक खेती करें। जैविक खेती की आवश्यकता आज इसलिए ज़्यादा पड़ रही है कि हमारा

0: अनाज ही दूषित हो जा रहा है, हमारी सब्जियां जो हैं वो दूषित हो जा रही हैं कृषि रसायनों के प्रयोग से, और उनमें पोषक तत्वों की कमी भी पाई जा रही है, खास करके सूक्ष्म पोषक तत्वों की, तो उसके सेवन से हम खुद बीमार पड़ जा रहे हैं और बीमार पड़ने से हमारा खर्च भी बढ़ जा रहा है। तो हमें शुद्ध अनाज मिले, शुद्ध सब्जियां मिले, शुद्ध दूध मिले, इसके लिए आवश्यक है कि जैविक खेती को हम बढ़ावा दें, जैविक खेती करें। जैविक खेती में आवश्यक ये बात है कि हम मिट्टी से ले करके पौधे तक जो भी कृषि रसायनों का प्रयोग करते हैं उस कृषि रसायनों के प्रयोग में कमी लावें और अंत में कृषि रसायनों के प्रयोग को पूर्णतः समाप्त कर दें। तो इसके लिए जब हम खेत की तैयारी से बात शुरू करें तो रासायनिक उर्वरकों की जगह पर यदि हम गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी हद तक हम कृषि रसायनों के प्रयोग से बच जाते हैं, उर्वरकों के प्रयोग से बच जाते हैं। उससे भी अलग जो है वो आप बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, केंचुआ की खाद का आप प्रयोग कर सकते हैं, फिर सिटी कंपोस्ट जो कि शहरों के जो कचरे होते हैं उनसे तैयार किया हुआ कंपोस्ट जो है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो खाद तथा उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्व जो मिट्टी में जिनकी कमी देखी जा रही है उनकी भी आपूर्ति हो जाती है। फिर जब कीटनाशियों के प्रयोग की बात आती है, क्योंकि कीटनाशी सबसे ज़्यादा आपके जहरीले होते हैं और सब्जियों की फसल में खास करके जब कीटनाशियों का प्रयोग आप ज़्यादा करते हैं तो उससे जो है खाने वाले व्यक्ति को ज़्यादा नुकसान होता है जो सब्जियों का सेवन करते हैं, क्योंकि बहुत सी सब्जियों का सेवन हम सलाद के रूप में भी करते हैं, कच्चा भी खाते हैं, और उस समय उसकी विषाक्तता जब होती है तो हमें काफ़ी नुकसान होता है। तो सब्जियों की फसल में हम बर्मी कंपोस्ट या गार्डन में भी हम बर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। कीटनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए जो प्राकृतिक विधि है, जो अन्य विधियां हैं, उस तरह से कीटनाशियों के प्रयोग को कम करके कीड़ों पर आप नियंत्रण भी कर सकते हैं। जैसे आपके खेत में कीड़े दिखाई दे रहे हैं तो हाथ से चुन करके भी उन्हें आप नष्ट कर सकते हैं। खेत में जगह जगह पर डंडे गाड़ दें और डंडे पर चिड़ियों के बैठने की व्यवस्था यदि कर दें तो खेत में यदि चिड़ियाँ आएंगी, पक्षी यदि खेत में आप आमंत्रित करते हैं तो वे स्वतः जो है कीड़ों को चुन करके खा जाते हैं, और इससे जो है बिना कीटनाशियों के प्रयोग के, बिना पैसे के आपका कीट नियंत्रण हो जाता है। उसी तरह से खरपतवार नाशी के लिए तो निकाई गुड़ाई आप करें, या जब रोग होते हैं तो रोग जनकों के नियंत्रण के लिए या रोग जनकों के रोकथाम के लिए भी आप प्राकृतिक पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं। गोमूत्र से बने हुए कीटनाशी पदार्थ, गोबर से बने हुए कीटनाशी पदार्थ का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैविक खेती में धीरे धीरे कृषि रसायनों के प्रयोग को कम करके आप अपने जीवन को भी सुरक्षित रख सकते हैं और फसल उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं।
1: खेत खलिहान में अभी आपने सुना वार्ता जैविक खेती। वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 6 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय का गर्मजोशी से स्वागत के लिए आभार व्यक्त करते हुए इसे अविस्मरणीय बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वागत समारोह में स्थानीय कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
1: सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने बताया कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। उच्चायुक्त ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग में वृद्धि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की मजबूती और विविधता दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश में कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकता है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में कल 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खुले समुद्र में मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र जारी करेंगे। श्री राधाकृष्णन ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तावेज का भी विमोचन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खुर्दा के 15वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के चालू वर्ष में 7% की वृद्धि दर के अनुमान के साथ भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है। IMF द्वारा कल जारी की गई प्रमुख अर्धवार्षिक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार अगले वर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 6.4% की मामूली वृद्धि का अनुमान है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने CSIR UGC NET जून 2026 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा 17 और 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.csirnet.nta.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। अमरीकी सेना ने कहा है कि वह ईरान पर फिर से हवाई हमले कर रही है। ये हमले एक दिन पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान द्वारा जहाजों पर किए गए हमलों के बाद शुरू हुए। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों राजस्थान हरियाणा और पंजाब में पहुंचने की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में रात से वर्षा जारी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन मनन।

महात्मा गांधी समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के हिमायती रहे हैं। यही कारण भी रहा है कि उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों में समाज का ये वर्ग शोषित नहीं रहा। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक वृत्त का निर्माण तकनीकी भाषा में बिंदुओं के कई समुच्चयों से होता है। अगर हम किसी एक प्रारंभिक बिंदु को समाज का सबसे अंतिम शोषित व्यक्ति मान लें, तो वो बिंदु जैसे जैसे आगे बढ़कर वृत्त के आकार में परिवर्तित होगा, वैसे वैसे वो व्यक्ति समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होता जाएगा। लेकिन वृत्त के निर्माण के क्रम में जो सबसे अंतिम बिंदु होगा, उसे उस प्रारंभिक बिंदु से मिलना ही होगा, तभी वृत्त का निर्माण संभव होगा। गांधी जी की विचारधारा इसी वृत्त की तरह है। लेकिन वर्तमान समस्या की जड़ को अगर हम इस वृत्त के माध्यम से समझना चाहें, तो वर्तमान समाज इस वृत्त को पूरा ही नहीं करना चाहता, जबकि वृत्त के निर्माण के लिए ये आवश्यक है कि समाज के मुख्य धारा के लोग समाज के अंतिम शोषित व्यक्ति को अपने में समाहित करें, तभी एक सभ्य समाज का निर्माण होगा, जिसमें व्यक्ति विशेष अपने दुखों में अकेला नहीं होगा, बल्कि एक साथ होगा। आज पूरा विश्व महात्मा गांधी के इन विचारों को समझने और पालन करने में लगा है। जरूरत है तो बस इन विचारों को आत्मसात करने की। लेकिन हम और आप इन विचारों को आत्मसात करने की बजाय सिर्फ वैचारिक स्तर पर ही रखना चाहते हैं। हम वृत्त को पूरा करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखाते, बल्कि वृत्त में सबसे आगे रहना चाहते हैं। यहां हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वैचारिकता को धरातल पर लाना ही एकमात्र रास्ता है। चूंकि दुनिया व्यवहारिक है, ये विचारों को मूर्त रूप में लाने में विश्वास करता है। जो विचार धरातल पर नहीं उतर सके, उन्हें दुनिया भूल जाती है। हमें चाहिए कि हम विचारों को सिर्फ टेबल तक ही सीमित नहीं रखें, बल्कि उसे जन जन तक पहुंचाएं, ताकि समाज का वो वर्ग जो शोषित है, उनकी स्थितियों में सुधार आ सके। हमारा इतना प्रयास ही उनके लिए विकास के नए द्वार खोल देगा। आइए इस पर चिंतन करें।

अभी आपने सुना चिंतन मनन, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए देश वंदना।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अब आइए आपको सुनवाते हैं अनूप जलोढ़ा के स्वर में एक और भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अब आइए आपको सुनवाते हैं अनूप जलोटा के स्वर में एक और भजन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:35 हुए हैं। स्वास्थ्य चर्चा में सुनिए भेंट वार्ता, कंजक्टिवाइटिस का उपचार। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा।
1: श्रोताओं के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे, एक बीमारी होती है कंजक्टिवाइटिस जिसे लोग कहते हैं, वो है क्या?
2: कंजक्टिवाइटिस एक्चुअली कंजक्टिवा का इन्फ्लामेशन है।
1: अच्छा, ये कंजक्टिवा जो है कंजक्टिवा
2: हाँ।
1: अच्छा, कंजक्टिवा कहाँ पे होता है, आँख का कोई अवयव है?
2: कंजक्टिवा आँख का सबसे बाहरी परत होती है जो कि कई भागों में बटा होता है। पलक वाले भाग को कहते हैं, उसको टार्सल प्लेट के ऊपर रखता है, उसे बल्बर कंजंक्टिवा।
1: जी जी, तो इसमें मतलब लाली आ जाना और सूजन हो जाना, यही कहने का आशय
2: जी
1: यही है, तो ये क्यों होता है?

0: ये किसी बैक्टीरिया के संक्रमण से हो सकता है, वायरस के संक्रमण से हो सकता है, या आँखों में कोई फॉरेन बॉडी चला जाए उससे हो सकता है, या किसी एलर्गन से जाने से, जैसे कि पराग कण या धूल
1: जी
0: कण
1: जी
0: जाने से भी हो सकता है।
1: तो ये यदि हो जाए तो कैसे समझ में आएगा कि हमको ये हो गया है?
0: कंजंक्टिवाइटिस का मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है आँखों में लाली और पानी चलना, और बाद में इनमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में म्यूकस या पुरलेंट डिस्चार्ज होने लगता है, जिससे आँखें चिपक जाती हैं।
1: जो मतलब कि आँख से जिसको हम कहते हैं किची आ रहा है, उस टाइप की स्थिति होती है, एक पीला पीला, और ये बताता है कि आँख में किसी तरह का संक्रमण हो गया है, आँख चिपकी
0: हाँ,
1: हुई
0: पराया
1: रहती है।
0: बैक्टीरियल में ही पीला पीला वो निकलता है डिस्चार्ज।
1: और जब वायरल होगा तो नहीं निकलेगा,
0: वायरल में पानी चलेगा,
1: अच्छा ज़्यादा
0: चुभन
1: पानी
0: रहती
1: चलेगा,
0: है ज़्यादा
1: जी
0: उसमें।
1: चुभन रहती है। तो ऐसी स्थिति में जब चुभन से लोग परेशान हो जाते हैं तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए?
0: उसमें टाइप ऑफ कंजंक्टिवाइटिस के अनुसार उसका ट्रीटमेंट होता है। जैसे
1: जी जी
0: बैक्टीरियल हो
1: जी
0: तो एंटी माइक्रोबल ड्रग दिया जाता है, जिसे
1: जी जी
0: एंटीबायोटिक ड्रॉप कहते हैं।
1: जी जी जी
0: उसमें तरह तरह के एंटीबायोटिक्स आजकल आने लगे हैं,
1: जी जी
0: जैसे जेंटामाइसिन
1: जी जी
0: या सोफ्रामाइसिन
1: जी जी
0: या मॉक्सीफ्लोक्सासिन,
1: जी
0: डोब्रामाइसिन
1: जी
0: या बेसीफ्लोक्सासिन, इस तरह के दवाई
1: जी जी
0: उनके सिवियरिटी के अनुसार हम देते हैं।
1: अच्छा। और जब वायरल हुआ करता है तब?
0: वायरल के लिए पहले एसीवीर आई ड्रॉप आया करता था,
1: जी जी
0: अब उससे इम्प्रूव्ड गैनसाइक्लोविर ड्रॉप या वाइंटमेंट यूज़ करते हैं।
1: तो इस तरह से मान लीजिए हम लगा लेंगे एक बार, और आँख कितने दिनों में ठीक हो जाएगी?
0: बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूजुअली 4 से 5 दिन में ठीक हो जाएगा, वायरल को ठीक होने में कुछ अधिक समय लगता है।
1: आमतौर पर लोग इसी को कहते हैं, आँख आ गई है, उसकी आँख आ गई है, वही यही चीज़ है क्या,
0: हाँ
1: आँख
0: बिल्कुल,
1: आना?
0: यही आपने सही फरमा
1: तो उस
0: कहा।
1: समय लोग कहते हैं, अरे किसी को देखो मत, उसको कोई मत देखो, नहीं तो तुम्हारा भी आ जाएगा, इसमें क्या बात है, ये
0: ना
1: ज़रूरी है?
0: ऐसी बात नहीं है, जब तक कंटामिनेशन नहीं होगा, छूने पर ही ये हो सकता है इन्फेक्शन,
1: जी, तो किसी को देखने से कोई दिक्कत नहीं
0: कोई नहीं
1: होती
0: है।
1: है। अच्छा, उस समय जिसकी आँख लाल हो जाए, क्या उसको धूप से बचाना भी चाहिए आपको?
0: हाँ, धूप देखने से आँखों में चुभन और बढ़ जाती है, पीड़ा होने लगेगी, इसलिए धूप से तो बचाव करना ही होगा।
1: और हो सके तो एकदम तेज धूप के समय घर से बाहर नहीं निकलें,
0: या निकलें तो सनग्लासेस का यूज़ करें।
1: करते हुए निकलना चाहिए।
0: जी
1: और इससे मान लीजिए गर्मी का मौसम है, और क्या बरसात के जो शुरुआती समय है उस समय भी हो सकता है?
0: हाँ, बरसात में भी बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस पड़ाया बहुत ही कॉमन है ये।
1: तो हो नहीं तो हमारे श्रोता भाई क्या कर सकते हैं, कैसे रहेंगे कि उनको हो ही नहीं?
0: नहीं होने के लिए है कि अगर किसी को कंजंक्टिवाइटिस हो गया है
1: जी
0: तो उनकी आँखों को टच करने के बाद साबुन से हाथ धोएं, तभी अपनी आँख को अपना टच करें, या अगल बगल में किसी को हो गया है तो बचाव के लिए एंटीबायोटिक ड्रॉप प्रयोग करना शुरू कर दें, वो दिन में दो दो बूंद चार
1: अच्छा,
0: बार
1: पहले ही से
0: पहले से ही
1: नहीं भी हुआ है तो ले सकते हैं।
0: ले
1: जी,
0: सकते हैं।
1: तो इस तरह से करके बचाव रखा जाए।
2: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आपने सुना भेंट वार्ता, कंजक्टिवाइटिस का उपचार। भेंट वार्ता का अर्थ है डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की अगली कड़ी।

सीता जी की खोज में सारा वानर समाज जंगलों की खाक छान रहा है, किंतु उनका कोई सुराग नहीं मिलता। वन वन भटकते हुए एक दिन सबको बड़ी प्यास लगी, किंतु पानी का कोई स्रोत दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था। हनुमान ने भांप लिया कि यदि पानी नहीं मिला तो सबके प्राण जाएंगे।

उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर पृथ्वी के गर्भ में एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गुफा के ऊपर अनेक पक्षी मंडरा रहे थे, अनेक उसमें प्रवेश कर रहे थे। हनुमान पूरे वानर समाज को लेकर उस गुफा में पहुंचे।

रामचरितमानस गान संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण, इसमें सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे से लेकर 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे रसरंग, मौसम सूचना, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज के दिन का इतिहास, कथा सागर।

संगम फिल्म संगीत। 9:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नहीं पुराने। कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे 9:30 पर। कलाकार होंगी सीमा बनर्जी। 10:00 से आप सुनेंगे फिल्म संगीत पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर आप सुनेंगे रेडियो नाटक परिणय पथ। लेखक होंगे श्री सतीश मोदी। प्रस्तुतकर्ता होंगी नौमी शांति हेम्ब्रम। फिल्म संगीत नई फिल्म से आप सुनेंगे 11:00 से। 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे शहरी महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी श्री पार्वती के। दोपहर 1:00 आप सुनेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार होंगे कपिल देव ठाकुर। रेडियो धारावाहिक गंगा के सुरताल की 12वीं कड़ी आप सुनेंगे 1:30 पर। इस रेडियो धारावाहिक की लेखक होंगे अशोक अंचल। प्रस्तुतकर्ता होंगे दाशमती चत्तर एवं अशोक सरण। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। 3:00 से आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम तरंग। कलाकार होंगे कविता पौडवाल एवं जसवंत सिंह। समूह स्वर में देशभक्ति गीत आप सुनेंगे 3:20 पर। 3:25 से लेकर शाम 5:00 तक विविध भारतीय राष्ट्र सेवा के कार्यक्रमों का प्रसारण होगा हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शाम 5:00 से आप सुनेंगे युवा वर्गों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे सौरभ कुमार। 5:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 6:00 से। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 7:10 पर आप सुनेंगे लोकगीत। कलाकार होंगी रेणु भारतीय। 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार होंगे राकेश कुमार। फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीकंधा आप सुनेंगे रात्रि 8:00 से। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। शास्त्र संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10:00 से। कलाकार होंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाना सफर।

अभी आपने सुना हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 6:55 होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

मीडिया वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार प्रियदर्शन।

गुड मॉर्निंग विक्रम शिला दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम में जिसे आप रोजाना सुनते हैं सुबह के 7 बजे से लेकर 7:55 तक। और श्रोताओं, आज मैं हूं आप सभी के साथ आपका रेडियो दोस्त केशव, और आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह प्रोग्राम जानकारियों से भरा है,

जहां पर हम जानते हैं बहुत सी जानकारियों को, जैसे कि मौसम सूचना, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज के दिन का इतिहास एवं अन्य जानकारियां। और श्रोताओं, आप सभी को पता है कि हमारा ये दैनिक कार्यक्रम दो भागों में हम आपको सुनवाते हैं, यानी कि कार्यक्रम के पहले भाग में हम आपको सुनवाते हैं रसरंग, और रसरंग में आज हमारे साथ गायक कलाकार हैं गांधी कुमार मिस्त्री। साथ ही साथ 7:20 पर हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे आज के दिन कथा सागर में कहानी मुर्दा, और कथाकार होंगे शिव कुमार शिव। साथ ही साथ कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव में हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत और जानेंगे अन्य शेष जानकारियों को। तो श्रोताओं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे और आकाशवाणी भागलपुर से जुड़ गए होंगे अपने पसंदीदा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला से। तो आइए बिना किसी देरी के अपने कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत और सुनते हैं गायक कलाकार गांधी कुमार मिस्त्री के द्वारा गाया यह भजन।

0: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रम शिला। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं गायक कलाकार गांधी कुमार मिस्त्री के द्वारा गाया यह गीत। लेकिन इस गीत से पहले कुछ जानकारियों को सुनते हैं।
1: इट्स रेनिंग ऑफर्स ऑन द न्यू एज बलेनो दिस सीजन। Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexus showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply. Nexus.
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
3: 8700001424।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जानते हैं मौसम सूचना के बारे में। आपको बता दें, मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी कि 9 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 85% तथा दोपहर में 50 से 55% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पूर्व हवा चलने का अनुमान है। श्रोताओं, तो ये थे मौसम सूचना के बारे में जानकारी। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम सुनते हैं गायक कलाकार गांधी कुमार मिस्त्री के द्वारा गाया यह भजन।

0: श्रोताओं, रसरंग में अभी आपने सुना गायक कलाकार गांधी कुमार मिस्त्री को। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कथा सागर में कहानी मुर्दा। कथाकार हैं शिव कुमार शिव।
1: स्टेशन के बाहर सामने वाले लॉन में रिक्शा खटाल के ठीक बगल में वह जो एक लड़का नीले रंग की पैंट और चारखाने वाली कमीज पहने बैठा है, वह है छोटू उस्ताद। उसके चेहरे के भोलेपन और कम उम्र पर आप न जाएं, धोखा खा जाएंगे। पूरा काइया है, चालाक और चुस्त, यानी कि आंख बंद और डब्बा गायब। उसने आज तक कईयों को धोखा दिया है, लेकिन कभी धोखा खाया नहीं। आप कभी उसके फेर में पड़े नहीं हैं। चालाकी और चालबाजी में वो आपके सोचने से भी ज्यादा कर गुजरने की हिमाकत रखता है। अभी लीजिए, इस वक्त रात के 10:30 हैं। स्टेशन पर किसी भी गाड़ी आने का कोई वक्त नहीं। बरौनी और दानापुर जा चुके हैं। अब सिर्फ 12:55 की अपर इंडिया आनी बाकी है। स्टेशन पर इक्के दुक्के लोग आते जाते लोग हैं। रिक्शे वाले एक कोने में टायर जलाकर आग की गर्मी ले रहे हैं। छोटू उस्ताद ने बीड़ी का आखिरी कस खींच करके बीड़ी फेंकी, सहज भाव से उठा और लैम्प पोस्ट के पास जाकर खड़ा हो गया। इसी लैम्प पोस्ट से थोड़ा हटकर एक कफन ओढ़े मुर्दा पड़ा है। मुर्दे के कफन पर पड़ी है ढेर सारी रेजगारी, कुछ मुड़े तुड़े एक एक दो दो के नोट। धीरे धीरे सरकता खिसकता छोटू उस्ताद मुर्दे के नजदीक जाता है और धीरे से फुसफुसाता है, उठ जाओ उस्ताद, लाइन क्लियर है। मुर्दा हरकत में आता है, हड़बड़ा कर उठता है, रेजगारी समेत पूरा कफन समेट लेता है, फिर तेजी से चलने लगता है। सड़क पार कर वो एक गली में मुड़ जाता है। गली दर गली पार करने के बाद वह एक झोपड़ी के सामने रुक जाता है। झोपड़ी में भनभनाहट और गाली गलौज की कभी अस्पष्ट और कभी अस्पष्ट आवाजें आ रही है। वह रुका खड़ा है, उसके बगल से आवाज आती है, आ गए उस्ताद। ये किसी और की नहीं, छोटू की ही आवाज है। सब मामला फिट कर दिया उस्ताद, आधे घंटे में ये कचरा पट्टी खलास, तब तक चलकर हनुमान मंदिर के बरामदे पर

0: गैस मिला लें, गिनो उस्ताद, छोटू ने कहा। हाथ मत लगाना, चुपचाप बैठा रहा। चुप्पी का साया गहरा हो गया। अब सिर्फ रेजगारी गिनने की आवाज हो रही थी। उसे कुछ खाने के वास्ते बोला कि नहीं, रेजगारी गिनते हुए छोटू से पूछा। फिकर नॉट उस्ताद, सब मामला फिट, 8 तंदूरी, 2 अंडा करी, आलू का भजिया बनवा दिया है। अब तक सारी रेजगारी वो गिन चुका था। उसने उसमें से थोड़ी सी रेजगारी गिनकर अलग की और यह ले कहकर छोटू की तरफ बढ़ा दी। कितने उस्ताद? छोटू ने पूछा। 15 रुपये 30 पैसे, कुल 60 रुपये 90 पैसे आए। 25% के हिसाब से 15 रुपये 22.5 पैसे हुए तुम्हारे। 7.5 पैसे ज़्यादा जा रहे हैं हिसाब में। अरे हिसाब करना तो कोई तुमसे सीखे उस्ताद, कहाँ फंस के रह गए गुरु। तुम्हें तो कहीं चुप रह साले, खाना खा ले। छोटू चुप हो गया। चौकी पर बैठते हुए आदमी ने छोटू से सवाल किया, आज क्या हुआ? होगा क्या उस्ताद, वही अलग अलग पब्लिक का अलग अलग बात। जानता उस्ताद, एक आदमी फर्स्ट क्लास सूटबूट में आया, तुमको देख के बोला, अरे गाड़ी से उतरते ही मुर्दा, अच्छा साइन है। फिर अपनी जेब से 1 का नोट तुम्हारे ऊपर फेंक कर चला गया। अब वो आदमी और छोटू दोनों खाने में लगे थे। उस्ताद थोड़ा सा माल मेरे को भी दो ना। क्या बोला बच्चा, इस उम्र में शराब पिएगा, जान मार दूंगा तेरी। किन बुरी लतों की कमी रह गई है तुझमें जो इसे भी लगाना चाहता है। उस्ताद गुस्सा क्यों होता है उस्ताद, अब उनकी जिंदगी में क्या धरा है, न माँ न बाप, जाने किस रईस की मस्ती का डिग्री है अपुन। तुम्हारे पहले गूंगा उस्ताद था अपुन का, क्या टेलर था उस्ताद, जेब काटने में जवाब नहीं, शागिर्दी किया उसका उस्ताद, आज अपुन के पास इलम है, आज तक पकड़ाया नहीं उस्ताद। गूंगा उस्ताद के साथ बम्बई गया, बम्बई में खूब मस्ती किया उस्ताद, लेकिन बम्बई अपने को माफिक नहीं बैठा। फिर उस्ताद इधर ही कुछ चलाया, इधर ही बड़ा हुआ ना उस्ताद, आखिर दिन इधर ही रहा। इधर गली चौराहा आदमी सबसे मोहब्बत है उस्ताद, गूंगा उधर ही रह गया, फिर तुम मिल गया उस्ताद। तुम्हारा तो आरट गजब है उस्ताद, लेकिन उस्ताद सच्ची बोल, ये बिजनेस भी सड़ेला है ना, मुर्दे की रोटी खा रहा है ना अपन। चुप साले, संघर्ष। लेकिन वो किससे संघर्ष कर रहा था? भटनागर का मुर्दा अभी भी उसे अपलक देखते जा रहा था। उसके सामने लेटा, चौकी पर रखी बोतल उसके पांव के ठोकर लगने से चौकी से जमीन पर गिर चुके थे। उसे लगा कि कमरे के चारों तरफ बर्फ की बड़ी बड़ी सिल बिखरी पड़ी है, उन सिलों पर न जाने कितने मुर्दे फिसल रहे हैं। उसकी चौकी एक तख्त में बदल चुकी थी, वह ऊंचा उठा हुआ तख्त, उस तख्त के चारों तरफ बिछी बर्फ, फिसलते ये मुर्दे। वो उन मुर्दों को देख रहा था, ये सारे मुर्दे तो उसके पहचाने हुए हैं, भटनागर, सिन्हा, तिवारी, घोष, दीक्षित और जार्ज के मुर्दे, ये सारे मुर्दे तैर रहे थे। वो चौकी पर से हाथ मारने लगा किसी एक मुर्दे को पकड़ने के लिए, लेकिन ये मुर्दे उसके हाथ नहीं आते, फिसल जाते थे। उसने देखा अब सिर्फ बर्फ पर फिसलने वाले मुर्दे ही नहीं थे, मुर्दों की एक झालर से लटक गई थी। इतने मुर्दे कहाँ से आ गए ये सब? अब तो उसकी चौकी भी मुर्दों से पट गई थी। उसके मन में एक सवाल उठा, मैं क्या हूं, जिंदा या मुर्दा, मुझे क्या होना चाहिए? क्या हुआ उस्ताद, ये चिमनी बुझ गई क्या? ठहरो, अब भी माचिस जलाता है अपुन। उस्ताद पहले तो साले ने बहुत बम मारा, माल दे ही नहीं रहा था, बहुत बोला उस्ताद तभी दिया। उसने माचिस से चिमनी जला दी, फिर चिमनी जरा सी जलकर फिर बुझ गई। अरे इसका तो तेल खलास हो गया उस्ताद, छोटू उस्ताद ने चिमनी उठाई और कमरे के बाहर चला गया। कमरे में धूप अंधेरा था, अंधेरे झोपड़े में एकदम सन्नाटा। ओह कितना भयावह ही है, कितना यातनादायक। उसे अचानक याद आते हैं अपने आदर्श स्वप्न, स्वप्न ही तो रह गए ये सब, यूं कहिए बेकार बेफजूल की बकवास। अब तो वे आदर्श जिन्हें वो संजोए हुए था वैचारिक सड़ाव से लग रहे थे, कुछ करने की हूक थी, लेकिन उसकी बातों को तो कुछ स्थापित आदर्शों के पुतलों ने जनविरोधी करार दे दिया। फिर भी डटा रहा, संघर्ष को वो जीवन मानता था, लेकिन वो उन लोगों में फंस गया जो क्रांतिकारी शब्दों का शोर कर एक ऐसा यंत्र ईजाद करने में लगे थे जिसमें उसे भी एक पुर्जा बनाकर फिट कर दिया जाए। जलपान की एस्प्रेसो कॉफी के साथ जमी उन लोगों की चौकड़ी ने निर्णय लिया कि गोपाल सिंह नेपाली की सहायता कोष की स्थापना की जाए। कितने उदार विचार थे इनके। स्वर्गीय कवि के परिवार के लिए सहायता, सेठों साहूकारों पूंजीपतियों से चंदे लिए गए, 50,000 की रकम इकट्ठा की इन्होंने। भटनागर कहता था, अरे अपने लिए तो सभी जीते हैं यार, जीना तो दूसरों के लिए होता है। फिर डोकानिया धर्मशाला में एक छोटी सी जनसभा बुलाई गई, यही कोई 30-40 आदमी हो गए। इन लोगों के अलावे सभी अनजाने थे। वे लोग दुशाला और 1,000 रुपये लेकर उन तालियों से घिरा सहानुभूति का पात्र उनका लड़का चला गया। ये सारी रकम डकार गए, एक बिलखते परिवार की रकम डकार गए ये सब। वो कुछ विरोध नहीं कर रहे इसलिए उसका भी एक सूट सिलवा दिया उन लोगों ने। सिन्हा ने कहा, ये सब क्या हो रहा है यार? सिन्हा ने जवाब दिया, सब ऐसे ही चलता है यार, स्थिति के अनुसार विषयों का चुनाव होता है। आज तुम जो भी देख रहे हो वो स्थितियां प्रदर्शनी हैं, जब जैसी स्थिति हो उसमें वैसा ही फिट बैठ जाओ। लेकिन क्या ये अन्याय नहीं है? हम किसी की मौत को नहीं भुना रहे हैं। अन्याय वन्याय कुछ नहीं होता है यार, सब ऐसे ही चलता है। मौत को कौन नहीं भुना रहा? मौत में प्रदर्शित करते हैं लोग सहानुभूति, फिर दिखाते हैं कि सहानुभूति की बहुत सी पर्चियां जमा हो गई हैं तो जाकर इन्हें कैश करा लेते हैं। हम लोग तो बहुत छोटे हैं यार, इसलिए इन मुर्दों की सहानुभूति से काम चला रहे हैं। बाकी हमसे तेज तर्रार लोग तो मुर्दों की सहानुभूति से सरकार बना रहे हैं, देश चला रहे हैं।
1: अभी आपने सुना कथा सागर में कहानी मुर्दा। कथाकार थे शिव कुमार शिव। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, हम कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव में पहुंच चुके हैं और अब हम आपको इस पड़ाव में सुनवाएंगे फिल्म संगीत और जानेंगे अन्य शेष जानकारियों को। और अन्य शेष जानकारियों में सबसे पहली जानकारी है आज के दिन के इतिहास के बारे में, यानी कि आज की तारीख है 9 जुलाई और 9 जुलाई को हमारे देश दुनिया के इतिहास में क्या कुछ घटनाएँ घटित हुई हैं इनके बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि साल 1816 ईस्वी में अर्जेंटीना को स्पेन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। साल 1819 ईस्वी में सिलाई मशीन के आविष्कारक एलाइस हाउ का जन्म आज ही के दिन हुआ था। साल 1875 ईस्वी में भारत के सबसे पुराने और प्रमुख शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE की स्थापना हुई थी। साल 1925 ईस्वी में आज ही के दिन वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण का जन्म हुआ था, जो आगे चलकर हिंदी फिल्म में गुरुदत्त के नाम से जाने गए। उन्हें हिंदी फिल्म जगत के सबसे कमाल के कलाकारों में से एक माना जाता है। साल 1938 में आज ही के दिन अभिनेता संजीव कुमार का जन्म हुआ था। साल 1949 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP की स्थापना आज ही के दिन हुई थी। और श्रोताओं, आपको बता दें कि साल 2011 में दक्षिणी सूडान अफ्रीका का एक नया राष्ट्र बना और सूडान से अलग होकर रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान के रूप में दुनिया के मानचित्र पर उभरा। तो श्रोताओं, ये थी देश दुनिया के बारे में आज के तारीख में घटित कुछ प्रमुख घटनाएं जिनके बारे में हमने जाना। और अब आइए आपको सुनवाते हैं फिल्मी गीत। कार्यक्रम में पहला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म ये जवानी है दीवानी से। इस गीत को आवाज दिया है विशाल ददलानी एवं रेखा भारद्वाज ने।
2: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

0: श्रोताओं, अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं कुछ जानकारियों को।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है।
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new

0: Leno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply. Nexa.
1: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए कार्यक्रम में आगे चलते हुए हम आपको रेल सूचना से अवगत करवाते हैं। जानते हैं गाड़ी संख्या 15553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस, जिसका सही समय है सुबह 7:50 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 13016 हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस, जो कि रोज़ाना चलती है और इस गाड़ी का सही समय है सुबह 7:55 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 12368 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस, इस गाड़ी का सही समय है आगमन का सुबह 8:15 और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 1:40 की देरी से चल रही है। गाड़ी संख्या 15658 ब्रह्मपुत्र मेल, जिसका सही समय है आगमन का सुबह 8:05 और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 20 की देरी से चल रही है। गाड़ी संख्या 53416 जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर, जिसका सही समय है आगमन का सुबह 8:37 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन पहुँचेगी। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस, जिसका सही समय है आगमन का सुबह 9:00 और यह गाड़ी अपने समय से 15 की देरी से चल रही है। गाड़ी संख्या 13409 मालदा की ओर इंटरसिटी, जिसका सही समय है आगमन का सुबह 9:35 और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 30 की देरी से चल रही है। गाड़ी संख्या 13241 बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी, जिसका सही समय है आगमन का सुबह 10:15 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन पहुंचेगी। और गाड़ी संख्या 12367 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस, जो कि रोज़ाना चलती है और इस गाड़ी का सही समय है सुबह 11:55 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। तो श्रोताओं, ये थी रेल सूचना के बारे में जानकारी। और अब आइए आपको सुनवाते हैं ये फिल्मी गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म हीरोइन से। इस गीत को आवाज़ दिया है बेनी दयाल एवं श्रद्धा पंडित ने।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला, और मैं हूं आप सभी के साथ आपका रेडियो दोस्त केशव। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जानते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों के बारे में। सबसे पहली सुर्खी है कि बिहार को मिलेगा नया नेशनल हाईवे, सुपौल दरभंगा NH को केंद्र से मिली मंजूरी। बिहार में सुपौल दरभंगा के बीच बैरिया मंच व मधेपुरा होते हुए नया नेशनल हाईवे बनेगा, जिसे केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पत्र भेजकर जल्द DPR तैयार करने और रिपोर्ट मंत्रालय को उपलब्ध कराने को कहा है, जिसके बाद परियोजना आगे बढ़ाई जाएगी। वहीं अगली सुर्खी के बारे में बात करें तो अगली सुर्खी है कि पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का हुआ सफल परीक्षण। DRDO ने बुधवार को चांदीपुर यानी ओडिशा में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी ITR पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया। रॉकेट का टेस्ट ज़रूरत के हिसाब से तय 60 किलोमीटर की कम से कम रेंज के लिए किया गया। DRDO ने कहा कि ट्रायल के दौरान LRGR ने ट्रांजेक्टरी का सही तरीके से पालन करते हुए एकदम सटीक निशाने पर हिट किया। वहीं अगली सुर्खी के बारे में बात करें तो NCERT 9वीं की दो नई किताबें अगस्त में मिलेंगी। NCERT की कक्षा 9 की गणित व सामाजिक विज्ञान भाग 2 की किताबें अगस्त 2026 तक उपलब्ध हो जाएंगी। बाकी सभी पुस्तकें जारी कर दी गई हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 1 से 8 तक की सभी नई किताबें प्रिंट व डिजिटल रूप में उपलब्ध हैं। कक्षा 10 और 11 की संशोधित किताबें 2027-28 सत्र से लागू होगी। वहीं अगली

सुर्खी के बारे में बात करें तो क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना में भिड़त। फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हरा कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। तो ये थी समाचार पत्रों की सुर्खियां। और अब आइए श्रोताओं, जानते हैं एक और सुर्खी के बारे में। नए साइबर डीएसपी विनय रंजन ने संभाला पदभार, बोले जागरूकता की सबसे बड़ा बचाव। भागलपुर साइबर थाना के नए डीएसपी विनय रंजन ने बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान नववर्तमान साइबर डीएसपी कनिष्क श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। तो श्रोताओं, हमने जाना समाचार पत्रों की सुर्खियों के बारे में, और अब आइए आपको सुनवाते हैं ये फिल्म गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म लव ब्रेकअप जिंदगी से। इस गीत को आवाज दिया है सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सलीम मर्चेंट एवं श्रद्धा पंडित ने।

श्रोताओं, घड़ी की सुइयां गवाही दे रही हैं कि अब वक्त हो चला है आपसे इस कार्यक्रम से विदा लेने का। हमारा आज का सफर गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में यहीं तक था। जाते जाते बस यही कहूंगा कि कल ठीक इसी समय और इसी सुबह हम फिर आपसे मिलेंगे इसी समय पर। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही आकाशवाणी भागलपुर से जुड़े रहिए। मैं केशव लेता हूं आप सभी से इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आपने सुना मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

0: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला,
1: स्वागत है आपका सुबह की सुहानी धूप में। ओस की नन्ही नन्ही बूंदों के साथ आकाशवाणी भागलपुर आपके लिए लेकर आया है जानकारियों का खजाना।
2: कई स्थापित कार्यक्रमों के साथ हम आपको लिए चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में।
1: रूबरू होंगे आप खबरों से,
2: देश दुनिया की ताज़ा जानकारी और स्थानीय हलचलों को आप जान पाएंगे एक नए अंदाज में।
1: और ये सब होगा आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में।
2: सुनिए हर दिन प्रातः 7 बजे से 7:55 तक
1: आकाशवाणी भागलपुर से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर।
2: भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनों का हाल जानिए,
1: साथ ही हाल जानिए मौसम का।
2: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के अंतर्गत
1: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर।
2: इसे आप मोबाइल पर न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं।
1: तो जरूर सुनिए
0: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार। 0001-4242
5: विज्ञापनों की बुकिंग
4: डायल कीजिए 8700001-4242।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001-4242।
6: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 8 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज एवं उर्दू समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2026 में 7% की विकास दर रहने का अनुमान जताया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचा। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री

0: श्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के प्रमुखों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अनिश्चितता, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्वाभाविक और विश्वसनीय साझेदार के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक है और आवश्यक भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपनी शक्तियों का लाभ उठाते हुए भविष्य की साझेदारी के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में रिकॉर्ड समय में संपन्न हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है।
1: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खनन, अवसंरचना, शहरी विकास, विमानन, रसद, उन्नत प्रौद्योगिकी, एआई, खाद्य प्रसंस्करण और डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में भारत में उपलब्ध विशाल अवसरों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को भारत में दीर्घकालिक निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
1: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने किप सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बातचीत करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जनसंपर्क मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी मेलबर्न में प्रवासी भारतीयों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा है कि एक दशक में श्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया की तीसरी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में हुई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।
2: तीसरा एनुअल लीडर्स समिट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष और पिछले सालों में जो आपने देखा कि जो एक पूरे विश्व में एक हल्का सा तनाव है, चाहे युद्ध का है, जो डिस्प्यूट्स हैं, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, उस संदर्भ में इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारी रिलेशनशिप को उस क्षेत्र में जिसको हम लोग इंडो पैसिफिक बोलते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए तमिलनाडु के किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इससे उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और उन्हें बाजार में उतार चढ़ाव की कीमतों से राहत मिलेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि स्वीकृत खरीद का कुल MSP मूल्य 1,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के तहत इस वर्ष तमिलनाडु में 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आमों की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। यह खरीद MIS के तहत की जाएगी, जिसमें बाजार हस्तक्षेप मूल्य 1,000 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक निर्धारित किया गया है। अनुपम मिश्र के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के हितों की रक्षा और उनका विश्वास बहाल करने के लिए तंबाकू कंपनियों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तंबाकू की खरीद प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया है। अमरावती स्थित सचिवालय में अधिकारियों और व्यापारियों के साथ तंबाकू खरीद की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तंबाकू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम से कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कंपनियों से नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नकदी रहित स्वास्थ्य योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक नकदी रहित चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 15 लाख से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार मिलेगा। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: इस योजना के तहत राज्य भर के शिक्षकों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े लगभग 15 लाख शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। नियमित शिक्षकों के अलावा इस योजना से शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों, रसोइयों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के पात्र कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। शिक्षकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करने के अपने वायदे को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए ये व्यापक सामाजिक सुरक्षा और बीमा कार्यक्रम देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इस योजना के तहत 10,000 रुपए से ज्यादा मासिक वेतन पाने वाले संविदा कर्मचारियों को 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के दौरान इसकी 7% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। IMF ने यह भी अनुमान जताया है कि अगले वर्ष में भारत की GDP वृद्धि दर कुछ घटकर 6.4% रह सकती है। अमेरिका ने ईरान पर फिर हवाई हमले किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि अमेरिकी हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर हमले किए तो अमरीका इसका और कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा हिमालय के निचले इलाकों, सिक्किम और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिन में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रात से ही बारिश हो रही है। दिन में भी शहर में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिलों में अगले 36 घंटों के दौरान तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। केरलम के पांच उत्तरी जिलों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में येलो अलर्ट पहले से ही जारी है। इन जिलों में कल रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। पिछले 36 वर्षों में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले वे भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 वर्षीय पापरकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान के रियो ताबाता को मात्र 52 मिनट में 6-2, 6-1 से हराया। पापरकर का अगला मुकाबला आज शाम 5 बजे क्वार्टर फाइनल में अमरीका के जॉर्डन ली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने ईरान अमेरिका युद्ध विराम खत्म होने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान और बारिश के चलते देश में प्रभावित जनजीवन के समाचारों को सुर्खियों में जगह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया यात्रा का समाचार भी कई अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर में पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री का चित्र सबसे ऊपर छापा है। खबर को शीर्षक दिया है इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में मोदी ने की पूजा। वीर अर्जुन ने इस खबर को प्रधानमंत्री के इस बयान के साथ प्रकाशित किया है कि सांस्कृतिक विरासत हमें जोड़ती है। देश बंधु की सुर्खी है इंडोनेशिया के सबसे बड़े शिव मंदिर में पहुंचे मोदी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय से स्वागत स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री का चित्र भी कुछ अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत के ढहने के समाचार को देश भर में भवन निर्माण संबंधी अनियमितताओं के मामले से जुड़ी स्थिति का विश्लेषण प्रकाशित किया है। पत्र का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर लोग 5 से 6 मंजिला भवन बना रहे हैं। स्थिति को सुधारने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। लोकसत्य ने नौकरी पेशा पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी शीर्षक से पीएफ खाते में 8.25% की दर से ब्याज देने की सरकार की घोषणा को प्रकाशित किया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट वाले दौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के तौर पर आगे बढ़ना स्वाभाविक और जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता करेंगे। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किसानों के हित में खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीद को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा युद्ध विराम खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले किए और भारत के अर्णव पापरकर ने विंबलडन जूनियर्स 2026 में सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर रचा है इतिहास। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEOs Forum in Melbourne, says it is natural and essential for India and Australia to move forward as trusted partners in a world marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of copra and Totapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnav Papadkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese participated in the India-Australia CEO Forum in Melbourne this morning. Both leaders also met the leading business leaders from India and Australia. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi said the world is currently navigating a period marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. He said that in such times, it is both natural and essential for India and Australia to move forward as natural and trusted partners. The Prime Minister further said economic cooperation and trade agreement concluded in record time in 2022 has further strengthened the economic ties between the two countries.
6: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एकता समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने

0: as El Nino threat looms large, mentions the statesman. ED freezes Trinamool's 400 crore rupees bank deposits under Prevention of Money Laundering Act, PMLA, informs the Tribune. And finally, a Times of India article titled Summer Push, Durables Eye Double-Digit Growth, informs a scorching summer has spurred demand for seasonal appliances, putting India's consumer durable sector on track to post a robust double-digit growth. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi addresses India-Australia CEOs Forum in Melbourne, says it is natural and essential for India and Australia to move forward as trusted partners in a world marked by uncertainty, supply chain disruptions and energy crisis. Prime Minister Modi to also hold talks with his Australian counterpart Anthony Albanese in Melbourne today. Centre approves procurement of copra and Thottapuri mangoes from farmers in Tamil Nadu to safeguard farmers' interests. Uttar Pradesh government launches cashless health scheme for teachers as well as non-teaching staff in the state. IMF projects India to remain world's fastest growing major economy with 7% growth this year. US launches new strikes on Iran after President Donald Trump said ceasefire is over. And India's Arnab Paparkar creates history by becoming first Indian in 36 years to reach boys' singles quarterfinals at Wimbledon Juniors 2026. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं फैसल खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हममनसब एंथोनी अल्बनीज आज सुबह मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया के सीओज फोरम में शरीक हुए। दोनों लीडरों ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हममनसब एंथोनी अल्बनीज के साथ भी मुज़ाकरात करेंगे। मरकज ने किसानों के मुफादात के तहफ्फुज़ के लिए तमिलनाडु में किसानों से खोपरा और तोतापुरी आमों की खरीदारी को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में असातिज़ा के साथ गैर तदरीसी अमले के लिए सेहत की कैशलेस स्कीम शुरू की है। बैलोकमी मालियाती फंड की जानिब से इस साल के दौरान भारत की शरे तरक्की 7% रहने के तखमीने के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत के तौर पर अपना ताज बरकरार रखे हुए है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर ट्रंप के उस बयान के बाद किए गए हैं जिसमें कहा गया था कि ईरान के ताज़ा हमलों से जंगबंदी खत्म हो गई है। और विंबलडन जूनियर्स 2026 में भारत के अर्नब पापरकर ने एक तारीख रकम की है और वो 36 साल में ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जो लड़कों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने हमनसब एंथोनी अल्बनीज के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया के सीओज फोरम और इक्तसादी रोडमैप बिजनेस रिसेप्शन में शिरकत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया इस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार है। सप्लाई चेन में रुकावट के अलावा तवानाई के बहरान से भी दोचार है। वजीर आजम ने कहा कि ऐसे वक्त में ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के लिए फितरी और लाजमी है कि वो एक भरोसेमंद शराकतदारों की हैसियत से आगे बढ़ें। वजीर आजम ने मजीद कहा कि माशी ताउन और तिजारती समझौता 2022 में एक रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान माशी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए हैं।
3: साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ

0: आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बहुत से शोबों में भारत में दस्तियाब वसी मौके का जिक्र करते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया की मईशतों के दरमियान तकमील को भी वाज़े किया।
0: न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया की फाइनेंस, एजुकेशन, मेडिकल टेक और इनोवेशन इकोसिस्टम महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना के साथ मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशंस बना सकते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस, स्पेस और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी उत्तर प्रदेश और केरलम के साथ नए अवसर बना सकते। मेरा सुझाव है कि हम आने वाले समय में कुछ फोकस स्टेट टू स्टेट और सेक्टर टू सेक्टर पार्टनरशिप की पहचान करें और उन्हें आगे ले जाने के लिए रणनीति बनाए।
1: जनाब मोदी ने मुल्क में तवील मुद्दती सरमायाकारी के लिए मौके का फायदा उठाने की गरज से ऑस्ट्रेलिया के सरमायाकारों को मदद किया और साथ ही साथ भारत में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटियों की बढ़ती हुई मौजूदगी का भी खैर मकदम किया।
0: भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलोंगोंग यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले।
1: सीओज फोरम के बाद वजीर आजम मोदी ने इक्तिसादी रोडमैप बिजनेस से मुतालिक तकरीब से भी खिताब किया, जिसमें दोनों मुल्कों के 200 से ज्यादा सीओज और कारोबारी रहनुमाओं ने शिरकत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान फितरी तालमेल के बारे में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने इस बात को उजागर किया कि मुश्तरका जमहूरी कदरें भारत बहरुल काहिल के लिए एक मुश्तरका विजन, अवाम से अवाम के दरमियान वसी ताल्लुकात और मजबूत सियासी मफाहमत ने दोनों मुल्कों के दरमियान कारोबारी शराकतदारी के लिए एक जबरदस्त बुनियाद की राह हमवार की है, जिससे दोनों मुल्क मिलकर आगे बढ़ेंगे और खुशहाली लाएंगे। अब हम मेलबर्न में अपने नामा निगार के पास चलते हैं, जो वज़ीर आज़म के दौरे के बारे में मज़ीद तफसील से आगाह कर रहे हैं।
2: भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम ने मुतबादिल सिफारती रास्तों से हटकर एक मजबूत मुस्तकबिल के लिए महफूज इक्तिसादी इंजन की तरफ एक फैसलाकुन तब्दीली की निशानदेही की है। वज़ीर आज़म मोदी ने लामरकजी इक्तिसादी सिफारतकारी के एक नए दौर का इशारा देते हुए बराह रास्त मुल्क से मुल्क के कॉरिडोर का मुतालबा किया है, जो ऑस्ट्रेलिया के खाम मसाइल को बराह रास्त भारत के बड़े पैमाने पर साफ सुथरी तवानाई, चिप मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल बुनियादी ढांचा पाइपलाइन से जोड़ते हैं। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज बाद में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के अपने मनसब एंथोनी अल्बनीज के साथ मुज़ाकरात करेंगे। तवक्को है कि दोनों रहनुमा तजारत, दिफा, अहम टेक्नोलॉजी, तालीम और अवाम से अवाम के दरमियान ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करेंगे। जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के 3 रोज़ा दौरे पर कल शाम मेलबर्न पहुंचे। वो ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म की दावत पर उस मुल्क का दौरा कर रहे हैं। मरकज ने तमिलनाडु में किसानों से खोपरा और तोतापुरी आम की खरीदारी को मंजूरी दे दी है, ताकि किसानों के मुफादात का तहफ्फुज़ किया जा सके। ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत ने बताया कि इससे किसानों के लिए बेहतर कीमत को यकीनी बनाया जा सकेगा और मार्केट में उतार चढ़ाव की वजह से मजबूरी में कम कीमत पर फरोख्त करने से उनका तहफ्फुज़ किया जा सकेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
3: ये मंजूरी तमिलनाडु के जरिए पेशकर्दा तजवीज पर मुबनी है। इस मंजूरी के तहत 87,000 मैट्रिक टन से ज्यादा खोपरा रियासत में फरोख्त किया जा सकेगा। मंजूर शुदा खरीदारी के कम से कम कुल इमदादी कीमत की कदर 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मजीद ये कि इस साल के दौरान तमिलनाडु में 96,000 मैट्रिक टन से ज्यादा तोतापुरी आमों की खरीदारी को मार्केट इंटरवेंशन स्कीम MIS के तहत मंजूरी हासिल हुई। खरीदारी MIS के तहत की जाएगी। इंटरवेंशन स्कीम का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि तोतापुरी आम की काश्त करने वाले किसानों को उनकी पैदावार की मुनसिफाना और मुनासिब कीमतें हासिल हो सकें और मार्केट की कीमतों में अचानक गिरावट की वजह से नुकसान पर फरोख्त करने से उनका तहफ्फुज किया जा सके। इस इकदाम से तवक्को है कि कीमतों में इस्तेहकाम लाया जा सकेगा और किसानों की आमदनी का तहफ्फुज किया जा सकेगा। सखलीन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अलीम।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में असातिज़ा के साथ साथ गैर तदरीसी अमले के लिए कैशलेस हेल्थ स्कीम शुरू की है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से चीफ मिनिस्टर्स टीचर्स कैशलेस मेडिकल स्कीम का आगाज किया, जिसके तहत 15 लाख से ज्यादा तदरीसी अमले को 5 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर फराहम किया जाएगा। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इस स्कीम के तहत रियासत भर के असातिज़ा और उनके खानदानों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस तिब्बी सहूलियात मैसर आएंगी। बुनियादी और सेकेंडरी तालीम से वाबस्ता तकरीबन 15 लाख असातिज़ा और गैर तदरीसी अमला इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। बाकायदा असातिज़ा के अलावा इस स्कीम से शिक्षा मित्र, इंस्ट्रक्टर्स, कुक्स और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के अहल अमले को भी फ़ायदा पहुँचेगा। असातिज़ा और उनके अहल खाना को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक मीटिंग में मुफाहमतनामे पर दस्तखत भी किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने असातिज़ा की सेहत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अपने वादों को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश के महकमा बुनियादी तालीम के मुलाज़मीन के लिए ये जामे समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इंश्योरेंस प्रोग्राम भारत में अपनी नौइयत का पहला इकदाम है। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: इम्तिहान मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने CSIR UGC नेट जून 2026 के लिए एडवांस सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। ये इम्तिहान इस माह की 17 और 18 तारीख को मुनक़िद किया जाएगा। तलबा को मशवरा दिया जाता है कि वो इम्तिहान के लिए अलॉट किए गए शहर के बारे में जानने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.cisirnet.nta.nic.in से अपनी स्लिप डाउनलोड करें। बैनुल अक़वामी मालियती फंड IMF की जानिब से रवां कैलेंडर साल के दौरान भारत की तरक्की की शरह 7% रहने के तखमीने के साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मईशत के तौर पर अपना ताज बरकरार रखे हुए है। IMF की फ्लैगशिप छमाही रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट ने अगले कैलेंडर साल में भारत की मजमूई घरेलू पैदावार की शरह मोतदिल होकर 6.4% रहने का तखमीना लगाया है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, मशरकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ज़ेली हिमालयी, मगरबी बंगाल, सिक्किम और मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद से शदीद तरीन बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने आज दिन में साहली कर्नाटक, मशरकी उत्तर प्रदेश, गंगाई, मगरबी बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान आज सुबह कौमी राजधानी के मुख्तलिफ हिस्सों में औसत बारिश हुई, जिससे शहरियों का काफी राहत मिली। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद किए गए, जिसमें कहा गया था कि ईरान के ताज़ा हमलों से जंगबंदी मौसर तौर से खत्म हो गई है। सदर ट्रंप ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया कि वह अब नए हुरमुज में तिजारती जहाज़ों पर हमले कर रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के ताज़ा हमले जवाबी कार्रवाई में किए गए हैं। उन्होंने इस बात के लिए भी खबरदार किया कि अगर ईरान ने मजीद हमले जारी रखे तो वाशिंगटन और ज्यादा सख्ती से जवाबी कार्रवाई करेगा और ईरानी हमलों का सख्त जवाब देगा। भारत के अर्णब परकर ने 36 साल में विमंडल जूनियर्स 2026 में लड़कों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। 18 साल पापरकर ने क्वार्टर फाइनल में महज 52 मिनट में जापान के रियो तबाता को 6-2, 6-1 से हराया। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया फैसल। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 3 रोजा सरकारी दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाया किया है। रोजनामा इंकलाब ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। वजीर आजम का यह दौरा भारत ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात को एक नई समत देगा। रोजनामा प्रताप ने कई रियासतों में मूसलाधार बारिश की खबर को नुमाया तौर पर शाया करते हुए सुर्खी लगाई है। मानसून ने पकड़ी रफ्तार, दिल्ली एनसीआर में बारिश शुरू, मुंबई से उत्तर प्रदेश तक संगीन सूरत हाल। वजीर दाखिला ने तीन रियासतों के वज़ीर आला से फोन पर बात करके मुतासरा इलाकों का जायजा लिया।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार का निर्णय, पटना से गयाजी, आरा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के बीच रैपिड रेल सेवा शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इंटरनेट पर युवाओं को उकसाने के मामले में बिहार समेत 10 राज्यों में एक साथ छापेमारी की। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए एक समान शुल्क लिया जाएगा। और मौसम विभाग का गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले में आज अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट। भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान तथा किशनगंज जिले में भी भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पटना से गयाजी, आरा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के बीच रैपिड रेल सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS बनेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को दी गई है। इस पर 31 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च होंगे। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि प्रमुख शहरों के बीच परिवहन व्यवस्था को तेज करने के लिए यह फैसला लिया गया है।
1: चार कॉरिडोर हैं, पटना गयाजी कॉरिडोर पहला है, दूसरा है पटना एयरपोर्ट बेगूसराय कॉरिडोर, तीसरा है पटना हाजीपुर से प्रस्तावित सोनपुर एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर कॉरिडोर और चौथा कॉरिडोर है पटना एयरपोर्ट से आरा कॉरिडोर। तो ये चार कॉरिडोर के लिए रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS की स्वीकृति दी गई है। अभी यह यूपी में कुछ शहरों को कनेक्ट करता है।
0: एक अन्य फैसले में राज्य सरकार ने सात निश्चय पार्ट तीन के तहत बेरोजगारी भत्ता यानी मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना को 2026-27 से मार्च 2031 तक लागू रहने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इसके तहत वर्ष 2026-27 के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च करने की सहमति दी गई है।
1: मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को अगले 5 वर्षों वित्तीय वर्ष 26-27 से 30-31 तक विस्तारित करने तथा इस पर वित्तीय वर्ष 26-27 में कुल 300 करोड़ रुपए व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
0: कैबिनेट ने प्रदेश में दूध उत्पादकता के साथ ही गुणवत्ता सुधारने के लिए बल्क मिल्क कूलर, दूध मिलावट जांच मशीन और डाटा प्रोसेसिंग मिल्क कंट्रोल यूनिट लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। इसके तहत राज्य में 1000 से अधिक डाटा प्रोसेसिंग मिल्क कंट्रोल यूनिट और 80 दूध मिलावट जांच मशीन लगाई जाएगी। एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही के अंकेक्षण के लिए सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी के गठन की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने कुल 22 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने इंटरनेट पर युवाओं को उकसाने के मामले में बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात समेत 10 राज्यों में एक साथ छापेमारी की। ये छापेमारी ISIS और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों की विचारधारा को बढ़ावा देने और सरकार के खिलाफ साजिश की जांच के क्रम में की गई है। इस दौरान टीम ने कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए हैं। इस मामले में अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक वर्षीय और दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए एक समान शुल्क लिया जाएगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने इस संबंध में यूनिफॉर्म ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशंस 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों में वर्ष 2018 से लागू चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CDCS के पुराने नियम समाप्त हो गए हैं। हालांकि बिहार कृषि विश्वविद्यालय, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, नालंदा खुला विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय और

0: कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय पर ये नियम लागू नहीं होंगे। इधर राज्यपाल ने अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले के लिए पोर्टल आज से खुल जाएगा। इसके माध्यम से शिक्षक मनपसंद विद्यालयों में स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गोपालगंज में पत्रकारों से कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार ने मनचाहा स्थानांतरण की नीति बनाई है। उन्होंने कहा कि तबादले के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के औचक निरीक्षण के बाद दो चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि निरीक्षण के क्रम में एक डॉक्टर निर्धारित समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे, जबकि दूसरे डॉक्टर पर मरीज को जांच के लिए अपने निजी क्लिनिक भेजने का आरोप है।
1: मैं गया था LNJP, वहाँ पे एक डॉक्टर थे, नहीं आए 3 बजे तक उनकी ड्यूटी। वो गया था 3 बजे तक, नहीं आए 2 बजे तक ही उन्हें आ जाना चाहिए था। फिर हमने उन्हें फोन भी किया तो वो अपना रीजन बताने लगे, तो उसमें मैं कार्यवाही कर रहा हूँ, वो अपना शो कॉज देंगे। और हमारे डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दिया अपने निजी क्लिनिक पे कि वहाँ जाकर आप जाँच करा लीजिए, तो उन पर भी कार्यवाही करेंगे हम।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खाते में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। उत्तर बिहार में जहां अच्छी बारिश हो रही है, वहीं दक्षिण बिहार में कम बारिश के चलते उमस और गर्मी का असर एक बार फिर बढ़ गया है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश का पूर्वानुमान है।
1: राज्य के गोपालगंज एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा अत्यधिक भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, सारण एवं सिवान जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अररिया, अरवल, औरंगाबाद, भभुआ, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, अररिया, सुपौल और पूर्णिया जिले में भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। शेष स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई। सबसे अधिक किशनगंज के चरघरिया में 178.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पार्टी मुख्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पार्टी की संगठनात्मक मजबूती के लिए कई निर्देश दिए हैं। वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने प्रदेश की नई कार्यकारिणी

की घोषणा कर दी है। पार्टी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार 12 प्रदेश उपाध्यक्ष, 38 प्रदेश महासचिव और 74 प्रदेश सचिव मनोनीत किए गए हैं। विधान पार्षद नीरज कुमार को फिर से पार्टी का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, जबकि 9 अन्य व्यक्तियों को प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक ने बताया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सोने के आभूषणों के बदले दिए गए ऋण में इस वर्ष मई महीने में लगभग 70% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। मई के अंत तक ऐसे ऋण बढ़कर लगभग 3,30,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। रिजर्व बैंक ने बताया कि खुदरा ऋण में भी लगभग 19.5% की वृद्धि हुई है। वहीं कृषि और संबंधित क्षेत्रों को दिए गए ऋण में लगभग 18% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र में ऋण वृद्धि की रफ्तार धीमी रही। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच रात 10 बजे शुरू होगा। इंग्लैंड श्रृंखला में फिलहाल 2-0 से आगे है और श्रृंखला में बने रहने के लिए भारत को यह मैच जीतना आवश्यक होगा। इससे पहले तीसरे मैच में भारत को इंग्लैंड से 125 रन से हार का सामना करना पड़ा था। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता के आगामी सत्र में बिहार अपने घरेलू मैच राजगीर क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव जियाउल आरफीन ने बताया कि पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में पुनर्निर्माण कार्य जारी रहने के कारण राजगीर मैचों की मेजबानी करेगा। इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी गई है। रणजी ट्रॉफी एलिट ग्रुप कैलेंडर के अनुसार बिहार उत्तर प्रदेश के खिलाफ पहला मैच 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक और दूसरा मैच मौजूदा रणजी एलिट चैंपियन जम्मू कश्मीर के खिलाफ 17 जनवरी से 20 जनवरी तक खेलेगा, जबकि तीसरा मुकाबला 24 फरवरी से 27 फरवरी तक विदर्भ के खिलाफ खेला जाएगा। भोजपुर जिले के शाहपुर में कथित पुलिस मुठभेड़ में भरत तिवारी की मौत मामले की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने मृतक के परिजनों का बयान बतौर साक्ष्य न्यायालय में अंकित कराया है। भरत तिवारी की मां, भाई समेत 3 लोगों के बयान अंकित कराए गए हैं। इधर न्यायिक आयोग ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में विशेष छापेमारी अभियान चलाकर पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ 19 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से चोरी की 4 मोटरसाइकिल, 1 स्कूटी, पिकअप वैन, मोबाइल और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। नवादा केंद्रीय विद्यालय का संचालन शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कन्हाई नगर स्थित राजकीय कृत इंटर विद्यालय परिसर में होगा। जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने बताया कि प्रथम चरण में कक्षा 1 से 5 तक पठन पाठन संचालित होगा। मधुबनी जिले के फूलपरास थाना क्षेत्र से पुलिस ने 13 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसलों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने इस खबर का शीर्षक लगाया है, पटना से सूबे के 4 शहरों में रैपिड रेल सेवा शुरू होगी। दैनिक जागरण ने अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े विवाद पर लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर संग्राम, हॉर्मुज में 3 जहाजों को निशाना बनाए जाने के बाद अमेरिका ने किया हमला। दैनिक भास्कर लिखता है, बिहार में 946 स्कूल बढ़े पर दाखिला 4,37,037 कम हुआ। प्रभात खबर ने लिखा है, फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाले 3,035 शिक्षकों की जाएगी नौकरी, वेतन भी सूद समेत वसूला जाएगा। आज अखबार लिखता है, बिहार में 1,497 संदिग्ध फार्मासिस्टों का पंजीकरण रद्द। राष्ट्रीय सागर का शीर्षक है, 2027 में नीट परीक्षा 6 दिन चलेगी, कंप्यूटर बेस्ड होगी परीक्षा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार का निर्णय, पटना से गया जी, आरा, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय के बीच रैपिड रेल सेवा शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इंटरनेट पर युवाओं को उकसाने के मामले में बिहार समेत 10 राज्यों में एक साथ छापेमारी की। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए एक समान शुल्क लिया जाएगा। और मौसम विभाग का गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिले में आज अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट। भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान तथा किशनगंज जिले में भी भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:06 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नहीं पुराने। कार्यक्रम का पहला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म गुरु से। इस गीत को आवाज़ दिया है श्रेया घोषाल एवं उदय मजुमदार ने। गीतकार हैं गुलजार और संगीत है AR रहमान का।

0: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म सूर्यवंशी से। इस गीत को आवाज दिया है उदित नारायण एवं अलका याग्निक ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत है तनिष्क बख्शी का। लेकिन इस गीत से पहले कुछ जानकारियों को सुनते हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
4: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners starting at just ₹6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today.

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म क्रिएचर 3D से।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नई पुरानी। कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से। इस गीत को आवाज़ दिया है ऐश किंग एवं शाशा त्रिपति ने। गीतकार हैं अराफत महमूद एवं तनिष्क बख्शी और संगीत है तनिष्क बख्शी का।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नहीं पुराने। कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म बागी से। इस गीत को आवाज दिया है मोनाली ठाकुर एवं मीट ब्रॉस ने। गीतकार हैं कुमार और संगीत है मीट ब्रॉस का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार हैं सीमा बनर्जी। आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार हैं सीमा बनर्जी। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुखम संगीत। कलाकार हैं सीमा बनर्जी। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये भजन।

0: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार हैं सीमा बनर्जी। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये गीत, लेकिन इससे पहले कुछ जानकारियों को सुनते हैं।
1: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners, starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार हैं सीमा बनर्जी। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार हैं सीमा बनर्जी। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार थी सीमा बनर्जी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम का पहला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म शोर से। इस गीत को आवाज दिया है मुकेश, लता मंगेशकर एवं साथी ने। गीतकार हैं राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म रोटी कपड़ा मकान से। इस गीत को आवाज दिया है लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं वर्मा मलिक और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। श्रोताओं, इस गीत से पहले कुछ जानकारी को सुनते हैं।
1: The future feels effortless with the Grand Vitara because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म नाजायज से। इस गीत को आवाज दिया है कुमार शानू एवं रूप कुमार राठौर ने। गीतकार हैं सुदर्शन फकीर और संगीत है अनु मलिक का।

0: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म नमक हलाल से। इस गीत को आवाज़ दिया है किशोर कुमार एवं आशा भोसले ने। गीतकार हैं अनजान और संगीत है बप्पी लहरी का।
1: अरे अरे ना ना ना ना ना ना।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म प्यासा सावन से। इस गीत को आवाज दिया है लता मंगेशकर एवं सुरेश वाडकर ने। गीतकार हैं संतोष आनंद और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है रेडियो नाटक परिणय पथ। लेखक हैं श्री सतीश मोदी। प्रस्तुतकर्ता हैं नवमी शांति हेम्ब्रम। श्रोताओं, इस रेडियो नाटक के पहले कुछ जानकारियों को सुनते हैं।
1: The future feels effortless with the Grand Vitara because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: आज का नाटक है परिणय पथ, जिसकी नायिका है मंजू। किंतु मंजू जी का कहना है कि वो इस नाटक की नायिका नहीं है, न होने का दावा करती है। वो कभी नायिका होगी भी या नहीं, वो कह नहीं सकती। नायिका होना उसके वश की बात नहीं है। हाँ, इच्छा जरूर होती है कभी कभी कि वो भी नाटक की नायिका बने। मंच पर उसका अभिनय देखकर दर्शक उसे भी बधाई दें, उसके अभिनय की प्रशंसा करें। आज पहली बार इस नाटक में नायिका की भूमिका में वो आपसे रूबरू हो रही है।
5: हाँ, तो कहाँ से शुरू करूँ नाटक? परिचय से? जी, यही ठीक रहेगा। मैं मंजू हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। 4 हुए आशुतोष कॉलेज से बीए पास किए। आंखें भी काली और बड़ी बड़ी हैं, कमर तक लहराते बाल, लंबाई 4.5 फीट, वजन 50 किलो। मेरी उम्र भी कम नहीं है, पूरे 27 की हूँ, फिर भी मैं अभी तक कुंवारी हूँ, अधूरी हूँ। मेरी धड़कनों से मादक संगीत फूटता है, किंतु कोई सुनने वाला नहीं। मुझे यही दुख है, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं, कोई प्रेमी नहीं। यही मेरी कहानी है। यह इसलिए कि सर्वगुण संपन्न होते हुए भी मैं बदसूरत हूँ, एकदम कुरूप हूँ। कहीं पहाड़ गिरने जैसा धमाका हुआ, सुना आपने? सच कहूं, बहुत उदास हो जाती हूँ और तब डूब जाती हूँ अपने अतीत में, अपने भीतर से कुछ उलीचने के लिए। सेकेंड ईयर था आशुतोष कॉलेज में। सुबह हम लोगों के क्लास होते थे 11 से लड़कों के। मेरी एक सहेली थी गायत्री दास गुप्ता। स्वभाव से चंचल, बड़ी सुंदर, फटाफट अंग्रेजी बोलती, बंगला में तो सानी ही नहीं थी। कॉलेज के अधिकांश लड़के उसका पीछा करते, पीरियड शुरू होने के पहले कॉलेज चले आते। परिणाम क्या हुआ? गायत्री ने भी चुन ही लिया अपने मन लायक लड़का कैलाश चंद्र, 4th ईयर इंग्लिश ऑनर्स का छात्र। बाद में पता चला वह टेलीग्राफ ऑफिस के सुपरिटेंडेंट का बेटा था। लंबा, हृष्ट पुष्ट, गेहुआ रंग, घुंघराले बाल, हस्ती सी आंखें, और कैलाश को पाकर गायत्री आत्मविभोर हो गई। क्लास तो समाप्त हो गए, अब जल्दी घर चलना गायत्री।
6: घर पहुंचने की इतनी जल्दी क्या है, जरा दोस्तों से गपशप का थोड़ा मजा तो ले ले, या चलना कैंटीन में कुछ ठंडा पीते हैं, पढ़ाई तो रोज ही करती है।
5: समझ गई, समझ गई मैं तुम्हारे मन की बात, तुम्हारी सहेली हूँ ना।
6: क्या समझ गई?
5: जब तक तुम फोर्थ ईयर के अपने चहेते कैलाश को नहीं देख लोगी, तुम्हें चैन नहीं मिलेगा।
6: हाँ, अभी तो देखना ही नसीब हुआ है, इशारों में ही बात होती है।
5: तो जल्दी कोई उपाय करो और मिलने का समय निकाल लो, वह भी तो बेचैन रहता है।
6: चल, तेरी सलाह पर प्रेम की सूली पर तुम्हारी ये सहेली चढ़ने को तैयार है।
5: सच, तब मुझे गायत्री से ईर्ष्या होने लगी थी। वह सदा चहकती रहती, हर रोज कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनता ही रहता।
6: मंजू, कल हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल गए थे, तालाब के किनारे चलते जा रहे थे, बिजली के प्रकाश की रेखा जल में से दूर तक चली गई थी, रोशनी बड़ी भली प्रतीत हो रही थी। कैलाश, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, चुपचाप हाथों में हाथ ले चलते जा रहे हो?
7: मैं विक्टोरिया मेमोरियल की सुंदरता को देख रहा था, बैठने के लिए उचित स्थान देख रहा था।
6: तालाब के पश्चिमी किनारे नारियल के पेड़ के नीचे बैठना कैसा रहेगा?
7: इसीलिए तो कहता हूँ, तुम बहुत रोमांटिक हो, जगह भी रोमांटिक ही चुनोगी। चलो यहीं बैठते हैं।
6: हाथ तो छोड़ो, तभी ना बैठ सकूंगी।
7: अच्छा अच्छा, मैंने सोचा कि कहीं तुम्हारा हाथ छूट गया तो भाग जाओगी, इसीलिए पकड़े रहा।
6: अब बैठ गई, तुम भी बैठ जाओ।
7: ठीक है, आओ बैठते हैं। देखो कितना सुंदर दृश्य है, बिजली के प्रकाश की रेखा तालाब के जल में दूर तक चली गई है, जो रोशनी फैली है कितनी भली प्रतीत हो रही है।
6: तुम तो मुझसे भी बड़े रोमांटिक निकले, कवि की भाषा बोल रहे हो।
7: अब तुम जो कहो।
8: मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो, बढ़िया बढ़िया दाना मूंगफली ले लो।
7: ए मूंगफली वाले, जरा इधर आना।
9: जी बाबूजी। कितना दे दूं बाबूजी?
7: अरे पहले ये तो बताओ कि दे कैसे रहे हो मूंगफली?
9: 10 रुपए के 100 ग्राम।
7: 10 रुपए के 100 ग्राम? अरे ये तो बहुत महंगा है भाई।
9: बाबूजी अभी यही रेट चल रहा है।
7: यही रेट चल रहा है? ठीक है, तो फिर 100 ग्राम भी दे दो, देर तक टूंगते रहेंगे।
9: ठीक कहा बाबूजी, ये बढ़िया टाइम पास है। ये लीजिए आपके 100 ग्राम मूंगफली।
7: ठीक है, फिर टाइम पास दिया तो ये लो अपना 10 रुपया।
10: पेड़ा ले लो भैया, पेड़ा बिल्कुल ताजा मीठा होगा भैया पेड़ा।
11: कैलाश, पेड़ा पेड़े वाला आया है, बुलाओ ना, पेड़ा खाने का मन हो रहा है।
7: पेड़ा खाने का मन हो रहा है, ठीक है अभी बुलाता हूँ। ए पेड़ा वाले, इधर आओ।
10: जी भैया अभी आ रहा हूँ। कितने पेड़े दूं भाई साहब?
7: 4 दे दो, क्यों चलेगा ना?
11: हाँ चलेगा। कितने पैसे ले भैया?
10: 10 रुपये बहन जी।
7: 10 रुपये, ये लो 10 रुपये। चलो 10 रुपये के मूंगफली, 10 रुपये का पेड़ा, अच्छा टाइम पास हुआ। देखें कैसा पेड़ा है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, लो आधा तुम भी खाओ।
6: ये क्या, मुझे एक भी पेड़ा पूरा नहीं दिया, सब झूठा करके देते रहे, ऐसा क्यों किया?
7: अरे प्रेमी का झूठा पेड़ा ज्यादा मीठा होता है, इसीलिए तुम्हें अधिक मीठा पेड़ा खाने दिया।
6: हट बदमाश कहीं के। चलो उठो अब, घर जाना है, मैं भी कभी तुम्हें इस मजाक का खासा जवाब दूंगी।
7: ठीक है जवाब दे देना तुम मुझको, बदला ले लेना।
6: अब चलो घर चलो।
7: ठीक है चलो।
6: झूठा करके देता था,
5: खाओ खूब खाओ, मीठा लगता होगा, हमको क्या सुनाती हो? मैं सुनती मन ही मन कुड़ती जलती, दिल करता मुंह झुलस दूं। हर रोज गायत्री कॉलेज से छूटने के 2 घंटे बाद घर पहुंचती, कैलाश सवेरे पहुंच जाता।

0: पार्क में बैठे गप्पे हाँकते अथवा बसंत केबिन में बैठे कटलेट उड़ाते रहते। दिल में एक उफान सा मचा रहता। रास्ता चलते पार पार इधर उधर देखती, कहीं कोई मुझे देखकर मुस्कुरा तो नहीं रहा है। एक दिन का वाकया सुनाती हूँ। कॉलेज से बाहर निकलकर बस स्टॉप की ओर जा रही थी। मेरे पीछे पीछे एक युवक आ रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मुझे पुकारा था। सच पुकारा ही था। मैंने पीछे मुड़कर पूछा, आपने मुझे पुकारा? मुझे देखते ही सहम कर दो कदम पीछे हट गया। हुआ बोला, नो नो, मैंने आपको नहीं पुकारा, और तेजी से आगे बढ़ गया। मैं पार्क में घंटों बैठी रहती। बेंच पर बैठ पुस्तक निकाल कुछ पढ़ने का बहाना ही करती, किंतु कभी किसी ने मुस्कुराकर ना देखा ना हंसी की। तड़प तड़प उठती हूँ मैं। हूँ तो आखिर नारी ही, उस पर जवान, दिल जवान, हौसले जवान, तन जवान, मन जवान, धड़कन जवान। परीक्षा सिर पर आ गई थी। अंग्रेजी पोएट्री की पुस्तक लेकर बैठी थी। पढ़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, फिर भी अनमन ने भाव से पुस्तक खोली। नजर पड़ी जिस पंक्ति पर, वह पंक्ति थी, My life is full of sorrows। तभी धड़धड़ाती पहुंच गई गायत्री।
1: अरे क्या पढ़ रही है अंधेरे में? चलना चलना ऊपर छत पर चलकर थोड़ी देर बैठते हैं।
0: नहीं नहीं गायत्री,
2: चल ना मंजू, थोड़ी देर चल।
0: अभी बिल्कुल मन नहीं है गायत्री। देख परीक्षा सर पर है और कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, अभी पढ़ने दे।
2: थोड़ी देर चल ना, थोड़ी देर ही बैठूंगी।
0: मैं जानती हूँ तू छत पर क्या कहेगी, वही प्रेम की बातें, प्रोग्राम की बातें, मैं थक गई हूँ सब सुन।
2: चल ना मंजू, थोड़ी देर तो।
0: नहीं गायत्री छोड़ो ना, अब मुझे पढ़ने दो गायत्री, छोड़ो।
2: चलो ना थोड़ी देर।
0: अच्छा ठीक है चल।
2: मंजू कल मैं कैलाश के साथ ठकुरिया लेक गई थी, सुबह 5 बजे ही। बहुत दिनों से सोच रहे थे हैंगिंग ब्रिज से सूर्योदय देखेंगे, सो कल देख भी लिया। सच मंजू, इतना मार्वेलस सीन था कि क्या कहूँ, साधारण आदमी भी कवि हो जाए।
0: और जाड़ा?
2: जाड़ा बिल्कुल नहीं लग रहा था, हाथों में हाथ।
0: बोले चली जा रही, यहाँ जाड़े में 7 से पहले रजाई से निकलने का मन नहीं करता है। और श्रीमती जी हैं कि 5 बजे सूर्योदय देखने हैंगिंग ब्रिज पर जाती हैं। होली में मुंह पर रंग के बदले काली शरद तो सब गुरूर हवा हो जाए। अरे क्या सोच बैठी मैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं करूंगी।
1: क्या सोच रही है मंजू?
0: कुछ नहीं गायत्री, कुछ नहीं।
1: तू जरूर कुछ सोच रही है।
0: अरे कुछ नहीं गायत्री,
2: बड़बड़ा भी रही है।
0: अरे कुछ नहीं, वो याद कर रही थी, परीक्षा है ना बस, और कुछ नहीं। इस कल्पना से ही मैं भयभीत हो उठी। इसके बाद काफी दिनों तक गायत्री से बात नहीं की, साहस ही नहीं होता था। बीए की परीक्षा समाप्त हुई। एक दिन निमंत्रण पत्र आया। गायत्री और कैलाश दोनों जीवन भर एक दूसरे के हो गए। हृदय में एक भूख सी उठी। शादी में मैं भी गई थी, लेकिन जो कील दिल में लगी वह रह रह कर पिराने लगी। उसके बाद 1 वर्ष का समय बीता, हम लोगों का मिलना नहीं हुआ। दूसरे वर्ष गायत्री आई थी मिलने, अब भी वैसी ही चहकती दिखी, शरीर कुछ भर गया था।
3: अरे गायत्री, ससुराल का घी खा खा कर मोटी होती जा रही है,
2: रश्क काहे करती हो जाने दो अपनी शादी, तब देखना तुम भी हमसे दुगनी मोटी ना हुई तो मेरे नाम को 100 जूतियां लगाना। सच मंजू, अब तू भी शादी कर ले।
3: क्या गायत्री, मुझ जैसी लड़की, बदसूरत लड़की से कौन करेगा शादी, तू ही बता।
2: एक उपाय है।
3: क्या?
2: एक काम करो, अखबार में एक विज्ञापन दे दो।
3: विज्ञापन?
2: हाँ।
3: बात मुझे भी जच गई। ठीक 1 सप्ताह के बाद छोटा सा विज्ञापन दैनिक पत्र में दे दिया। उम्र 22 वर्ष, कद 4.5 फीट, शिक्षा BA, विवाह योग्य कन्या के लिए योग्य वर चाहिए, जाति का कोई बंधन नहीं, लेकिन ध्यान रहे लड़की सुंदर नहीं है। विज्ञापन देकर मैं निश्चिंत हो गई। चलो अब तो पत्र पर पत्र आने लगेंगे, और मैं सुखद कल्पना में विभोर रहने लगी।

0: एक मास दो मास एक भी पत्र ना आया। उस दिन अपने जीवन पर बड़ी क्रांति हुई। आत्महत्या करने तक को उतारू हो गई थी, लेकिन कर ना सकी। बाद में फूट फूट कर खूब रोई। गायत्री एक बात बता, तूने विज्ञापन तो डलवा दिया पर अब तक तो एक भी पत्र नहीं आया, ना कहीं से कोई खबर आई है।
1: तुझे इतना सच बोलने की जरूरत क्या थी कि लड़की सुंदर नहीं है?
0: लेकिन गायत्री, सच्चाई तो सच्चाई है ना।
1: खैर जाने दो, दूसरा विज्ञापन बनाते हैं, उसमें कुछ बदल के डालेंगे, जैसे उम्र 20 वर्ष, शिक्षा BA, सुंदर, कद 5 फीट, वजन 50 किलो, कन्या के लिए योग्य वर चाहिए, जाति का कोई बंधन नहीं। क्यों, ठीक है ना मंजू?
0: लेकिन गायत्री, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी ना?
1: एक और कोशिश करके देखते हैं मंजू।
0: ठीक है, तू कहती है तो ठीक है, चल। क्या कहूँ, 3 दिन भी न बीते होंगे कि पत्र आने शुरू हो गए। 10 दिन के भीतर काफी पत्र जमा हो गए। मैं निर्णय नहीं कर पाती किसे पढ़ूं किसे ना पढ़ूं। पत्र लिफाफे ही लिफाफे, लाल नीले पीले लिफाफे, सुगंधित नीले कागज पर गोल सुडौल अक्षरों में लिखे, साथ में चित्र भी, कुछ सुंदर, कुछ हंसते पोज में, कुछ गंभीर। अभी परसों की ही बात है, मैं काफी उद्विग्न हो उठी थी। निर्णय अनिर्णय की स्थिति में अपने को महसूस कर रही थी। हाजरा पार्क में जा बैठी थी, उधेड़ बुन में पड़ी गुमसुम कुछ सोच रही थी। इस तरह कितना समय व्यतीत हो गया मुझे भान ही नहीं है कि तभी
2: माफ कीजिएगा।
0: आप
2: यदि बुरा ना माने तो एक बात पूछूं।
0: लंबा सांवला गोल चेहरा, भौतिकता की झलक लिए जिज्ञासु आंखें, हाथ में एक पुस्तक, इसे तो प्राय देखती आ रही हूँ। पार्क के कोने में गोर्की की कोई पुस्तक पढ़ते हुए इसे देखा है। आज तक मुझे कभी टोका नहीं है, फिर आज इसे क्या हो गया?
2: आप कहाँ खो गई मैडम, मैंने आपसे कुछ पूछा है।
0: क्या पूछना चाहते हैं आप, क्यों पूछना चाहते हैं? मैं आपको नहीं जानती हूँ न पहचानती हूँ, फिर मुझ अपरिचिता से क्यों बात करना चाहते हैं आप?
2: आप गलत न समझें, मेरी बात को अन्यथा न लें, मैं भी एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, आपको काफी दिनों से इसी पार्क में देखता आ रहा हूँ। आप जब भी परेशान होती हैं या कोई विशेष बात होती है तो पार्क के इसी कोने में अकेली उदास गुमसुम बैठकर समय बिताती हैं। जब कभी भी आपको देखा है कुछ अखबार लिए, अखबारों की कतरने लिए हुए, वो भी क्लासिफाइड वाले पृष्ठों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हुए।
0: लेकिन मैंने तो कभी आपकी ओर ध्यान नहीं दिया, फिर आप मुझ में इतनी रुचि क्यों ले रहे हैं? मेरी परेशानियों को जानने, मेरे व्यक्तिगत जीवन में प्रवेश करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं?
2: आपका कहना उचित है, किंतु आप पढ़ी लिखी हैं, आप जानती हैं हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, एक समाज में रहते हैं, आते जाते देखते बिना आपस में वार्तालाप किए भी अपरिचित होते हुए भी परिचित से हो जाते हैं। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ आप कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रही हैं, इसलिए आज मैं अपने को रोक नहीं पाया। एक प्रबुद्ध व्यक्ति को अपने पास के व्यक्ति के दुख दर्द को, परेशानियों को, समस्याओं को जानने का, समझने का और हो सके तो उनके समाधान हेतु सहयोग परामर्श देने का एक सामाजिक दायित्व तो बनता ही है। इसी नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी समस्याओं से मुझे अवगत जरूर कराएं। उलझनों से निकलने में मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, मेरे विचारों से, सुझावों से आपको शायद एक नई दिशा मिल जाए।
0: आपने तो मुझे असमंजस में डाल दिया।
2: कोई असमंजस महसूस न करें, असमंजस से निकलने का कोई रास्ता निकल सकता है, यही सोचकर अपनी समस्याओं को मुझे बताएं। कहावत है, एक से भले दो।
0: मैं एक साधारण परिवार की सामान्य लड़की हूँ, पढ़ी लिखी किंतु कुरूपता का अभिशाप झेलती, युवा नारी की व्यथा सहती, पर पता नहीं क्यों आपके व्यवहार से मुझे लगा कि आप संभ्रांत परिवार की प्रगतिशील विचारों से लैस नवयुवक हैं, तभी तो मेरे जैसी साधारण सी युवती के जीवन में दिलचस्पी दिखाई। लेकिन मेरी समस्या को आप क्या कोई भी व्यक्ति हल नहीं कर सकेगा।
2: मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। जीवन में जो कष्ट आपने भोगा है, सामाजिक क्रूरता का दंश झेला है, उसने आपको कुछ अधिक निराशावादी बना दिया है। किंतु विश्वास करें, इसी दुनिया में, इसी समाज में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं, जिनसे समाज को समय समय पर कुछ न कुछ दिशा निर्देश मिलता रहता है। अब आप अपनी समस्याओं को मुझे ज़रूर बताएं।
0: मैंने अपनी एक सहेली के सुझाव पर अपने विवाह हेतु अखबारों में विज्ञापन दिया था। इस विज्ञापन के बाद एक भी पत्र मेरे नाम नहीं आया। महीने भर बाद दूसरा विज्ञापन दिया।
2: फिर क्या परिणाम आया?
0: क्या बताऊँ, 3 दिन भी ना बीते होंगे कि पत्र आने शुरू हो गए। उनमें से 3 पत्रों को छांटकर मैंने अलग रखे हैं।
2: अच्छा।
0: जिन पर विचार कर रही हूँ, वे 3 पत्र ये हैं। दमदम से एक सज्जन लिखते हैं,
3: प्रिय रानी, जब से तुम्हारा विज्ञापन पढ़ा, तुम मेरे दिल की रानी बन बैठी। मैं 32 वर्ष का कुंवारा युवक हूँ। मन लायक लड़की की थी खोज, लगता है तुम ही वह साथी हो। तभी तो विज्ञापन पढ़ते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी खोज पूरी हो गई। रविंद्र प्रसाद।
0: वर्धमान से दूसरे सज्जन लिखते हैं,
4: प्रिय मंजू जी, आपका विज्ञापन अखबार में देखा पढ़ा। मैं 40 वर्ष का सुखी संपन्न हृष्ट पुष्ट विधुर हूँ। मेरे पास लाखों की संपत्ति है। मेरी पत्नी का निधन 6 माह पूर्व हो चुका है। मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा 6 वर्ष का है, छोटा बेटा 1 साल का। उसे माँ की सख्त जरूरत है। आशा है आप मेरे प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति अवश्य प्रदान करेंगी। मेरे लिए न सही, कम से कम मेरे बच्चों के लिए मेरी पत्नी बनना स्वीकार करें। ब्रह्मदेव सेठ।
0: बालीगंज से तीसरे सज्जन लिखते हैं,
5: मैं विवाहित हूँ। उम्र 30 वर्ष है। एक स्थानीय कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। आप अंतर्जातीय विवाह करना चाहती हैं, मैं आपके विचारों की दाद देता हूँ। मेरी दूसरी शादी करने का कारण ये है कि पत्नी से मेरी पटती नहीं है। उसे तलाक देकर मैं आपसे विवाह करने का इच्छुक हूँ। यह विवाह भी अंतर्जातीय ही होगा। आपका सूर्य नारायण।
0: अब मैं उलझन में हूँ। मैं कुछ सोच ही नहीं सकती कि मैं क्या निर्णय लूँ। झूठ बोलकर लोगों को धोखा दूँ अथवा इस झूठ का भंडा फोड़ कर दूँ। आप पत्र सुनकर चुप क्यों हो गए?
2: वास्तव में आपकी समस्या बेहद जटिल है, इसलिए कुछ सोचने लगा था। खैर, अब आपने क्या सोचा है?
0: वही तो मैं तय नहीं कर पा रही हूँ। मैं निराशा के दलदल में इतनी धस चुकी हूँ कि उबरने के लिए हाथ पांव मारना भी भूल चुकी हूँ।
2: न रहो, ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। वैसे आप रहती कहाँ हैं? परिवार में और कौन कौन है? हैं तो ये आपकी व्यक्तिगत बातें, लेकिन जानने की इच्छा हुई इसलिए पूछ रहा हूँ। वैसे ना बताना चाहे तो कोई बात नहीं।
0: नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपने मेरे प्रति सहानुभूति दिखाई है तो मैं अपने बारे में, परिवार के बारे में जरूर बताऊंगी। मेरा नाम मंजू है। मैं कालीघाट के पास जतिनदास रोड पर रहती हूँ। मेरे पिताजी का निधन 10 वर्ष पूर्व हो चुका है। वे हाई स्कूल में शिक्षक थे। मैं अपनी विधवा माँ के साथ रहती हूँ। वो एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका हैं। मेरे 2 भाई और 1 बहन है जो स्कूली शिक्षा पा रहे हैं। मैं बड़ी बहन बेकार जीवन जी रही हूँ और परिवार के लिए एक भार जैसी हूँ।
2: अब मैं अपने बारे में कुछ आपको बता दूँ। मेरा नाम प्रशांत चटर्जी है। मैं भी आपकी तरह अपने पिता के प्यार से वंचित हूँ। वे यादवपुर यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। 3 वर्ष पहले उनका देहांत हुआ। बड़े भाई सेक्रेटेरिएट में कार्यरत हैं। भाभी एक गर्ल्स स्कूल में टीचर हैं। एक छोटी बहन है जो 10वीं की छात्रा है। मैंने पिछले साल अंग्रेजी में एमए किया है।
0: अच्छा।
2: और नौकरी के लिए कई जगह आवेदन कर चुका हूँ, परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। साउथ एवेन्यू में रहता हूँ, पार्क के करीब घर है, अतः पार्क के एकांत स्थल का लाभ उपन्यास पढ़ने हेतु ले लेता हूँ। वैसे देखता तो आपको बहुत दिनों से आ रहा था, किंतु पहले ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, पर इधर कुछ दिनों से आपकी दिनचर्या देखकर लगा कि आजकल आप अधिक परेशानी में पड़ गई हैं, तभी मैंने आपसे कुछ पूछने का, आपके बारे में कुछ जानने का दुस्साहस किया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना।
0: अरे नहीं नहीं,
2: कृपया मेरे बारे में कुछ गलत न समझें।
0: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
2: और अब जब हम लोग आपस में इतनी बातें कर चुके हैं, तो मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहूँगा कि मैं जो भी करूँगा आपके भले के लिए ही करूँगा।
0: आप मेरे भले के लिए क्या करना चाहते हैं?
2: आप अपने लिए जो तीन व्यक्तियों के आए तीन पत्रों पर विचार कर रही हैं, उसी क्रम में मैं आपको एक और व्यक्ति के अनुरोध पर विचार करने के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूँ।
0: मैं कुछ समझी नहीं, आप तो उलझी उलझी बातें कर रहे हैं।
2: मैं प्रशांत चटर्जी आपसे अनुरोध करता हूँ, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपसे विवाह करने के लिए सहर्ष तैयार।
0: क्या?
2: हाँ।
0: आप क्या कह रहे हैं?
2: हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ।
0: मैं
2: विवाह करने के लिए तैयार हूँ।
0: मैं तो कुछ निर्णय नहीं कर पा रही हूँ, आपसे आज ही जान पहचान हुई और आज ही आपने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। मैं इतनी जल्दी क्या उत्तर दूँ आपको?
2: मैंने तो सिर्फ विवाह का प्रस्ताव रखा है और आप घबरा गई। घबराने की कोई बात नहीं, आप इस पर गंभीरता पूर्वक दो चार दिन में विचार कर लें। यदि मेरे प्रस्ताव पर आपकी सहमति हो तो अगले रविवार को मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा।
0: प्रशांत के प्रस्ताव को सुनकर मैं और अधिक बेचैनी महसूस करने लगी। पहले ही तीन पत्रों के कारण उधेड़बुन में पड़ी हुई थी, अब एक और व्यक्ति आ जुड़ा मेरे लिए भला करने का प्रस्ताव लेकर। मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है मेरे सामने। अखबारों में छपे कई समाचारों को यदाकदा पढ़ती रही हूँ। अखबारी विज्ञापनों में जो लिखा जाता है वो कितना सही होता है या कितना गलत होता है, विज्ञापनों द्वारा हुए विवाह संबंध कितने दिनों तक कायम रहते हैं, आधार कितना मजबूत होता है, दोनों प्राणी कितने सुखी होते हैं या अहम के टकराव में कितने लहू लुहान होते रहते हैं और फिर अलगाव का रास्ता चुन लेते हैं। ऐसी घटनाएं पढ़ पढ़ कर सुन सुन कर बहुत दुख होता है। अपने ही मोहल्ले की एक घटना है जिसके बारे में माँ ने बताया था।
6: सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले घोषदा की पत्नी का देहांत हो गया था। उनको एक बेटा और दो बेटियां थी। बेटा बड़ा था, कॉलेज में पढ़ता था। बड़ी बेटी 9वीं क्लास में और छोटी 3री में पढ़ती थी। घोषदा जब बच्चों की परवरिश करने में काफी परेशान रहने लगे तो पड़ोस के कुछ दोस्तों की सलाह पर अखबारी विज्ञापन द्वारा टालीगंज की एक प्रत्यक्ष महिला से शादी कर ली थी। वह महिला दिखने में सामान्य थी किंतु नाक नक्श अच्छे थे, स्वभाव भी मधुर था। पहले तो घोषदा ने खूब आदर प्यार दिया, महिला भी खुश थी। पति का सारा काम, बेटे बेटियों की जिम्मेदारी, घर की देखरेख पूरी तरह निभाने लगी थी। किंतु धीरे धीरे घोषदा का व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति बदलने लगा था। सब काम ठीक होने पर भी घोषदा पत्नी पर खामखा बिगड़ने लगते, गुस्सा करने लगते। पिता को नई माँ के साथ ऐसा व्यवहार करते देखकर बेटा भी क्रूर होता गया। माँ को माँ न समझ नौकरानी समझने लगा। बात बात पर डांटना फटकारना और कभी कभी तो उस बेचारी को पति की मार भी सहनी पड़ती थी।
0: अब मैं क्या करूँ? तीनों पत्र लिखने वाले को ना मैंने देखा है न कोई बात हुई है। अपरिचित से संबंध बनाने में धोखा भी हो सकता है। यदि वैसा निकल गया तो फिर मैं क्या कर सकूंगी? मूर्खता मत कर मंजू, गलत कदम मत उठा। है तो प्रशांत भी अपरिचित है किंतु तुमने उसे देखा है, उसके साथ बातचीत भी की है। वह पढ़ा लिखा है, अच्छे घर का है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने तुम्हें खुद प्रपोज किया है। इसलिए मेरा कहा मान मंजू, तुम प्रशांत के प्रस्ताव को स्वीकार करना, यही तुम्हारे लिए शुभ होगा, सुखद होगा।

0: तीनों अखबारी व्यक्तियों से प्रशांत ही मेरे लिए अधिक उपयुक्त हुआ। मैं प्रशांत से मिलकर उसे अपनी सहमति से अवगत करा दूं। आज रविवार है, वह पार्क में मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। अब आप लोग भी मुझे आशीर्वाद दें, शुभकामनाएं दें कि मैं अपना भावी जीवन सुंदर ढंग से बिता सकूं, सुखी रह सकूं।
1: अभी आप सुन रहे थे रेडियो नाटक परिणय पथ। लेखक थे श्री सतीश मोदी। प्रस्तुतकर्ता थी नौमी शांति हेम्ब्रम। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम आप कुछ ही देर में सुनेंगे।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानि 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नई फिल्मों से।

तेरा यार हूँ मैं। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना सचेत टंडन और पायल देव की आवाज़ों में। गीतकार कुणाल वर्मा, संगीतकार थे पायल देव, आदित्य देव। बॉर्डर टू फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम और पलक मुछाल की आवाज़ों में। गीतकार जावेद अख्तर, मनोज मुंतशिर, संगीतकार हैं अनु मलिक और मिथुन।

कार्यक्रम का अगला गीत हमें लिया है विशाल मिश्रा की आवाज़ में, फिल्म है धड़क 2। रश्मि विराग का गीत है, संगीतकार हैं जावेद मोहसिन।

0: नई फिल्मों से कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और सुनते हैं कुछ खास संदेश।
1: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
2: उमंग
3: हर हर महादेव।
4: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
5: क्रेश,
6: ट्रेश
4: और बाल्टी बॉय।
7: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है। कार्यक्रम है नई फिल्मों से।

श्रेया घोषाल और मनन भारद्वाज को आपने सुना, फिल्म थी एनिमल, गीतकार थे मनन भारद्वाज। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, आशीष कौर, आईपी सिंह, देव नेगी, मधुवंती बागजी और सचिन जिगर की आवाज़ों में। गीतकार शैली, संगीतकार हैं सचिन जिगर और फिल्म है हम दो हमारे दो।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अरिजीत सिंह और हंसिका पारेख को फिल्म आजाद में। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार हैं अमित त्रिवेदी।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है नई फिल्मों से कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता, तो बने रहें हमारे साथ।

श्रोताओं, कुछ कलाकार अपनी सफलता से याद किए जाते हैं, लेकिन कुछ कलाकार अपनी संवेदनाओं से अमर हो जाते हैं, और गुरुदत्त उन्हीं कलाकारों में से एक थे। आज 9 जुलाई है और आज महान फिल्मकार, निर्देशक, निर्माता और कलाकार गुरुदत्त की जयंती है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब वे किसी दृश्य की शूटिंग करते थे तो केवल कलाकारों के अभिनय पर ही नहीं, बल्कि पर्दे पर पड़ने वाली रोशनी की दिशा, हवा की गति, खिड़की से आती धूप और कलाकार की आंखों में उतरती भावनाओं तक पर घंटों काम करते थे। उनके लिए फिल्म बनाना व्यवसाय नहीं, साधना थी। इसीलिए आज भी फिल्म संस्थानों में उनकी फिल्मों को कैमरा, प्रकाश और फ्रेमिंग की पाठशाला माना जाता है। पता है, गुरुदत्त को कविता से बहुत प्यार था। शायद यही कारण है कि उनकी फिल्मों का हर संवाद किसी कविता की पंक्ति जैसा लगता है। जब साहिर लुधियानवी के शब्द, सचिन देव वर्मन का संगीत और गुरुदत्त की कल्पना एक साथ मिलते थे ना, तब जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, या ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, और फिर ये गीत जो अभी आपने सुना, वक्त ने किया क्या हंसी सितम जैसे गीत जन्म लेते थे। यही कारण है दोस्तों कि ये सारे गीत केवल सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। तो आज गुरुदत्त साहब की चूँकि जयंती है, उनके बारे में हम बातें करेंगे। आज का गुलदस्ता हम सजाएंगे उन्हीं के गीतों से। तो एक गीत हम आपके लिए अभी लेकर आए हैं साहेब बीबी और गुलाम से। आइए सुनते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा गीत है।

ये थी गीता दत्त और फिल्म थी साहेब बीबी और गुलाम। तो दोस्तों आज के गुलदस्ता में हम आज याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के उस महान कलाकार को जिसने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई बल्कि इंसानी जज्बातों को पर्दे पर इस तरह से उकेरा कि हर दृश्य कविता बन गया, हर संवाद एक एहसास और हर गीत एक अनकही कहानी। आज महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता गुरुदत्त की जयंती है, तो हम आज गुलदस्ता में उन्हीं की फिल्मों के गीत सुनेंगे और उन्हीं के बारे में बातें करेंगे। पता है दोस्तों, कुछ लोग उम्र से बड़े होते हैं, कुछ अपने काम से, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो समय से आगे निकल जाते हैं। गुरुदत्त उन्हीं विरले कलाकारों में से एक थे। उन्होंने जीवन को जितनी गहराई से महसूस किया उतनी ही सच्चाई से उसे कैमरे की आँख में कैद भी किया। 9 जुलाई 1925 को जन्मे गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। बचपन साधारण था लेकिन सपने असाधारण। कला, साहित्य, संगीत और नृत्य हर विधा से उन्हें गहरा लगाव था। यही लगाव आगे चलकर उनकी फिल्मों की पहचान बन गया। हमने आपसे पहले भी बातें की ना कि उनकी फिल्मों में जो रोशनी थी या पर्दा होता था वो भी अभिनय करते थे। उनकी फिल्मों में खामोशी भी बोलती थी और गीत भी कहानी आगे बढ़ाते थे। तो सिनेमा की दुनिया में उनका सफ़र अभिनय से शुरू हुआ लेकिन असली पहचान बनी निर्देशक के रूप में। उनकी पहली निर्देशित फिल्म बाजी थी। ये फिल्म सफल रही और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसे फिल्मकार का सफ़र जिसने भारतीय सिनेमा की दिशा बदल दी। इसके बाद आई आर पार, शहर की रफ्तार, हल्का फुल्का हास्य, शानदार संगीत और गुरुदत्त का अलग अंदाज। फिल्म ने दर्शकों के दिल जीत लिए। फिर आई मिस्टर एंड मिसेज 55, जिसने रोमांस और सामाजिक व्यंग्य का अद्भुत

संगम पेश किया था दोस्तों, उनकी फिल्मों के गीत हम एक एक कर सुनेंगे आगे भी। इस बीच आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है, और ये फिल्म है 14वीं का चांद। आइए सुनते हैं ये गीत।

गुरुदत्त की फिल्मों के बारे में अगर हम बातें करें तो एक बात निकल कर आती है कि शायद गुरुदत्त सिर्फ मनोरंजन करने नहीं आए थे फिल्मों में, वे समाज से सवाल पूछना चाहते थे। वे इंसान के अकेलेपन, उसके संघर्ष और उसकी संवेदनाओं को दुनिया के सामने रखना चाहते थे। और फिर बनी वो फिल्म जिसे भारतीय सिनेमा का अमर अध्याय कहा जाता है, यानी हम बातें कर रहे हैं प्यासा के बारे में। तो दोस्तों, प्यासा सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि उस कलाकार की पुकार थी जिसे समाज तब तक नहीं पहचानता जब तक कि वो दुनिया छोड़ ना दे। इस फिल्म में विजय नाम का कवि अपने सम्मान, अपने प्रेम और अपनी पहचान की तलाश करता है। कितनी विडंबना है कि ये कहानी कहीं ना कहीं स्वयं गुरुदत्त के जीवन की प्रतिध्वनि भी लगती है। फिल्म का हर गीत आज भी दिल में उतर जाता है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, या फिर ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। याद कीजिए ये सारे गीत, क्योंकि ये गीत केवल गीत नहीं है दोस्तों, बल्कि समाज पर गहरे प्रश्न हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। और एक बात और कि गुरुदत्त की फिल्मों का संगीत उनकी आत्मा था।

गीतकार ओपी नैयर, सचिन देव वर्मन और गीतकार साहिल लुधियानवी के साथ उन्होंने कई गीत रचे जो आज भी सुनने में उतना ही सुंदर, उतना ही प्यारा लगता है और उतना ही ताज़ा लगता है। और इसके बाद आई फिल्म कागज़ के फूल, इसके बारे में भी हम आगे बातें करेंगे, लेकिन एक और गीत क्यों ना सुन लें, उन्हीं की फिल्म है मिस्टर एंड मिसेस 55। आवाज़ें हैं इस गीत के लिए मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं ओपी नैयर। तो आइए सुनते हैं, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी।

गुरुदत्त की फिल्मों के जो गीत होते थे ना, वो भी एक कहानी की तरह होते थे। हर गीत उनका बहुत प्यारा गीत, उनकी बहुत सारे प्यारे गीत आप उनकी फिल्मों के जब सुनते हैं तो। बाजी फिल्म का आर पार का गीत आप सुन लीजिए, बाबूजी धीरे चलना, आज भी ये गीत आपको उतना ही रोमांचित करता है। और हम उनकी फिल्म कागज़ के फूल के बारे में बातें कर रहे थे, तो पता है आज ये फिल्म विश्व सिनेमा की महान फिल्मों में गिनी जाती है, लेकिन जब ये रिलीज़ हुई थी तो बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी। उस असफलता ने गुरुदत्त के मन को बहुत गहरी चोट पहुँचाई, लेकिन समय ने साबित किया कि महान कृतियों को समझने में कभी कभी दुनिया को देर लग जाती है।

वक्त ने किया क्या हंसी सितम, ये गीत सुनते हुए आज भी लगता है जैसे समय स्वयं गुरुदत्त की कहानी सुना रहा हो। इसके बाद उन्होंने निर्माता के रूप में चौदहवीं का चांद और फिर साहेब बीबी और गुलाम जैसी कालजयी फिल्में दुनिया को दी। साहेब बीबी और गुलाम भारतीय समाज के बदलते दौर की ऐसी मार्मिक कहानी है दोस्तों, जिसमें रिश्तों का अकेलापन, टूटती परंपराएं और स्त्री का दर्द बेहद संवेदनशीलता से सामने आता है। इस फिल्म में मीना कुमारी का अभिनय आज भी अभिनय की पाठशाला माना जाता है। गुरुदत्त की फिल्मों की सबसे बड़ी खूबी पता है क्या थी? वो थी उनकी संवेदनशीलता। उनकी फिल्मों में कभी शोर नहीं होता, लेकिन हर दृश्य भीतर तक उतर जाता है। वे प्रेम दिखाते हैं, लेकिन उसके साथ दर्द भी दिखाते हैं। आप उनकी फिल्मों में सफलता देखेंगे, लेकिन उसके पीछे का अकेलापन भी वो छुपाना नहीं चाहते। कहते हैं कि एक कलाकार अपनी रचनाओं में कहीं ना कहीं स्वयं को छोड़ जाता है। गुरुदत्त भी अपनी हर फिल्म में थोड़ा थोड़ा जीते रहे। उनका कैमरा सिर्फ चेहरों को नहीं, आत्माओं को पढ़ता था। उनकी रोशनी सिर्फ दृश्य नहीं बनाती थी, भावनाएं गढ़ती थीं। उनकी खामोशी सिर्फ मौन नहीं, वो संवाद थी। दुर्भाग्य से ये विलक्षण कलाकार बहुत कम उम्र में इस दुनिया से विदा हो गया। सिर्फ 39 वर्ष की आयु में गुरुदत्त इस दुनिया से चले गए, लेकिन कलाकार शरीर से जाता है, उसकी कला नहीं जाती। आज दशकों बाद भी जब हम प्यासा, कागज़ के फूल, साहिब बीबी गुलाम, आर पार या चौदहवीं का चांद देखते हैं, तो महसूस होता है कि गुरुदत्त आज भी हमारे बीच हैं, अपने हर फ्रेम, हर गीत और हर एहसास में। कुछ लोग इतिहास में दर्ज हो जाते हैं और कुछ लोगों का नाम इतिहास की परिभाषा बदल देता है। जैसे पिछला वर्ष हमने गुरुदत्त साहब की पूरा शताब्दी समारोह मनाया, तो ऐसा विरले ही होता है। गुरुदत्त ऐसे ही कलाकार थे। उनकी फिल्मों ने हमें सिखाया कि सिनेमा केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि समाज का आईना भी है। ये सपनों की दुनिया भी है और सच का दस्तावेज भी। तो इस बीच क्यों ना एक और गीत सुन लें फिल्म बाजी से। तो आइए सुनते हैं गुरुदत्त की फिल्म का ये गीत।

कभी कभी महान कलाकारों को समझने में समय लग जाता है, उनकी कला अपने दौर से आगे होती है और गुरुदत्त साहब की यही सबसे बड़ी पहचान है और यही उनके साथ हुआ। आज के दौर में जब तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है दोस्तों, तब भी गुरुदत्त की फिल्मों की भावनात्मक गहराई, उनकी सिनेमाई भाषा और उनकी सौंदर्य दृष्टि प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। भारतीय ही नहीं, दुनिया भर के अनेक फिल्मकार उनकी फिल्मों का अध्ययन करते हैं और यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि वो समय से परे हो जाता है। तो दोस्तों, गुरुदत्त की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची कला कभी पुरानी नहीं होती। समय बदलता है, पीढ़ियाँ बदलती हैं, लेकिन संवेदनाएँ नहीं बदलती। जब जब कोई अकेला मन, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, सुनता है, जब जब कोई कलाकार अपने सपनों और संघर्षों के बीच खड़ा होता है, जब जब कोई दर्शक वक्त ने किया क्या हंसी सितम की धुन में खो जाता है, तब तब गुरुदत्त फिर से जीवित हो उठते हैं। आइए इस विलक्षण कलाकार को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि और नमन अर्पित करें और सुनते हैं गुरुदत्त की फिल्म का एक और सदाबहार नगमा, जो उनके सिनेमा की तरह ही हमेशा जिंदा रहेगा। और इस गीत को हमने लिया है फिल्म CID से, यानी लेके पहला पहला प्यार। आइए सुनते हैं।

तो दोस्तों, ये आज का जो गुलदस्ता आपने सुना वो हमने सजाया था महान फिल्मकार गुरुदत्त के गीतों से। गुरुदत्त साहब की फिल्मों के गीत हमने चुने और उनके बारे में हमने बातें की, क्योंकि आज 9 जुलाई है और आज उनकी जयंती है। तो इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो चला है। तो दोस्तों, हर बार की तरह मैं फिर से वही कहूँगी कि गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा और सुरीला बनाए रखिए। दीजिए अणिमा को विदा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आइए शामिल होते हैं महिलाओं के कार्यक्रम नारी लोक में। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं श्री पार्वती के।

0: बहनों श्रीना का प्यार भरा नमस्कार। बहनों भारत में महिलाओं और बच्चियों का सशक्तिकरण देश के समग्र विकास के लिए बेहद ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने समय समय पर कई योजनाएं शुरू की है, जिनका उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। तो बहनों इसी विषय पर, यानी कि महिलाओं और बालिकाओं के लिए सरकारी योजनाएँ क्या है, इस पर हम आगे भी बातें करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा अंतराल और सुनते हैं कुछ और भी जरूरी बातें।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बहनों देखिए, अगर हम भारत के विकास की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल महिलाओं और बच्चियों का होता है। अगर ये दोनों मजबूत होंगे तभी देश सच में आगे बढ़ेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की। आज मैं आपको आसान भाषा में कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले महिलाओं की बात करते हैं तो सबसे फेमस योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका उद्देश्य है बहनों कि बेटियों की संख्या बढ़ाना और उनकी पढ़ाई को प्रमोट करना। आपने देखा होगा बहनों कि पहले कई जगहों पर बेटियों को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। इस योजना के बाद जागरूकता बढ़ी और अब लोग बेटियों को भी पढ़ाना और उन्हें आगे बढ़ने देना महत्वपूर्ण मानते हैं। दूसरी योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना महिलाओं के हित में है। इसमें गर्भवती महिलाओं को करीब 5,000 रुपये की फाइनेंशियल मदद की जाती है ताकि वो अपना और अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सके। अब बात करते हैं

0: एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की। इसमें आप उसके नाम से अकाउंट खोल सकते हैं और भविष्य के लिए सेविंग भी कर सकते हैं, पढ़ाई या शादी के लिए। ये योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपके घर में छोटी बेटी है तो यह बहुत ही यूज़फुल है बहनों। इसके बाद हम बात करते हैं उज्ज्वला योजना की। पहले बहनों, गांव में महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती थी, जिसे धुआं बहुत होता था, इससे उनकी हेल्थ ख़राब होती थी। अब इस योजना के तहत फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर हुआ और लाइफ भी आसान हो गई है। और बहनों, अगर किसी महिला के साथ हिंसा होती है तो उसके लिए वन स्टॉप सेंटर, यानी कि यहाँ एक ही जगह पर मेडिकल लीगल यानी कानूनी काउंसलिंग मदद मिलती है। महिला शक्ति केंद्र योजना, यह ग्रामीण महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट और रोज़गार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। तो वहीं बहनों, जननी सुरक्षा योजना, इस योजना में सुरक्षित प्रसव के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, साथ ही सरकारी अस्पताल में डिलीवरी को बढ़ावा दिया जाता है, स्वस्थ डिलीवरी को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही बहनों, मोदी सरकार ने बिहार में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सरकारी संघ लिमिटेड की शुरुआत की है। इसके तहत सरकार ने सीधे जीविका दीदियों के बैंक खातों में 105 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की है, जिसका उद्देश्य किफ़ायती ब्याज दरों पर आसान ऋण उपलब्ध कराना है। बहनों, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम किशोरियों को मासिक धर्म स्वच्छता के लिए सहायता और जागरूकता प्रदान की जाती है। तो वहीं मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, इसके तहत विद्यालय जाने वाली छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, इसके तहत स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को यूनिफॉर्म के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। तो वहीं राष्ट्रीय किशोरी योजना, 14 से 18 वर्ष की किशोरियों को स्वास्थ्य जांच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। बहनों, ये सेवाएं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाती है। तो बहनों, आप इस योजना से काफ़ी लाभ उठा सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। तो इसी जानकारी के साथ अब अपनी इस चर्चा को विराम देती हूँ और चलती हूँ कहानी की दुनिया में। जी हाँ बहनों, कहानी सुनना हर किसी को पसंद होता है। कहानियाँ हमारी जीवन की सच्चाई बयां करती है, तो कुछ बचपन की यादें ताज़ा कर जाती है, जब हम अपने दादा दादी नाना नानी से कहानी सुना करते थे। तो चलिए सुनते हैं प्यारी सी कहानी। शीर्षक है कम्मू, कहानीकार है प्रीति कुमारी। बहनों, कहीं ये कहानी आपके जीवन से जुड़ी तो नहीं?
1: राम प्रसाद के घर आज काफ़ी चहल पहल थी। वहाँ जितने भी लोग थे सबके चेहरे खिले हुए थे। राम प्रसाद जी एक चौकी पर बैठे हुए थे। वैसे तो वे कुछ अस्वस्थ थे, लेकिन फिर भी बीच बीच में मुस्कुरा देते थे। सभी लोग उनको बधाई जो दे रहे थे। इसी बीच राम प्रसाद जी पुरानी यादों में खो गए। उन्हें वो दिन याद आ गए जब वे गांव से लगभग 50 किलोमीटर दूर तक एक चावल मिल में मजदूरी करते थे। आने जाने का पर्याप्त साधन नहीं था, इसलिए वे प्रतिदिन घर से मिल तक आना जाना नहीं कर पाते थे। अन्य मजदूरों के साथ वे भी एक किराए का कमरा लेकर वहीं रहते थे। बीच बीच में एकाध दिन के लिए घर आते थे। उनकी एकमात्र बेटी थी कामिनी, जिसे घर के लोग प्यार से कम्मू कहते थे। कम्मू 15-16 वर्ष की थी। उस समय वह 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। घर से स्कूल की दूरी लगभग 4 किलोमीटर थी। वह अपनी कुछ सहेलियों के साथ पैदल ही स्कूल आया जाया करती थी। कम्मू की एक सहेली प्रियंका प्रतिदिन एक लड़के से बातचीत करती थी। शुरू में तो कम्मू ने विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में उस लड़के की गतिविधि कुछ ठीक नहीं लगी। लड़के की उम्र 24-25 वर्ष के आसपास थी। देखने से

0: नहीं हुआ, अपराधी किस्म का लगता था। प्रियंका कम्मू की पक्की सहेली थी। कम्मू और प्रियंका की उम्र लगभग समान ही थी। घर की जिम्मेदारी ने कम्मू को उम्र से अधिक समझदार बना दिया था। उसने प्रियंका को उस लड़के से ज़्यादा मेल जोल नहीं रहने की सलाह दी, लेकिन उसने कम्मू की सलाह को अनसुना कर दिया। धीरे धीरे कम्मू ने खुद को प्रियंका से किनारा कर लिया और उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। चूंकि कम्मू के पिता घर से दूर रहते थे, इसलिए घर को संभालने में कम्मू भी अपनी माताजी की खूब मदद करती थी। पिता की मजदूरी अधिक नहीं थी, इसलिए कम्मू गाय पालती थी और आसपास के लोगों तथा चाय दुकानों में दूध पहुंचाती थी। पैदल दूध पहुंचाने में उसे काफ़ी कष्ट होता था, इसलिए उसकी माताजी ने किसी तरह उसे एक साइकिल खरीद दी। साइकिल मिल जाने के बाद कम्मू को स्कूल आने जाने में भी काफ़ी सुविधा होने लगी। सुबह में जब कम्मू साइकिल पर दूध का डब्बा लटका कर जाती थी, कुछ आवारा किस्म के लड़के रास्ते में कमेंट भी करते थे, लेकिन कम्मू उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती थी। घर की जिम्मेदारी निभाते निभाते कम्मू मानसिक के साथ साथ शारीरिक रूप से भी मजबूत हो गई थी। स्कूल में वह इस प्रकार की गतिविधियों में भाग लेती थी। लंबी दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद में तो वह हमेशा प्रथम आती थी। इसके अलावा फुटबॉल, कबड्डी जैसे खेलों में भी उसका प्रदर्शन शानदार रहता था। पढ़ाई में तो अच्छी थी, प्रत्येक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करती हुई कम्मू BA पास कर गई। इस बीच दरोगा की बहाली के लिए विज्ञापन निकला। कम्मू को एक खेल शिक्षक उसकी प्रतिभा से परिचित थे। उन्होंने कम्मू को दरोगा पद के लिए आवेदन डालने की सलाह दी। शिक्षक महोदय की सलाह पर कम्मू ने दरोगा पद के लिए आवेदन डाल दिया और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुट गई। इस बीच उसकी सहेली प्रियंका के बारे में पता चला कि वह अचानक गायब हो गई। उसके माता पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के अलावा अपने स्तर से भी काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसके बारे में गांव में लोग तरह तरह की चर्चा करते, जितना मुंह उतनी बातें। गांव के एक सेवानिवृत्त शिक्षक रामशरण बाबू सभी लोगों को समझाते कि 14 से 20 वर्ष के बच्चे किशोर किशोरियों में कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं। ऐसे समय में सभी लोगों को अपने अपने बच्चे बच्चियों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। हालांकि कुछ लोग रामशरण बाबू की बातों का मजाक उड़ाते थे, उन्हीं में से एक प्रियंका के माता पिता भी थे। प्रियंका के बारे में कम्मू ने भी सुना तो उसे भी काफ़ी दुख हुआ, लेकिन वह तो प्रियंका की हरकतों से काफ़ी परिचित थी। जैसा उसने किया वैसा पाया। इस बीच दरोगा पद के लिए कम्मू ने लिखित परीक्षा दी। उसकी मेहनत रंग लाई, वह अच्छे अंकों से सफल हुई। अब उसे शारीरिक जांच परीक्षा में शामिल होना था। इसके लिए वह पहले से आश्वस्त थी, क्योंकि स्कूल के समय से ही इस मामले में काफ़ी सक्रिय थी। उसकी शारीरिक शक्ति का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार अचानक उसके पिता रामप्रसाद जी बीमार पड़ गए। डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिल पा रही थी, तो कम्मू अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर लगभग 15 किलोमीटर दूर अस्पताल पहुँच गई। सही समय पर उसके पिताजी का इलाज हुआ और वे स्वस्थ हुए। शारीरिक जांच परीक्षा में भाग लेने के लिए कम्मू ने कठिन अभ्यास किया और सफलता भी पाई। इस बीच प्रियंका को पुलिस ने गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक छोटे मोटे शहर में बरामद किया। साथ ही उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया जिससे उसका मिलना जुलना होता था। पुलिस के मुताबिक वह व्यक्ति आपराधिक किस्म का था और उसका धंधा भोली भाली लड़कियों को जाल में फंसा कर गलत लोगों के हाथों में बेचना था। खैर, किसी तरह प्रियंका अपने घर आ गई और अपने माता पिता के पैर पकड़कर भविष्य में इस तरह की गलती न करने की कसम खाई। उस दिन जो राम प्रसाद जी के घर चहल पहल थी वह इसलिए कि उसी दिन कम्मू का दरोगा परीक्षा का रिजल्ट आया था। आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार में रहकर भी कम्मू यानी कामिनी ने सफलता पाकर एक मिसाल कायम की। सभी लोग अपने अपने बच्चे बच्चियों को उससे सीख लेने को कह रहे थे। अचानक कम्मू के मामा विकास जी मिठाई का डब्बा लेकर प्रसाद जी के पास पहुँचे और एक लड्डू के मुंह में ठूस दिया। विकास जी की हरकत से राम प्रसाद जी की तंद्रा भंग हुई। वे पुरानी यादों से निकलकर मुस्कुरा उठे, वहां उपस्थित लोगों की खुशी में शामिल हो गए। इस घटना के बाद से लोग अपने अपने बच्चों को शिक्षित बनाने तथा उन्हें गलत आदतों और गलत संगति से बचाने के प्रयास में जुट गए। इसके बाद गांव का माहौल पूरी तरह से बदलने लगा। सभी लोग आसपास में मिलजुल कर रहने लगे तथा सुख दुख की घड़ी में सभी एक दूसरे के काम आने लगे। पूरा गांव खुशहाल नज़र आ रहा था। विशेषकर गांव की लड़कियां पढ़ाई के प्रति अधिक सक्रिय हो गई।
1: बहनों, हम सुन रहे थे कहानी, शीर्षक था कम्मू। कहानीकार थी प्रीति कुमारी। इनकी इतनी अच्छी कहानी के लिए हम प्रीति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और बहनों, कहानी के बाद अब चलते हैं कविता की दुनिया में और सुनते हैं काव्य पाठ। कवित्री है कुमारी किरण।
2: मेरी कविता का नाम है मुझे बचाओ। मुझे बचाओ, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? यह धरती तुझे पुकार रही है। यह धरती तुझे पुकार रही है। मेरे भाई, मेरे भाई, मेरी बहना जागो। मेरे भाई, मेरी बहना जागो। अब नहीं तो कब जागोगे? अब नहीं तो कब जागोगे? पत्तियाँ सूख रही है, पत्तियाँ सूख रही है। डालियाँ सूख रही है, डालियाँ सूख रही है। नदियाँ सूख रही है, नदियाँ सूख रही है। हवाएँ भी अपनी रुख बदल रही है, हवाएँ भी अपनी रुख बदल रही है। सांसें अटक रही है, सांसें अटक रही है। दम घूंट रहा है, दम घूंट रहा है। पर्यावरण चीख चीख कर पुकार रहा है, पर्यावरण चीख चीख कर पुकार रहा है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पर्यावरण बचाना सिर्फ हमारा कर्तव्य नहीं, पर्यावरण बचाना सिर्फ हमारा कर्तव्य नहीं, हमारा फर्ज नहीं, हमारा फर्ज नहीं। हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी ज़रूरतें हैं। हमारी ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी है। मोहब्बत करना है अगर, मोहब्बत करना है अगर, पर्यावरण से मोहब्बत करो। मोहब्बत करना है अगर, पर्यावरण से मोहब्बत करो। मदमस्त पवन के झोंकों से, मदमस्त पवन के झोंकों से, इठलाती बलखाती डालियों से, इठलाती बलखाती डालियों से। सिर्फ महकती फूलों से नहीं, सिर्फ महकती फूलों से नहीं, कांटों से भी मोहब्बत करो। कांटों से भी मोहब्बत करो, सावन की घटा घनघोर से, सावन की घटा घनघोर से, पहाड़ की ऊंची चोटी से, पहाड़ की ऊंची चोटी से, धरती की हरियाली से, धरती की हरियाली से, कोयल की मीठी वाणी से, कोयल

की मीठी वाणी से मोहब्बत करो, कोयल की मीठी वाणी से मोहब्बत करो, रिमझिम बारिश की बूंदों से, रिमझिम बारिश।

धरती की उमंगों से, खनकती चूड़ियों से, खनकती चूड़ियों से, खिलती कलियों से, खिलती कलियों से, प्रकृति की बाहों से, प्रकृति की बाहों से मोहब्बत करो, प्रकृति की बाहों से मोहब्बत करो। आओ मिलकर अपनी माँ की आंसू पोछें, आओ मिलकर अपनी माँ की आंसू पोछें, पेड़ लगाकर पानी बचाकर, पेड़ लगाकर पानी बचाकर, खुशहाली वापस लाएं, खुशहाली वापस लाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, खुशहाली वापस लाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं, धरती को स्वर्ग बनाएं। मेरी अगली कविता माँ पर आधारित है। शीर्षक है भोली भाली माँ। ममता में नहलाती, ममता में नहलाती, दुख दर्द से दूर ले जाती है माँ, दुख दर्द से दूर ले जाती है माँ। खुद गीले में सोकर, खुद गीले में सोकर, सूखे में सुलाती है माँ, सूखे में सुलाती है माँ। कितना भोली भाली होती है माँ, कितना भोली भाली होती है माँ। स्वादिष्ट खाना बनाती, स्वादिष्ट खाना बनाती, सबसे पहले हमें खिलाती है माँ, सबसे पहले हमें खिलाती है माँ। अगर कहूँ भूख नहीं है, अगर कहूँ भूख नहीं है, झट से एक और रोटी ले आती है माँ, झट से एक और रोटी ले आती है माँ। भर पेट मुझे खिलाकर, भर पेट मुझे खिलाकर, अपना भूख मिटाती है माँ, अपना भूख मिटाती है माँ। कितना भोली भाली होती है माँ, कितना भोली भाली होती है माँ। गोदी में सुलाकर, गोदी में सुलाकर, रोज़ नई कहानियाँ लोरी सुनाती है माँ, गोदी में सुलाकर, रोज़ नई कहानियाँ लोरी सुनाती है माँ। अपनी बाहों को झूला बनाकर, अपनी बाहों को झूला बनाकर, पालना बनाती है माँ, पालना बनाती है माँ। धीरे धीरे थपकियाँ से, धीरे धीरे थपकियाँ से, गहरी नींद में सुला देती है माँ, गहरी नींद में सुला देती है माँ। कितना भोली भाली होती है माँ, कितना भोली भाली होती है माँ। लेट से जब मैं घर लौटूँ, लेट से जब मैं घर लौटूँ, चौखट पर खड़ी होती है माँ, चौखट पर खड़ी होती है माँ। इतना देर कहाँ थे, इतना देर कहाँ थे, फिर प्यार से गले लगा लेती है माँ, फिर प्यार से गले लगा लेती है माँ। कितना भोली भाली होती है माँ, कितना भोली भाली होती है माँ। सबका देखभाल करती, सबका देखभाल करती, बड़ी दयालु होती है माँ, सबका देखभाल करती, बड़ी दयालु होती है माँ। घर की धूरी बनकर, घर की धूरी बनकर, दर्द का मरहम पट्टी बन जाती है माँ, दर्द का मरहम पट्टी बन जाती है माँ। कितना भोली भाली होती है माँ, कितना भोली भाली होती है माँ। शिष्टाचार हमें सिखाकर, शिष्टाचार हमें सिखाकर, जीने का मतलब सिखाती है माँ, शिष्टाचार हमें सिखाकर, जीने का मतलब सिखाती है माँ। खुद अपमान सहकर, खुद अपमान सहकर, सम्मान दिलाती है माँ, खुद अपमान सहकर, सम्मान दिलाती है माँ। सच्चाई का रास्ता दिखाकर, सच्चाई का रास्ता दिखाकर, साहस बढ़ाती है माँ, साहस बढ़ाती है माँ। कितना भोली भाली होती है माँ, कितना भोली भाली होती है माँ। जब जब हम असफल होते, जब जब हम असफल होते, सफलता की उम्मीद जगा देती है माँ, जब जब हम असफल होते, सफलता की उम्मीद जगा देती है माँ। कड़ी मेहनत कर, कड़ी मेहनत कर, आखिर मंजिल तक पहुंचा देती है माँ, कड़ी मेहनत कर, आखिर मंजिल तक पहुंचा देती है माँ। कितना भोली भाली होती है माँ, कितना भोली भाली होती है माँ। बीमार जब मैं पड़ूं, बीमार जब मैं पड़ूं, मिन्नत कर खुदा से दुआ छीन लेती है माँ, बीमार जब मैं पड़ूं, मिन्नत कर खुदा से दुआ छीन लेती है माँ। सर को सहलाकर, सर को सहलाकर, आखिर बेहतर महसूस करा देती है माँ, आखिर बेहतर महसूस करा देती है माँ। कितना भोली भाली होती है माँ, कितना भोली भाली होती है।

0: जय माँ। माँ तुमसे दूर होकर, माँ तुमसे दूर होकर गम का बोझ उठाता हूँ, माँ तुमसे दूर होकर गम का बोझ उठाता हूँ। सच कहूँ माँ तुम्हारे बगैर, सच कहूँ माँ तुम्हारे बगैर छुप छुप कर रोता हूँ। थक कर जब मैं वापस आऊँ, थक कर जब मैं वापस आऊँ, तुम्हें याद आती हो माँ, तुम्हें याद आती हो माँ। कितना भोली भाली होती है माँ, कितना भोली भाली होती है माँ। मेरे खुश होने पर खुश होती, मेरे खुश होने पर खुश होती, मेरे दुखी होने से दुखी होती है माँ, मेरे दुखी होने से दुखी होती है माँ। जरा सा चोट लगने पर, जरा सा चोट लगने पर सबसे अधिक घायल होती है माँ, सबसे अधिक घायल होती है माँ। कितना भोली भाली होती है माँ, कितना भोली भाली होती है माँ। मैंने कभी जताया नहीं, मैंने कभी जताया नहीं कितना प्यार करता हूँ तुमसे, मैंने कभी जताया नहीं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। आज मैं भी पूछूँ एक सवाल, आज मैं भी पूछूँ एक सवाल, कैसी हो माँ तुम कैसी हो, कैसी हो माँ तुम कैसी हो। रहती हो बीमार, रहती हो बीमार कहती हो ठीक हूँ, रहती हो बीमार कहती हो ठीक हूँ, आखिर अपना दर्द क्यों नहीं बयां करती है माँ।
1: मैनु हम सुन रहे थे काव्य पाठ, कवित्री थी कुमारी किरण। उनकी इतनी प्यारी प्यारी कविता के लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और बहनों, जब आम का मौसम आता है जैसे अभी है, तो प्रकृति अपनी अनुपम छटा बिखेर देती है। आम के पेड़ों पर लदे रसीले फल मन को लुभाते हैं, और उसी समय कोयल की मधुर कुहू कुहू की आवाज़ वातावरण में मिठास घोल देती है। मानो आम और कोयल का साथ प्रकृति का सबसे सुंदर उपहार हो। आम की मीठी खुशबू और कोयल का मधुर स्वर मिलकर हर मन को आनंद, ताजगी और उल्लास से भर देते हैं। तो बहनों, ऐसे में ये गीत सुनना तो बनता ही है। तो सुनते हैं प्यारा सा गीत।

नारीलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कीजिए स्वीकार। नमस्कार, विमलेश का उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी जोहर। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: ग्राम चरौदाबार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
3: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लवण्य कश्यप।
2: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में।
2: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
3: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं। और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी, उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
2: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबियलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
3: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
2: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं, ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
3: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
2: बिल्कुल।
3: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
2: जी।
3: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़,

0: लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
1: जी अजीत जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4,850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
0: माना जाता है श्रोताओं की इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2,800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
1: जी अजीत जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
0: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
1: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
0: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश जी, एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
1: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
0: तो श्रोताओ, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वाले सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से,
0: आज का प्रश्न है क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
1: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

0: भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
2: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ कुछ लोग पहले से रहते

आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। ये नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

इस काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की

रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में।

0: अरे वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है।
1: इसने मेरी काली और लाल दोनों मटकियां तोड़ दी है। हाँ।
2: अरे धृताची।
3: हाँ भैया।
2: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूध से भरी मटकी माँ को दे।
3: अच्छा।
0: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो, अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है।
2: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
4: अरे भाई ये क्या हो रहा है आज? अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? अब तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
2: जी,
4: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
2: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियां टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें ठीक करवाने बढ़ईयों और लोहारों के घर गया है, उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
4: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
2: जी पिताजी।
4: उसमें रखकर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
2: ठीक है।
4: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है, कल वो काला घोड़ा वहां से निकल भागा था।
2: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
4: अरे प्रवाहन।
1: जी पिताजी।
4: तो मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
1: वो पिताजी,
4: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है, कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
1: जी वो
4: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
1: पिताजी हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयार ही समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
0: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है। और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे, क्यों देवदत्त?
2: हाँ हाँ पिताजी।
1: और पिताजी हम तो अपने साथ हरिराज और शत्रु मर्दन को भी ले जा रहे हैं।
0: हाँ।
1: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे, खेत बस तैयारी समझिए।
4: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रु मर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
1: जी
4: उन्हें कल हस्तिनापुर जाना है।
0: पर क्यों पिताजी?
4: वहाँ महाराजा हरिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है, इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी, वहां रथों की दौड़ भी होगी।
0: पिताजी हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
2: जी पिताजी।
0: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं।
4: बहुत अच्छा।
0: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
1: पिताजी देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
0: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
4: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं जौ और चावल ले जाना।
0: जी पिताजी।
4: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
0: अच्छा पिताजी।
4: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं, यही नहीं गुरुकुलों के ब्रह्मचारी गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
0: अच्छा
1: पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
3: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
4: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
3: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना, सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
1: चल चल बढ़िया ही कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने।
2: और क्या,
1: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
3: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
1: अच्छा अच्छा चल ठीक है, ले ही आएंगे। अब तो खुश।
4: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
0: जी पिताजी।
4: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
1: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पैने तीर भी रख लिए हैं। भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे?
0: और पिताजी एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
1: भैया सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल काशी और विदेह से भी रथ आ रहे हैं।
0: हाँ।
1: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
4: हाँ ये तो है।
5: हाँ, हाँ, हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
6: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: अरे सुनो सुनो कुछ कह रहे
1: हैं। इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
2: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है,
1: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
2: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
1: चलो देखते क्या होता है।
3: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
4: अरे वो देखो
1: क्या
4: रथ की दौड़ शुरू हो गई। अरे वो देखो तो ये शुरू हो गई।
1: अरे क्या बांके और सजीले सवार है।
4: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ
5: पहुंच गया।
6: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते थे।

गुरुकुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग

0: जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा। धन्यवाद
1: मित्र। कुलपति का आदेश सुना तुमने?
2: कैसा आदेश मित्र? मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
1: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
2: अच्छा,
1: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
3: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
4: अरे हाँ, चलो पास से देखते हैं।
3: हाँ, चलो चलो।
4: अरे ये देखो कितना अच्छा घोड़ा।
1: वाह, इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
4: इसे पकड़ लेते हैं। हाँ, इसे पकड़ लेते हैं।
3: चलो चलो।
4: अरे वाह, अरे अरे, चलो इसे पकड़ लेते हैं।
3: ये पकड़ा।
2: अरे ये कोलाहल कैसा है?
5: छोड़ दो छोड़ दो, ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
2: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे, इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
3: अरे चलो चलो, भाग चले, आचार्य को बता दे, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
2: अरे रुको तो सही। अरे देखो देखो,
3: क्या
2: आचार्य तो वही पहुंच गए हैं। और हाँ, वो देखो, आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
3: हाँ, अच्छा हुआ संकट टल गया। अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
2: हाँ।
3: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
2: हाँ।
3: उनका प्रभाव कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
6: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

0: कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल, और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का यह भागलपुर केंद्र है। लोकरंग कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कपिल देव ठाकुर के गाए लोकगीत। आरंभ में सुनिए लोक भजन।

0: लोकरंग कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं कपिल देव ठाकुर के गाए लोकगीत। अभी लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: कपिल देव ठाकुर के स्वर में अब सुनते हैं एक मनोन गीत।

श्रोताओं, लोकरंग कार्यक्रम आप पुनः सुन पाएंगे 1:20 पर। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 1:10 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैंसी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में झारखंड विजन 2050 परामर्श का आज आखिरी दिन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने समिट का किया स्वागत, लेकिन राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। सभी जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता में बनेगी रक्तदान निगरानी समिति। धनबाद में खनन ब्लास्टिंग का असर। 44 करोड़ की लागत से बनी झरिया सिंदरी बलियापुर सड़क कई जगह धसी। उपायुक्त ने BCCL से मांगी मरम्मत राशि। गिरडी समेत राज्य के कई जिलों में अल नीनो के प्रभाव से सूखे जैसे हालात। कृषि विभाग ने किसानों को कम पानी वाले मोटे अनाज और दलहन की खेती करने का दिया सुझाव। और साहिबगंज में खेलो इंडिया साइकिलिंग सिटी लीग का सफल आयोजन। 3 आयु वर्गों की 203 बालिकाओं ने दिखाया दम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में नई दिल्ली में चल रहे 2 दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श का आज दूसरा और आखिरी दिन है। विजन 2050 के तहत आयोजित इस परामर्श में झारखंड को तकनीकी रूप से अग्रणी बनाने के लिए वैश्विक उद्योगपतियों के साथ महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड सरकार के 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट का स्वागत करते हुए कहा कि निवेश से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य की कानून व्यवस्था सुधारने पर जोर देने की अपील की। संजय सेठ ने कहा कि अपराध नियंत्रण और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए झारखंड के बड़े शहरों में लंबे समय से लंबित पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को तुरंत लागू किया जाना चाहिए।
1: माननीय मुख्यमंत्री, मेरी शुभकामनाएं हैं, आप अपने मिशन में सफल हो, पूंजी निवेश हो, किंतु उसके पहले बिजली की आपूर्ति 24 घंटे हो, लॉ ऑर्डर दुरुस्त हो, हालात माने बियॉन्ड कंट्रोल है। और इसीलिए कई सालों से हम यहाँ आवाज उठाते आए कि पुलिस कमिश्नर बनना चाहिए। अब पुलिस कमिश्नर आज तक बना नहीं।
0: वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाने के बाद झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हर चीज की एक हद होती है।
2: मंत्री प्रिविलेज क्लास होता है, उनको बोलने दें। सबका लिमिट है ना, सब चीज का एक स्काई इज द लिमिट हम लोग कहते हैं। तो यदि स्काई ही लिमिट है तो बाकी का तो लिमिट है ही।
0: इस पर कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने मंत्री के रुख का बचाव करते हुए कहा है, किसी भी DGP की यह प्रशासनिक जिम्मेदारी बनती है कि वे मंत्री द्वारा लिखे गए पत्र का संज्ञान ले और उचित जवाब दे, ताकि शासन में पारदर्शिता बनी रहे।
3: बार बार पत्र लिखने पर अगर वो संज्ञान ना ले तो स्वाभाविक तौर पे प्रश्न खड़ा होता है, और यही प्रश्न माननीय मंत्री ने खड़ा किया है। और हमें यह लगता है कि ऐसे प्रश्नों का जवाब पुलिस महानिदेशक को देना चाहिए।
0: राज्य सरकार ने स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में उपायुक्त की अध्यक्षता में रक्तदान जागरूकता एवं निगरानी समिति के गठन का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव अविनाश कुमार द्वारा जारी ये निर्देश झारखंड हाईकोर्ट और WHO के मानकों के अनुरूप है। इसका उद्देश्य थैलीसीमिया और सिकल सेल के मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। धनबाद में 44 करोड़ की लागत से बनी झरिया सिंदरी बलियापुर सड़क निर्माण एक साल के भीतर ही BCCL की हैवी ब्लास्टिंग के कारण कई जगह धस गई है। स्थानीय विधायक रागिनी सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने निर्माण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। वहीं उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि पथ निर्माण विभाग ने मरम्मत का प्राकलन तैयार कर BCCL को भेज दिया है। राशि मिलते ही काम शुरू होगा।
4: तो रोड का जो डिपॉजिट पैसा है वो BCCL को देना है। हम लोगों ने BCCL को 3 महीने पहले ही पत्र लिखा, जैसे ही पैसा BCCL डिपॉजिट स्लिप्स में देगा हम लोग उसमें काम लगाएंगे। मुद्दा जरिया CEO के द्वारा उठाया गया, थाना प्रभारी द्वारा उठाया गया, हम लोग उसको संज्ञान में लिए हैं और आज निर्देश दिए हैं कि तत्काल जितनी जल्द से जल्द हो सके BCCL हम लोगों को उसमें फंड दे, ताकि RCD उसका काम कर सके।
0: पूर्वी सिंहभूम जिले में ब्रेन मलेरिया से 2 और मरीजों की मौत के साथ इस वर्ष मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई 12,518 लोगों की जांच में 128 नए मरीज मिले हैं, जिनमें 98 ब्रेन मलेरिया से पीड़ित हैं। संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावित गांवों में सघन जांच, दवा वितरण, फॉगिंग और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

0: आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर संगठन के कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर दोनों नेताओं ने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ यह संगठन दशकों से छात्रों को राष्ट्र सेवा, नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए प्रेरित कर रहा है। पलामू के चियांकी में नेशनल हाईवे 39 निर्माण के दौरान बिना मुआवजा मकान तोड़े जाने का विरोध कर रहे ग्रामीणों और पुलिस में आज सुबह झड़प हो गई। ग्रामीणों की पत्थरबाजी के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई ग्रामीणों और दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सदर SDM संजय पांडे ने क्षेत्र में दो दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। भाजपा ने राज्य में मॉनसून के आगमन के बाद किसानों को खाद और बीज न मिलने का मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के प्रदेश महासचिव मनोज सिंह ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य का अन्नदाता आज संकट में है।
1: किसानों को समुचित खाद बीज नहीं मुहैया करा सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार किसानों के प्रति अपनी असंवेदनशीलता प्रदर्शित करती है। किसानों के प्रति उनके मन में कोई सहानुभूति नहीं है।
0: राज्य के कई हिस्सों में इस वर्ष कम बारिश के कारण खरीफ फसलों पर अल नीनो का प्रभाव दिख रहा है, जिससे धान की रोपणी प्रभावित हुई है। कृषि विभाग के अनुसार गिरिडीह में मात्र 38% वर्षा होने से धान के बिचड़े तैयार करने में रुकावट आ रही है। जिला कृषि पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने किसानों को कम पानी वाली फसलों की वैकल्पिक खेती अपनाने का सुझाव दिया है।
2: गिरिडीह जिले में इस वर्ष 62% बारिश कम हुई है। वर्षापात के अभाव में धान के बिचड़े 5000 हेक्टेयर में ही हुआ है, जबकि 8000 हेक्टेयर में लग जाना चाहिए था। जिले में 88000 हेक्टेयर में धान रोपनी का लक्ष्य रखा गया है। किसान भाइयों से आग्रह होगा कि आने वाले दिनों में अगर बारिश नहीं होगी तो वैसी स्थिति में दलहन, तिलहन, मड़ुआ और दूसरे अनाज की खेती की जा सकती है।
0: आज सुबह के सत्र में घरेलू इक्विटी इंडेक्स लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 561 अंक चढ़कर 77,065 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 179 अंक बढ़कर 24,061 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपये प्रति किलो है। साहिबगंज में आज केंद्र सरकार के निर्देश पर आयोजित खेलो इंडिया साइकिलिंग सिटी लीग में 203 बालिकाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सिदो कान्हू स्टेडियम से समाहरणालय परिसर रोड तक हुई इस रेस का आयोजन 3 आयु वर्गों अंडर 14, अंडर 18 और सीनियर महिला ओपन वर्ग में किया गया। सभी विजेता और प्रतिभागी खिलाड़ियों को मेडल एवं सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में झारखंड विजन 2050 परामर्श का आज आखिरी दिन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने समिट का किया स्वागत, लेकिन राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। सभी जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता में बनेगी रक्तदान निगरानी समिति। धनबाद में खनन ब्लास्टिंग का असर। 44 करोड़ की लागत से बनी झरिया सिंदरी बलियापुर सड़क कई जगह धसी। उपायुक्त ने BCCL से मांगी मरम्मत राशि। गिरिडीह समेत राज्य के कई जिलों में अल नीनो के प्रभाव से सूखे जैसे हालात। कृषि विभाग ने किसानों को कम पानी वाले मोटे अनाज और दलहन की खेती करने का दिया सुझाव। और साहिबगंज में खेलो इंडिया साइकिलिंग सिटी लीग का सफल आयोजन। 3 आयु वर्गों की 203 बालिकाओं ने दिखाया दम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा।

नमस्कार। ये आकाश

कपिल देव ठाकुर की गाई इस पूर्वी के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का यह भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है पूर्व प्रसारित रेडियो धारावाहिक गंगा के सुरताल। लेखक अशोक अंचल और प्रस्तुतकर्ता हैं दासमती चार्टर और अशोक शरण। तो आइए सुनते हैं पूर्व प्रसारित रेडियो धारावाहिक गंगा के सुरताल।

0: गंगा नदी की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भागलपुर यानी महादानी कर्ण का अंग प्रदेश भी है। ये अंग प्रदेश बिहार के मुंगेर से लेकर झारखंड के साहिबगंज तक फैला हुआ है।
1: कर्ण की भूमि पर सन 75 से लेकर 780 ईसा के बाद तक पाल वंश का गौरवशाली साम्राज्य नालंदा तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय की तरह विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना और 16 महाजनपदों में प्रथम जनपद के रूप में सुविख्यात रहा है ये अंग प्रदेश।
0: ये गंगा की अनुपम कृपा का पात्र भी रहा है और गंगा के प्रति असीम श्रद्धा भाव का संवाहक भी।
1: यही कारण है कि इस नगर की गौरव गाथा प्राचीन काल से ही विश्वविख्यात रही है।
0: पूरे भारतवर्ष में केवल इसी प्रदेश के सुल्तानगंज में गंगा अपना प्रवाह बदलकर उत्तर वाहिनी हो जाती है।
1: ये प्रदेश धार्मिक और भौगोलिक दृष्टि से अपना विशेष महत्व रखता है।
0: इसी स्थान पर गंगा के बीच अजगैबीनाथ का मंदिर श्रद्धा और भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है।
1: इसके अतिरिक्त बैद्यनाथ धाम का ज्योतिर्लिंग और वासुकीनाथ का मंदिर तो प्रतिवर्ष लगने वाले श्रावणी मेले के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं।
0: इस तरह मुंगेर से लेकर भागलपुर तक का ये विस्तृत अंग प्रदेश गंगा की कृपा और महिमा से सर्वांग मंडित दिखाई पड़ता है।
1: अंगिका भाषा का ये लोकगीत अंग देश की महिमा का बखान करता है।

0: भागलपुर यानी तसर और रेशम का वो शहर जहां भोर होते ही रेशम के सूत करघे तानपुरे के तार की तरह तन जाते हैं और ताना बाना भरनी के साथ कारीगरों की उंगलियां खेलने लग जाती हैं।
1: रेशम के लिए विशेष तौर पर प्रसिद्ध ये शहर न केवल देश के रेशम उद्योग के लिए जाना जाता है बल्कि रेशम के निर्यात में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
0: दरअसल भागलपुर की सुबह सूर्य की सुनहरी रेशमी किरणों के साथ जब घरों की अंगनाई में उतरती है,
1: उसके पूर्व ही गहरी नींद से जागे हुए लोग गंगा को जगाने के लिए पराती गाने लगते हैं।

0: गंगा के तटीय मैदानी भाग में फैला हुआ विस्तृत भूभाग, लहलहाती झूमती हुई फसल,
1: कृषि कार्य में लगे किसान और उसका साथ देती हुई उसकी पत्नी,
0: दूसरी तरफ गंगा का विशाल घाट और दो किनारों के बीच चलने वाली नौकाएं।
1: सुबह से ही लोगों को इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचाने के क्रम में लग जाता है नाविक।
0: वो नाविक जिसकी जीविका का आधार है गंगा।
1: वो जब भी गंगा की धारा में अपनी नाव लेकर उतरता है तो सूरज की झिलमिलाती रोशनी में दमकती लहरें गंगा को एक दैवीय आभा प्रदान करती हैं।
0: इस आभा से गंगा का सौंदर्य और अधिक बढ़ जाता है और नाविक खुशी से गा उठता है।

0: जिस गंगा नदी के जल ने संपूर्ण अंग प्रदेश को धन धान्य और समृद्धि का वरदान दिया है।
1: दूर तक लहलहाती फसलों की झूमती कलियों में किसानों के परिश्रम का फल प्रदान किया है। उसी गंगा ने कहलगांव में अपनी जलधारा से विद्युत उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
0: नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने गंगा की धारा से उत्पन्न विद्युत शक्ति से विकास का प्रकाश उत्पन्न कर अंधेरे पर विजय पाई है।
1: केवल यही नहीं, गंगा ने अपने प्रवाह में कई जलीय जीवों को भी आश्रय दिया है।
0: इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये है कि अंग प्रदेश में कहलगांव से भागलपुर के बीच लगभग 60 किलोमीटर तक एक विशेष प्रजाति की मछली डॉल्फिन पाई जाती है।
1: यानी किसान हो, नाविक हो या जलीय जीव जंतु हो, गंगा की ममतामयी गोद तो सबके लिए है।
0: ऐसी उदार और ममतामयी गंगा के लिए मन में श्रद्धा, भाव, भक्ति, आस्था और आदर का उत्पन्न होना स्वाभाविक भी है और सहज भी।
1: इसलिए भागलपुर की महिलाओं में विशेष तौर पर छठ या जीतिया पर्व के अवसर पर गंगा पूजन का विशेष महत्व है।
0: अंगिका भाषा में महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले इस गीत में कुछ ऐसे ही भाव हैं।

0: इस तरह अंग प्रदेश के जनजीवन में रची बसी ये गंगा भावनाओं में प्रेरणा बनकर उतरती है और सृजन कार्यों में साधना का साध्य बनकर सम्मिलित हो जाती है।
1: गंगा की इसी प्रेरणा ने भागलपुर की भूमि पर महर्षि मेही की आध्यात्मिक साधना को सफल किया।
0: तो शरद चंद्र की पारों को कालजयी कृति देवदास का महत्वपूर्ण पात्र बना दिया।
1: गंगा की इस महिमा का गान न केवल रचनाकार करता है बल्कि प्रकृति के सभी प्राणी मुक्त कंठ से उसकी स्तुति करते हैं।
0: गंगा की ऐसी ही सुंदरता, उसकी महिमा और स्तुति गीत को कवि ने इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है। गंगा

0: गंगा की महिमा, उसकी कृपा, क्षमा और दया का संवेद प्रभाव भागलपुर के कृषकों पर दिखाई देता है।
1: गंगा हर्षित होती है तो अन्न धन दे जाती है, कुपित होती है तो सारा कुछ ले जाती है।
0: लेकिन जब कभी उफनती बरसात में ये किनारा छोड़कर उतरती है तो सारे सपने, सारी आशाएं अपने साथ बहा ले जाती है।
1: फसल लगाने से लेकर पकने तक एक एक दिन, सप्ताह और महीने उंगलियों पर गिने जाते हैं,
0: क्योंकि धान की पकी फसलों की कटाई इसी महीने

0: में होती है। चारों ओर पके हुए धान से भरे हुए खेत खलिहान दिखाई देते हैं।
1: ऐसी ही आशाओं से ओतप्रोत अगहन मास का ये गीत किसानों के मनोभावों को कुछ इस तरह अभिव्यक्त करता है। लह लह।

0: लेकिन कभी कभी भागलपुर वासियों को गंगा के प्रकोप का भाजन भी बनना पड़ता है।
1: जब कभी गंगा की धारा किनारे की मर्यादा तोड़ गांव और खेतों खलिहानों में उतर जाती है
0: तो कई सपने टूटकर पल भर में बिखर जाते हैं।
1: तिनका तिनका इकट्ठा कर जतन से बसाई हुई गृहस्थी उजड़ जाती है।
0: अन्न के अभाव से रोग शोक और लाचारी का जीवन जीने को विवश हो जाता है हर प्राणी। दाने दाने को तरसते हैं लोग,
1: जैसे गंगा के सामने दया और कृपा की प्रार्थना करने लगते हैं।
0: नर नारी बाल वृद्ध सभी लाचार और अभावग्रस्त जिंदगी में सुख का सवेरा लाने की विनती करते हैं।
1: इन्हीं भावों का चित्रण इस लोकगीत में करुण स्वरों में किया गया है।

0: गंगा तो ममता की मूर्ति है, भागलपुर के पुत्रों का दुख उससे देखा नहीं जाता।
1: इसलिए बाढ़ के बाद अपनी गोद में लाई मिट्टी जब वो खेतों में छोड़ जाती है तो वो किसानों के लिए दुगनी उपज का वरदान बन जाती है।
0: किसान एक बार फिर कठोर परिश्रम से खेतों में पसीने की बूंदें बहाकर सोना

0: इन लोकगीतों में ढोलक, हारमोनियम, तबला और झाल वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया गया।
1: गायक कलाकार थे रेखा, वीरेंद्र, शंभू, राजेश, मीना तथा चंदन।
0: मोमेंटस प्रोडक्शंस द्वारा प्रस्तुत गंगा के सुरताल की इस कड़ी के तकनीकी सहयोगी थे दासमती चार्टर, अशोक शरण और नारायण साहू।
1: तो श्रोताओ, अविरल बहती रहे देश में गंगा की जलधार
0: और गूंजते रहे गगन में गंगा के सुरताल।
1: इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं। हर हर, हर गंगे, गंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रसारित रेडियो धारावाहिक गंगा के सुरताल, लेखक अशोक अंचल, प्रस्तुतकर्ता थे दासमती चार्टर और अशोक शरण। प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया।
1: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला,
2: स्वागत है आपका सुबह की सुहानी धूप में। ओस की नन्ही नन्ही बूंदों के साथ आकाशवाणी भागलपुर आपके लिए लेकर आया है जानकारियों का खजाना।
3: कई स्थापित कार्यक्रमों के साथ हम आपको लिए चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में।
2: रूबरू होंगे आप खबरों से,
3: देश दुनिया की ताजा जानकारी और स्थानीय हलचलों को आप जान पाएंगे एक नए अंदाज में।
2: और ये सब होगा आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में।
3: सुनिए हर दिन प्रातः 7 बजे से 7:55 तक
2: आकाशवाणी भागलपुर से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर।
3: भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनों का हाल जानिए,
2: साथ ही हाल जानिए मौसम का।
3: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के अंतर्गत
2: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर।
3: इसे आप मोबाइल पर न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं।
2: तो जरूर सुनिए
1: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
4: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
5: उमंग।

ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 2 बजने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार होंगे हमारे पटना केंद्र से।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सीमा सुरक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में बिहार समेत सीमावर्ती राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैठक में घुसपैठ, सीमा से जुड़े इलाकों में आबादी के पैटर्न में बदलाव, नशीले पदार्थों की तस्करी और सीमा सुरक्षा समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वर्ष 2026 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। IMF के अनुसार मजबूत घरेलू मांग और आर्थिक गतिविधियों के चलते

0: भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी बढ़त बनाए रखेगा। हालांकि अगले वर्ष 2027 में देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर घटकर 6.4% रहने का अनुमान है। आईएमएफ का कहना है कि इसके बावजूद भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बना रहेगा। बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी अभिषेक कुमार ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सराफ की जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। नामांकन के बाद भाजपा प्रत्याशी ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि उन्हें कहीं से कोई चुनौती नहीं है। इधर राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। मौके पर राजद समेत महागठबंधन के विभिन्न घटक दलों के नेता मौजूद थे। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर 11 जुलाई को अपना पर्चा दाखिल करेंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कटिहार के अहमदाबाद में सबसे अधिक 108.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना है। इधर विभाग ने शाम 5 बजे तक नालंदा, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, वैशाली, शेखपुरा और समस्तीपुर जिले में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले के लिए पोर्टल आज से चालू हो रहा है। इसके माध्यम से शिक्षक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार ने स्थानांतरण की नीति बनाई है। उन्होंने कहा कि तबादले के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी हो चुकी है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम सिवान में पदस्थापित उत्पाद निरीक्षक अंकेश कुमार गोंड के पटना के तानापुर स्थित आवास समेत 5 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके मुंगेर और सिवान स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र के सिजुआ गांव के पास एक कार और ट्रक के बीच टक्कर के बाद कार में आग लग गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। कार चालक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत परमालपुर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक के अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा जाने के चलते चालक और खलासी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पटना के अमहरा थाना क्षेत्र के बवनलई गांव से पुलिस ने शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले के फूलपरास थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक तस्कर को 13 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: में बदलाव, नशीली अशिया की स्मगलिंग और सरहद की सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत होगी। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अहम मईशत बन चुका है। बैन अलाक्वामी मॉनिटरी फंड IMF ने साल 2026 के लिए भारत की इकतसादी तरक्याती शरह 7% रहने का अंदाज़ा जाहिर किया है। IMF के मुताबिक मजबूत घरेलू मांग और इकतसादी सरगर्मियों के सबब भारत आलमी मईशत में अपनी बरतरी कायम रखेगा। हालांकि आइंदा साल 2027 में मुल्क की मजमू घरेलू पैदावार यानि DGP तरक्की की शरह कुछ घटकर 6.4% रहने का अंदाजा है। IMF का कहना है कि इसके बावजूद भारत दुनिया की अहम इकतसादियात में सबसे तेज रफ्तार से तरक्की को अबूर करने वाला मुल्क बना रहेगा। बांकीपुर असेंबली सीट के जिमनी इंतखाब के लिए BJP उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर BJP के रियासती सदर संजय सरावगी, JDU के रियासती सदर उमेश कुशवाहा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रुकन पार्लियामेंट शाम्भवी चौधरी समेत NDA के कई सीनियर लीडरान मौजूद थे। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद BJP उम्मीदवार ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि उन्हें कहीं से कोई चैलेंज नहीं है। इधर RJD उम्मीदवार रेखा गुप्ता ने भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। मौके पर RJD समेत अजीम इत्तेहाद की मुख्तलिफ हलीफ पार्टियों के लीडरान मौजूद थे। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर 11 जुलाई को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। मानसून की फ़ौलियत से रियासत में बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। महकमा मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कटिहार के अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा 108.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा ने अपनी पेशगोई में कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के बेशतर हिस्सों में बारिश का इम्कान है। इधर महकमा ने शाम 5 बजे तक नालंदा, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, वैशाली, शेखपुरा और समस्तीपुर जिले के कुछ मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश की वार्निंग जारी की है। रियासत के सरकारी स्कूलों में मामूर असातजा के तबादले के लिए पोर्टल आज से चालू हो रहा है। इसके तवसुस से असातजा तबादले के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त कर सकते हैं। वजीर तालीम मिथिलेश तिवारी ने बताया कि मेयारी तालीम के लिए हुकूमत ने तबादले की पॉलिसी अपनाई है। उन्होंने कहा कि तबादले के लिए मेयारी ऑपरेटिंग तरीक़ाकार SOP जारी हो चुका है। इक्तसादी जराइम इकाई की टीम सीवान में मामूर एक्साइज इंस्पेक्टर अंकेश कुमार गोंड के पटना के दानापुर वाक़े रहायशगाह समेत 5 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मौसूला इत्तला के मुताबिक उनके मुंगेर और सीवान वाक़े ठिकानों पर भी छापेमारी जारी है। आमदनी से जायद इमलाक के मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। गया जिले के बोधगया थाना इलाके के सिजुआ गांव के करीब एक कार और ट्रक के दरमियान तसादुम के बाद कार में आग लग गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि कार ड्राइवर की हालत तश्वीशनाक बनी हुई है। वहीं कैमूर जिले के कुदरा थाना इलाके के तहत परमालपुर के करीब एक तेज रफ्तार ट्रक के बेकाबू होकर पुलिया से टकरा जाने के सबब ड्राइवर और खलासी की जाय वकू पर ही मौत हो गई। पटना के अमहरा थाना इलाके के बब्बन लय गांव से पुलिस ने शराब पीकर हंगामा करने के इल्जाम में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मधुबनी जिले के फूलपरास थाना इलाके से पुलिस ने एक स्मगलर को 13 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्ध सैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के हर एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश ठेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है,

आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा।

0: पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार होंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। उत्तराखंड राष्ट्रीय

0: शिक्षा नीति के अंतर्गत वयस्कों के लिए निर्धारित साक्षरता मानकों को प्राप्त कर पूर्णतः साक्षर राज्य बना और वियतनाम में होने वाले पिकलबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारतीय दल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज विक्टोरिया के गवर्नमेंट हाउस में आयोजित 30वें भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज ने संयुक्त वक्तव्य दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी बदलाव का स्वागत किया और क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक रूपरेखाओं को अंतिम रूप दिया।
1: यह महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार कर रहे हैं। पारंपरिक व्यापार से हाईटेक डिफेंस कॉरिडोर की ओर बढ़ने, महत्वाकांक्षी सीका समझौते में तेजी लाने और ऐतिहासिक परमाणु समझौते के अंतर्गत लंबे समय के लिए यूरेनियम निर्यात शुरू करने जैसी पहलों से दोनों देशों के बीच आपसी भरोसा को अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचाया गया है। जहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि 10 लाख लोगों का भारतीय प्रवासी समुदाय इस साझेदारी की असली धड़कन है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के विकास की गति को क्रिकेट की तरह बताया।
2: क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, डिसीजन ट्वीट एंट्री जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी।
1: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी भविष्य के लिए निर्मित एक सुदृढ़ और स्थायी संबंध है। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध गहरे पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। शिखर वार्ता की प्रमुख उपलब्धियों में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को नई गति देना शामिल रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी और संसाधन सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भारत साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और सप्लाई चेन साझेदारी को क्रियान्वित किया गया और महत्वपूर्ण खनिज कॉरिडोर की स्थापना की गई।
2: हमने सीका पर तेजी से काम करने का निर्णय लिया है, जो दोनों देशों के लिए बैलेंस एम्बिशियस। हम बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी पर भी तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारी रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट एक्शन में हमारे प्रयासों को साकार रूप दे रही है। इसके तहत हम इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कोलैबोरेशन पर विशेष बल दे रहे हैं।
0: हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वार्षिक रक्षा मंत्रियों के संवाद को संस्थागत रूप दिया गया तथा समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप का शुभारंभ हुआ।
2: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग पर अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इसके तहत ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के नए शाखा परिसर बंगलुरु और गुरुग्राम में स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने भी इस भविष्य उन्मुख साझेदारी को और मजबूत बनाने की बात कही।
3: We share a focus on deepening and diversifying the relationship between our countries.
4: हम दोनों देशों के बीच संबंध को गहरा और विविध बनाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे हम लगातार मजबूत होते रहे हैं। आज हमने हर पहलू पर चर्चा की। नए और अहम समझौतों के माध्यम से हम रक्षा सुरक्षा, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक तथा ऊर्जा सुरक्षा और जरूरी खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों का

0: असर पर जोर दिया। ये समूह रणनीतिक कॉरपोरेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को लागू करने का काम कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स 2026 के तहत तीसरे ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। कार्यकारी समूह की इस बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय परिवहन सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने गतिशीलता, शहरी बुनियादी ढांचा और सतत विकास जैसे मुख्य मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत ने आज गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल के लिए एक अहम राष्ट्रीय पहल शुरू करके अपनी समुद्री विकास में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उड़ीसा के एक दिन के दौरे पर आए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूर के समुद्रों में काम करने वाली भारतीय झंडे वाली मछली पकड़ने वाली नावों के लिए अनुमति पत्र जारी करने की राष्ट्रीय प्रक्रिया की शुरुआत की। इससे जिम्मेदारी से गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और समुद्री संसाधनों को संरक्षण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार होगा। उन्होंने उड़ीसा डीप सी फिशिंग मिशन डॉक्यूमेंट भी जारी किया जो राज्य में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को इकोसिस्टम को मजबूत करने और ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक योजना है। उपराष्ट्रपति ने युवा भारतीयों से मछली पालन को वैश्विक मौके वाला एक आधुनिक विज्ञान आधारित पेशे के तौर पर अपनाने का आग्रह किया।
2: I urge our institutions to continue supporting our fishing community with knowledge, technology and finance. May this historic initiative bring prosperity to every coastal family and contribute significantly to the realization of Viksit Bharat by 2047.
1: Prakash Das, Akashvani Samachar, Bhubaneswar.
0: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करना तथा कानून प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उपायों की पहचान कर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के केलोंग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ये सेंटर पूरे भारत के हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च को मजबूत करेगा। कृषि यंत्रीकरण उपमिशन के तहत सरकार ने अब तक देश भर में किसानों को 9,404 करोड़ रुपए मूल्य की लगभग 22 लाख कृषि मशीनें वितरित करने में सहायता प्रदान की है। ये मिशन वर्ष 2014-15 में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज पुणे मुंबई घाट में रेलवे लाइन की मरम्मत के काम की समीक्षा की। भूस्खलन भीषण था और रेलवे लाइन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी भारी नुकसान हुआ था। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की टीमें समन्वय से काम कर रही हैं। नीति आयोग ने उभरते क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता पर हितधारकों के साथ परामर्श बैठक आयोजित की। इस बैठक में सरकार, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उल्लास नए भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निर्धारित वयस्क साक्षरता मानकों को हासिल करने के बाद उत्तराखंड देश का छठा पूर्णतः साक्षर राज्य बन गया है। शिक्षा मंत्रालय के अधीन विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के बाद राज्यपाल ने 8 जुलाई 2026 को इस घोषणा को मंजूरी दी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों में भी ये आगे बढ़ चुका है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से तेज बारिश जारी है। दिल्ली वासियों की सुबह मूसलाधार बारिश और आंधी के साथ

0: शुरू हुई। बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव हो गया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था।
1: अगर हम आने वाले दिनों की बात करें, सबसे पहले एनसीआर दिल्ली की बात करें, तो एनसीआर दिल्ली के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट, हम अनुमान लगा रहे हैं कि जहां आज मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, इसके अलावा कल ये रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, परसों हल्का फुल्का रेनफॉल होने का अनुमान। वेस्ट उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए हमारा रेड अलर्ट है, वहाँ हम एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जगहों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
2: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश और भूस्खलन से पर्वतीय जिलों के कुछ राष्ट्रीय मार्गों, राज्य राजमार्गों और ग्रामीण क्षेत्रों के संपर्क मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। बंद सड़कों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन व पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने संबंधित विभागों को किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 24 घंटे सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करने की भी अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: केरल के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश की तीव्रता कम हो गई है। उत्तरी केरल के 5 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले कल रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट पर थे। वायनाड में 5 से 15 मिलीमीटर तक मध्यम बारिश दर्ज की गई। यहां मंगलवार को भूस्खलन हुआ था। भारतीय पिकलबॉल संघ ने 2026 पिकलबॉल विश्व कप के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। ये दल एक प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया के बाद चुना गया है। 30 अगस्त से 6 सितंबर तक वियतनाम के दानांग में आयोजित होने वाले पिकलबॉल विश्व कप में पेशेवर वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल जगत में एक जाना पहचाना नाम हर्ष मेहता दल की कप्तानी करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज रात 10 बजे से ब्रिस्टल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.7% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 565 अंक चढ़कर 77,069 पर और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,050 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साइबर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ऑस्ट्रेलिया भारत साझेदारी की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बीच मेलबर्न में वार्षिक शिखर वार्ता। श्री मोदी ने कहा, द्विपक्षीय संबंध गहरे आपसी विश्वास पर आधारित विस्तृत युग में प्रवेश कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर में खुले समुद्र के मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन का अनावरण किया। मॉनसून पूरे देश में सक्रिय, लगातार बारिश से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानि 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार को आपने सुना फिल्म गुलामी में। गीतकार गुलजार, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हिना फिल्म का गीत सुनिए। गायिका हैं लता मंगेशकर, गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

राम तेरी गंगा मैली। आइए सुनते हैं इस फिल्म में लता मंगेशकर को। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: चित्रपट से कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
4: तिलका मांझी तो बहुत।
3: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
5: बख्शी जगबंधु तो
4: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
6: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है चित्रपट से कार्यक्रम में।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए आनंद बख्शी का गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, गायिका लता मंगेशकर, और इस गीत को हमने लिया है फिल्म अर्पण से।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम तरंग। आज कलाकार हैं कविता पोडवाल और जसवंत सिंह।

तरंग कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जसवंत सिंह और कविता पोडवाल को। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

0: समूह स्वर में आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। मीडियम वेव 205.76 मीटर यानि 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अपराह्न के 3:25 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा का प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। इसे आप सुन पाएंगे संध्या 5 तक और फिर 5 से पुनः आनंद लें आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रमों का।
1: वो मेहनत, धैर्य, अनुशासन और सपनों का प्रतीक भी होता है, क्योंकि वो पैसा किसी ने कमाया है, मेहनत से कमाया है, और जब आप उसमें डालते हैं वो, या छोटा बच्चा जब डालता है तो वो एक अनुशासन भी सीखता है कि हाँ, मुझे अगर 5 मिले हैं तो ये सारे के सारे मैं डाल दूंगा, या 10 मिले हैं तो उसमें से आधा डालूंगा, आधा खर्च करेंगे। और एक सपने भी बुनते हैं बच्चे उसमें कि अब मेरे जब इतने इकट्ठे हो जाएंगे तो फला खिलौना लाना है, या फला चीज मुझे जो पसंद है या जरूरत है वो मैं लेकर आने वाली हूँ।
2: और ये जो है ना, ये आदत आज भी बच्चों को लगाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज हम ये भूलते जा रहे हैं ना ये सब बातें कि गुल्लक, अब तो घर में शायद ही किसी के घर में गुल्लक दिखता होगा, पर ये गुल्लक की आदत है ना बच्चों को मिला। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में दादा दादी आए, नाना नानी आए, रिश्तेदार आए, तो जेब खर्च के लिए 1, 2, या 5 रुपये या 10 रुपये देते थे। उन बच्चों, वो बच्चे जो हुआ करते थे पैसों को संभाल कर अपने गुल्लक में डाल देते थे, और हर बार सिक्का गिनने की वो मधुर खनक मन में एक नई खुशी देती थी। हाँ। जब सिक्कों की संख्या बढ़ती थी तो बच्चों के मन में उत्सुकता भी बढ़ती थी दीपा, कि उनका गुल्लक में कितना धन जमा हो गया है। ये उत्सुकता उन्हें अनावश्यक खर्च से भी दूर रखती थी।
1: बिल्कुल। और गुल्लक को देखो ना, सबसे पहले बचत का जो गुल्लक है बच्चों में, सबसे पहले ये बचत का महत्व सिखाता है, और ये भी समझाता है कि छोटी छोटी बचत भी समय के साथ बड़ी पूंजी बन सकती है। अगर बच्चों को ये सिखाना है हमें कि थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करो और फिर देखो एक दिन कितना बड़ा हो जाएगा, तो गुल्लक से बढ़िया कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है।
2: एक हमारे साथ

0: मैंने लिखा है सही कहा, बचपन की बचत बैंक या मिनी बैंक कहिए, वो गुल्लक ही है जिसमें छोटे सिक्के से लेकर रुपया के छोटे मोटे नोट भी हम डाल सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते, ताला लगा हुआ होता है। गुजराती मुहावरा है जो इस गुल्लक के लिए लागू पड़ता है, टिप्पे टिप्पे सरोवर भराए, मतलब बूंद बूंद से हौज भरा जा सकता है। बच्चों में बचपन से ही बचत की आदत डालने का सबसे पुराना तरीका है जो वित्तीय अनुशासन पैदा करता है। हमने भी बचपन में ऐसे गुल्लक बनाए थे। उस जमाने में हमारे घर कोई मेहमान आते थे तो जाते वक्त हम बच्चों को 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया हाथ में थमा देते थे, उसे हम सभी गुल्लक में डाल देते थे, वो दिवाली या जन्माष्टमी त्योहार पर खर्च करने के काम आते थे।
1: बिल्कुल सही कहा, एक एक रुपए जोड़कर बड़ी राशि तैयार करना, ये जीवन का उस वक्त का ऐसा अनुभव था सोनाली, जो आगे चलकर हमें आर्थिक रूप से जिम्मेदार बनाने में मदद करता है। और यही आदत बड़े होकर बैंक में बचत करने या भविष्य की योजना बनाने या सोच समझकर खर्च करने की हमें प्रेरणा भी देता है।
0: और दीपा ये बात है ना कि गुल्लक धैर्य और संयम का भी पाठ पढ़ाता है कि आज की दुनिया में हर चीज तुरंत पाने की जो चाह बढ़ गई है, लेकिन गुल्लक हमें इंतजार करवाता है कि उसे भरने में कई महीने लगते हैं। और यही प्रतीक्षा बच्चों को ये समझाती है कि सफलता और उपलब्धि समय तथा निरंतर प्रयास से मिलती है।
1: एक संदेश कहता है कि दिवाली की खरीदारी में गुल्लक भी आता था। हमें घरौंदा में जो भुना अनाज मिठाइयों से भरते थे, वे खिलाते थे, उसके बदले में पैसा मिलता था, वही हम गुल्लक में डाल देते थे। आज का दिन शुभ है, लक्ष्मी बढ़ेगी, पर मुझे याद नहीं है कि कभी पैसे बढ़े, क्योंकि डालने के बाद निकलते निकलते मिट्टी के गुल्लक का मुंह बड़ा हो जाता था और पैसे ऐसे ही निकल जाते
0: और कभी कभी फोड़ना पड़ता था
1: थे। हाँ बिल्कुल
0: ना।
1: बिल्कुल
0: और
1: सही कहा।
0: एक साथी ने लिखा है कि गुल्लक बच्चों के लिए केवल पैसे जमा करने की जगह नहीं बल्कि उनकी छोटी छोटी इच्छाओं जैसे खिलौना या पसंदीदा चीजें खरीदने को पूरा करने का साधन और एक प्यारी यादों का पिटारा होता था। और
1: देखो, हाँ एक और संदेश पढ़ लीजिए।
0: एक एक साथी ने लिखा है, गुल्लक जिसे पिगी बैंक भी कहते हैं, मिट्टी या धातु या प्लास्टिक से बना हुआ छोटा पात्र होता है जिसका उपयोग छोटे सिक्के और पैसे जमा करने के लिए किया जाता है। ये विशेष रूप से बच्चों में बचत की आदत डालने का एक पारंपरिक और लोकप्रिय साधन है।
1: और देखो सोनाली, वक्त कहता है अनुशासन, क्योंकि हमें भी सीखना है, तो एक अंतराल के बाद हम फिर
0: फिर
1: आते
0: हाजिर
1: हैं।
0: होते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ चुके कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं दीपा माहेश्वरी और
1: सोनाली पाठक। चलिए एक हमारे साथी ने लिखा है कि बचपन की गुल्लक हमारे लिए किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं थी। उसमें सिर्फ पैसे नहीं बल्कि गर्मियों के छुट्टियों में खाई जाने वाली बर्फ की चुस्की, मेले से खरीदी जाने वाली मनपसंद गाड़ी और दोस्तों के साथ मिलकर बांटी जाने वाली टॉफियों की उम्मीदें जमा होती थी। जब कभी गुल्लक भर जाती और उसे तोड़ने का वक्त आता तो दिल में एक अजीब सी खुशी और थोड़ी सी मायूसी दोनों एक साथ होती थी। गुल्लक के टूटने पर फर्श पर बिखरे वो सिक्के किसी खजाने से कम नहीं होते थे। उस वक्त हमें ऐसा लगता था ना कि अरे हम तो कितने अमीर हैं, हमारे पास कितने
0: बहुत
1: सारे पैसे हैं।
0: बिल्कुल। और बच्चों को वित्तीय साक्षरता और धैर्य सिखाने का ये पहला माध्यम भी है। त्योहारों से जुड़ाव और हमारे देश में दीपावली के त्योहार पर लक्ष्मी पूजन के समय नई मिट्टी की गुल्लक खरीदने और उसकी पूजा करने की परंपरा है। भावनाएं, बच्चे बचपन में गुल्लक को हिलाकर सिक्कों की खनक सुनना और उसके भरने का इंतजार करना, बच्चों के लिए ये एक अनूठा आनंद होता है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है, गुल्लक सिर्फ पैसे रखने का डिब्बा नहीं बल्कि बचपन का पहला बैंक है जो बच्चों को बचत का महत्व, धैर्य और वित्तीय जिम्मेदारी सिखाता है।

0: ये एक पारंपरिक रूप से मिट्टी का बना होता है जिसमें सिक्के डालने के लिए पतली दीवार होती है, दरार होती है। इसी तरह की बातें हमारे सारे श्रोताओं ने लिखी है और बहुत सुंदर सुंदर गुल्लक से जुड़ी हुई यादें संजोई हुई है। पर आप क्या करना है दीपा,
1: हमें तो एक गीत सुनना है।
0: तो सुनवाते ही गीत।

0: हमें तो हमारे श्रोताओं से, और श्रोताओं को हमसे प्यार है
1: और हमेशा रहेगा।
0: हाँ बिल्कुल। गुल्लक की बात जब हो रही थी ना, एक बहुत सुंदर मैसेज आया है कि गुल्लक की बात से एक बहुत ही भावुक करने वाली बात याद आ गई। 4 साल पहले हमारे घर साइकिल पड़ी थी, 4 साल पहले, और सभी बच्चे स्कूल खत्म करके बाहर पढ़ने चले गए थे, तो हमने उसे सोशल मीडिया पे डाल दिया। और एक दिन एक आदमी आए और बात हुई, और जब उन्होंने पैसा निकाला, मतलब सारी बात तय हो गई होगी पैसों की, तो उन्होंने जब पैसा निकाला तो सिर्फ 10, 20 और 5 के सिक्के थे। मेरे देवर ने पूछा कि इतना पैसा तुम कहाँ से लाए हो, तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी सब जमा करके रखी थी साइकिल लेने के लिए। हमारे मुंह से कुछ शब्द नहीं निकला, हमें ऐसा लगा जैसे हम जड़ हो गए हैं। कितना भी उसने कहा कुछ पैसे ले लीजिए, मेरे देवर ने उसमें से सिर्फ 11 रुपए लिए और बोला कि अपनी बेटी को दे दो, फिर से इसे गुल्लक में जमा करें, और यह हमारा आशीर्वाद है।
1: कितना भावुक कर गया ना ये संदेश।
0: बिल्कुल,
1: सचमुच मेरी तो आंख नम हो गई। हाँ। इस तरह से भी यानी देखिए यहाँ पर ऐसा विरोधाभास है कि यहाँ पर कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पैसों की कदर नहीं होती, और कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए इतना इंतजार करना पड़ता है, इतने सारे पैसे जमा करना
0: बिल्कुल
1: पड़ता है।
0: और हम अपने, ये हमारे ऊपर होता है सोनाली, कि हम अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं,
1: किस तरह की परवरिश
0: कर रहे हैं।

0: कहीं देखिए ना, बच्चे छोटी सी बात बिल्कुल मान जाते हैं, वो हम जैसा कहते हैं वैसा सुन लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं देखने में आता है कि बच्चे बहुत ज्यादा जिद पर एकदम अड़ जाते हैं। बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस बारे में संदेश लिखा है, ये पहला संदेश मैं पढ़ रही हूँ कि मुझे ये कहना है, बच्चे जिद कभी कभार ऐसी जिद कर देते हैं जिन्हें पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ना पूरी करो तो बच्चे घर में तूफान मचा कर बैठ जाते हैं और पूरे घर को सर पर उठा लेते हैं। लेकिन बच्चों की हार जीत को पूरी करना चाहिए ये जरूरी नहीं, बच्चों को ये समझना चाहिए कि वो जिस चीज की जिद कर रहे हैं वो कितना जरूरी है या कितना नहीं, उन्हें यह करना चाहिए या नहीं, ये बात उन्हें समझा देना चाहिए। और अगर कभी कभी वो ना माने तो उन्हें थोड़ा सा, आप स्ट्रिक्ट भी ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा कड़क होकर के उन्हें ये बात समझाना बहुत जरूरी है।
1: और बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं ना दीपा, वो हमें ऐसा लगता है कि मासूम है, उन्हें क्या पता है, पर उनकी नजर सब तरफ रहती है। कैसे कभी ऐसा होता है ना कि हमने पैसे निकाले बैंक से और ऐसे ही रख दिए, और फिर ऐसे ही हम बार बार करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अरे हमारे घर में तो बहुत पैसे हैं, या फिर हमारी मम्मी भी तो ऐसे ही बिना सोचे समझे सामान लेकर आती है, या फिर हमारे यहाँ तो फिर हमारे लिए ही क्यों अनुशासन है।
0: सही
1: तो
0: बात है।
1: पहली पहल तो हमें करना चाहिए कि बच्चों के सामने हमें इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के वही बच्चे ने इतने ज्यादा जिद्दी बन जाते हैं, और फिर हम सिर्फ बच्चों को दोष देते हैं पर उसमें कुछ कारण हमारा भी होता है कि हम उनकी परवरिश कैसे
0: कैसे
1: करते
0: कर
1: हैं।
0: रहे हैं। और
1: एक साथी ने लिखा है दीपा कि बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे नटखट जिद करते हैं जैसे खिलौनों के लिए, तो माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सभी के लिए सुखद अनुभव होता है, लेकिन बड़े बच्चे अगर ऐसी जिद करने लगे तो उनके हित में ना हो, तो माता पिता और घर के बड़ों को समझा कर साफ मना करना चाहिए। हमारे बच्चे जब से नर्सरी क्लास में स्कूल जाने लगे, तभी से सभी ने हमारा सम्मान करते हुए सिर्फ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड वस्तुओं की ही डिमांड करते हुए, आज भी उनकी यही सोच है और जिद नहीं करते। कितने संस्कारी बच्चे
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: देखो ना। और इसी तरह से एक और संदेश है कि राजहट, त्रियाहट और बालहट तीनों ही जिद मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और आगे कहती हैं कि भगवान प्रभु कृष्ण चंद्रमा को ही लेने की बात ठान बैठे थे, तब माता यशोदा ने अपनी बुद्धि से उनकी जिद को पूरा करने के लिए आंगन में थाली में पानी भर कर रखा और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया और बोली कि ये ले लो। तो बच्चों का जिद्दी होना उनके विकास का एक सामान्य हिस्सा है, इसे संभालने के लिए चिल्लाने या डांटने के बजाय शांत रहना चाहिए। उन्हें आदेश देने के बजाय विकल्प दें, पहले अपना होमवर्क कर लो तब टीवी देखना, या पहले दूध पी लो तब तुम्हें चिप्स मिलेंगे, और उनकी बात सुनने के बाद उन्हें तर्क से समझाना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये भी जरूरी है कि आप हर बार अगर वो चिप्स की जिद करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप बोलो कि पहले आप होमवर्क करो फिर चिप्स देंगे। चिप्स
1: नहीं,
0: उनको खाना उनके सेहत के लिए ठीक नहीं है, ये भी बताना बहुत जरूरी है,
1: जरूरी
0: क्योंकि
1: है।
0: जो सामग्री लिखी होती है उस पैकेट में पीछे, वो उनको समझाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बिल्कुल उनका इस पे कोई कंट्रोल कहीं भी कुछ भी नहीं है, वो उठा उठा करके चिप्स लेते हैं। ये वाकई में एक एक अलग विषय है जो कि विचारणीय है।
1: जी, एक साथी ने लिखा है कि वह क्या कहने उस जिद के, भाई गुल्लक पर जीने के अभ्यस्त होकर उसके पैसे खर्च करने की छूट नहीं थी, यदि जिद की भी जाती तो भली भांति समझाया जाता था, और जिद को पूरी नहीं करने के उद्देश्य से गुलाब जामुन तक घर में बनवाया जाता था, और केवल भुनी हुई मूंगफली ही पिताजी खरीद लाया करते थे। इतने सख्त और अनुशासन प्रेमी थे, जबकि बच्चों के जिद को पूरे करने के लिए माँ यशोदा ने तो थाली में ही चांद को उतार दिया था, ठीक उसी तरह जिद को ठोक ठाक कर ही उसके विकल्प स्वरूप ही पूरे होने वाले जिद को ही तरजीह दी जाती रही है। इन्होंने कहा है कि भाई यार, हर समय बच्चों की जिद पूरी करना जरूरी नहीं है, जहां पर तुम्हें योग्य है। और ये भी बात है ना कि अगर बच्चों ने जिद की है ना, तो हम तुरंत ही उन्हें बोल देते कि हाँ हाँ हाँ कर देंगे हम, तो ऐसा भी नहीं करें, सोच समझ के उनसे वादा करना
0: क्योंकि
1: उतना
0: आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं और बहुत
1: स्मार्ट
0: सतर्क, और हाँ
1: होते।
0: सब जानकारी लिए हुए होते हैं। एक संदेश ये भी आया है सोनाली, ये कहते हैं कि सिर्फ बच्चे ही क्यों, बड़े भी जिद करते हैं, जो ज्यादातर अपने अनुचित मांगे पूरा करवाने के लिए जिद करने के लिए रूठ जाके या गुस्सा होके या जोर से चिल्लाने वाले जैसी उनके ये मुख्य लक्षण होते हैं। कभी थकान, कभी खराब स्वास्थ्य या कभी तनाव के कारण भी चिड़चिड़ापन आ सकता है। हाँ, बड़ों में ये आ सकता है, लेकिन चूंकि बड़े, क्योंकि घर के बड़े हैं, वो बार बार अगर इस तरह से करेंगे तो बच्चों को लगेगा कि अगर बड़े ही इस तरह से चिड़चिड़े हो रहे हैं या जिद कर रहे हैं तो आप हम छोटों को क्या समझाएंगे। तो बड़ों को भी यहाँ पे बड़ा संभल रखना पड़ता है।
1: और जो ये ना जिद्दीपन का जो गुण है ना, ये बचपन में ही जिसका पनप जाता है तो फिर आगे जाके वो बढ़ते ही जाता है, कि
0: हाँ
1: बचपन में माँ
0: जी।
1: ने नहीं सुना तो दादी ने बात पूरी कर दी, पिताजी ने नहीं सुना तो दादाजी नाना जी ने जिद पूरी कर दी।

0: नहीं तो बुआ ने जिद पूरी कर दी। तो फिर जो बच्चों को मालूम होता है, बड़े स्मार्ट होते हैं बच्चे, उन्हें मालूम होता है कि अभी इनसे इनने नहीं की ना, तो उनसे मांग लेते हैं। और ऐसे करते उनका जिद्दी स्वभाव बन जाता है, और वो बड़ेपन होने के बाद में तो और भी बढ़ते जाता है। एक साथी ने लिखा है कि बच्चे जिद वाली बात चली है बच्चों की, तो मैं बचपन में बहुत जिद्दी था, गर्मी में कोट पहना था। एक बार माता जी गर्म कोट छुपा दिया तो मैं रोने लगा, जिद पकड़ ली कि कोट पहनाया गया, तब मैं चुप हुआ। बचपन से मुझे कोट अच्छा लगता था और मैं सर्दी के मौसम में पहनता हूँ, पहना था जब मैं 7 साल का था। तो
1: यानी
0: ये तो
1: सर्दी की जो मोटी कोट
0: हाँ,
1: होते हैं
0: वो भी
1: वो
0: गर्मियों में
1: गर्मी में पहनना इस
0: हाँ
1: तरह की जिद करने लगे थे। तो भाई कहीं पे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ये माहौल में गर्मी ना हो जाए, थोड़ी सी ठंडक लेकर आते हैं।
0: सुनते हैं।

0: और ये ठंडी हवा में डोलते डोलते कहाँ पहुंच गए हम?
1: हम एक ऐसे शहर में पहुंच गए जहां पर हमारी सखी ने कहा है कि अब हमारे शहर में अभी इतनी बारिश नहीं हो रही है तो हो जाएगी, बस थोड़े ही दिन में इधर का पानी उधर भी चला जाएगा। वैसे एक साथी ने लिखा है कि हम बचपन में इतने नटखट थे, इतने शरारती थे कि गुल्लक के जो नोट ऊपर आ जाते थे ना तो हम चिमटे से निकाल लेते थे।
0: ये देखिए, ये भी बड़ी खूब एक तरकीब है कि कहाँ से क्या क्या चीजों की में दिमाग चल जाता है सबका, और देखिए हमें भी एक आइडिया मिल गया कि पतली सी चीज कोई निकालनी हो तो चिमटे का इस्तेमाल किया लिया जाए।
1: मेरी हमारे एक पहचान वाले थे तो उनके घर में ना एक ऐसा डिब्बा आता है ना जैसे रबड़ी वाला, जो जो खीर बनाने में

0: वगैरह इस्तेमाल करते, तो उसमें वो उनकी मम्मी ने कहा था कि त्योहार के दिन ही खोलना है, तो उन्होंने क्या किया कि उसमें सुई डाल दी उसमें और छोटा सा छेद कर दिया और उसे मुंह में लगा लगा के वो पीने लग गए थे। तो ऐसी भी शरारत
1: ऐसे
0: बच्चे
1: भी
0: करते।
1: शरारत होती है। और एक जिद की बात पर हमारी एक बहन ने लिखा है कि इस बार गर्मियों में हम सास बहू ने मिलकर थोड़े चिप्स बनाए हैं, बस इसलिए कि कभी बच्चे अगर जिद करते हैं तो घर में ही इसे तल कर एयर फ्रायर में भून कर दे दिया जाए। तो
0: क्या
1: ये बात
0: बात
1: सही
0: है।
1: है कि आप बाजार के वो पैकेट के बदले में अगर आप ये घर में ही तल लें तो भी कोई उसमें बुराई नहीं है, या एयर फ्रायर में आप उसको उसको फ्राई करके
0: दे
1: दीजिए तो वो भी बहुत अच्छा एक विकल्प है।

0: अत्यधिक सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। मानसून के दौरान सड़कों पर फिसलन बढ़ जाती है और विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे सड़क यातायात नियंत्रण प्रभावित होता है। हेडलाइट्स चालू रखें। भारी बारिश में दृश्यता कम होने पर लो बीम हेडलाइट्स का प्रयोग करें। वाइपर्स की जाँच शुरू करें। यात्रा शुरू करने से पहले विंडशील्ड वाइपर्स सही ढंग से काम करने की पुष्टि करें। और इन्होंने कहा कि कार के शीशों पर जमी भाप को हटाने के लिए भी डिफॉगर ऑन करें। और सबसे जरूरी बात है कि जो बारिश में जो मैनहोल खुले रहते हैं
1: जी
0: तो संभल के चले। बहुत सारे लोग

0: बारिश में कहीं कोई ज़रूरतमंद दिखे तो उसका बाहें थाम लीजिए, उसके हाथ पकड़ लीजिए, या कहीं ऐसा लगता है कि किसी के साथ की ज़रूरत है तो अपना हाथ आगे कर दीजिए, है ना।
1: बिल्कुल, इसी का नाम तो ज़िंदगी है
0: जी। बिल्कुल, और इसी ये साथ में ही हर मौसम बड़े प्यार से निकल जाता है।
1: बिल्कुल, ऐसी सोच हो ना तो ये मौसम क्या ज़िंदगी ही बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ जाती है।
0: बात तो बिल्कुल सही कही, संदेश पढ़ रही हो ना।
1: जी, बारिश के दिनों में रोड पर जब भी हम निकले तो अच्छे से देख कर चले, कहीं रोड में गड्ढा तो नहीं, कोई मेन होल तो नहीं खुला, कहीं कोई बिजली के करंट या खंबे में से तो पानी नहीं आ रहा है। अगर आपको पता चलता है तो तुरंत आसपास के लोगों को इकट्ठा करके विभाग को खबर करना चाहिए। यात्रा करते समय ट्रैफिक नियम की कुछ बात लिखते रहे, और उन्होंने कहा कि इस तरह से अपने जो साथी है उनकी मदद करते रहिए। कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि वायर कहीं लटका हुआ है, कहीं पेड़ कोई गिरने वाला है, तो उसकी भी जानकारी तुरंत देना चाहिए। कि कोई अगर बिल्डिंग ऐसी है कि दिख रही है कि उसमें दरारें दिखने लग गई है या टाइल्स गिरने लग गए हैं उसके, तो इससे हमें दूसरों को सचेत करना बहुत जरूरी है।
0: और एक संदेश कहता है कि हम जहां पर रहते हैं या रोज आना जाना करते हैं तो हमें वहां पता होता है कि रास्ते पर कहां गड्ढे हैं, कहां ब्रेकर है। तो जब हम किसी नए शहर में जाते हैं या कोई अन्य शहर में जाते हैं तो बारिश में संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि रास्ता कैसा है, वो रोड जहां पे हमें रोज का आना जाना है वो कैसा है। तो उस वक्त आप जरूर इस मौसम में ख्याल रखिए।
1: एक साथी ने लिखा है कि बारिश शुरू होने पर सड़कें सबसे ज्यादा फिसलन भरी हो जाती है, क्योंकि पानी जमा हुए तेल, ग्रीस और धूल के साथ मिलकर टायरों की पकड़ को कम कर देता है। यहाँ तक कि पानी की पतली परत होने पर भी, खासकर बारिश के पहले कुछ मिनटों में हाइड्रोप्लानिंग हो सकती है, इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। साथ ही और आप गाना सुनते हैं,
0: चलिए

0: सोनाली देखिए, अब वक्त तो वाकई में हो चुका है सयोनारा यानी कि बाय कहने का, विदा लेने का।
1: पहले श्रोताओं को हम धन्यवाद कहेंगे, इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखे। इसी तरह कमेंट्स लिखते रहिए, विविध भारती से जुड़े रहिए और सखी सहेली सुनते रहिए। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। और मुंबई की इस झमाझम बारिश में हो रही है श्रोताओं की बातचीत की बरसात और साथ में पड़ रही है गानों की फुहार। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातचीत का, देखते हैं ये पहला कॉल किसका आया है। हेलो फरमाइश।
1: जी जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी भगवान जी, बताइए क्या हाल है आपका और सीहोर का क्या हाल है?
1: सीहोर में दीदी बारिश हो रही है और हमारा हाल भी अच्छा है दीदी। हम खेती किसानी करते हैं और हमारे इधर सोयाबीन और मक्का की बुआई हो चुकी है दीदी। 12-13 दिन की फसल हो चुकी है हमारे इधर।
0: वाह भाई वाह, क्या बात है। तो आपका अपना क्या शौक है बताइए?
1: दीदी मुझे तो क्रिकेट देखना का बहुत शौक है और मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, अब तो नहीं खेलता हूँ दीदी।
0: अब क्या छोड़ दिया?
1: दीदी अब क्या है, खेती किसानी में रहते हैं ना, इसलिए टाइम नहीं मिलता दीदी।
0: तो क्रिकेट खेलने के शौकीन रहे तो रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का बहुत चार्म रहा है, तो आप सुना करते थे क्रिकेट कमेंट्री रेडियो पर?
1: जी दीदी हम बहुत सुनते थे, पहले क्या है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी दीदी, तो हम रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे दीदी और बहुत अच्छा लगता था हमको।
0: जी जी, और एक अलग नॉस्टैल्जिया होता था रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का, एक ही रेडियो और चार चार पांच पांच लोग मिल के सुना करते थे, है ना, वो गजब के दिन थे।
1: चार पांच क्या, हमारे यहाँ तो दीदी पूरे गाँव के करीबन 20-25 इकट्ठा लोग हो जाते थे गाँव में से, फिर सुनते थे दीदी।
0: एक घर में रेडियो होता था और आंगन की मुंडेर पर रख दिया जाता था और बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर रेडियो सुनते थे, है ना। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है खुददार और गाने के बोले तुम सा कोई प्यारा मासूम नहीं है, ये वाला भी सुनना है दीदी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया, सुनते हैं खुददार फिल्म।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते मैम साहब।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं राजस्थान के डीडवन और कुशावन जिले के छोटी बेरी गांव से सिकंदर खान बोल रहा हूँ जी।
0: जी बताएं सिकंदर जी, क्या हाल है? ये कोयल की आवाज आ रही है भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बाघ से बोल रहे हैं क्या किसी?
1: नहीं एक्चुअल में क्या, अभी मैं खेत में बैठा हुआ हूँ तो वहाँ से कॉल कर रहा हूँ आपको।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। बारिश नहीं हो रही है
1: राजस्थान में? अभी एंट्री हो रही है धीरे धीरे दक्षिण राजस्थान में, तो मानसून आ गया अभी।
0: बढ़िया। ये कोयल की कूक तो बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी मीठी तान छेड़ी है कोयल ने। कौन कौन से पेड़ हैं खेत के आसपास?
1: खेत के अंदर तो ये जामुन के हैं, पपीते हैं, आम वगैरह हैं।
0: तो खेत में किस चीज की बुआई चल रही है अभी?
1: अभी तो ये मानसून की बारिश में जो ये बाजरा है, गंवार है, ये मोठ वगैरह की बिजाई चल रही है जी।
0: और उसके बाद फिर धान की बुआई होगी जब बारिश होगी, तब
1: फिर वो जो रबी वाली फसल है वो स्टार्ट हो जाएगी।
0: जी जी। खेती किसानी की सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध हैं आपके यहाँ?
1: यहाँ पे हमारे वैसे तो ये इंदिरा गांधी नहर की भी सुविधा है, उसके अलावा ये ट्यूबवेल है, कुएं वगैरह, इनसे भी सिंचाई हो जाती है। इन दिनों में मानसून जो हो जाता है तो उसकी भी फसल अच्छी होती है।
0: बढ़िया। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फकीरा पिक्चर है उनका गाना है, वो के रहूंगी तेरी,
0: दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी।
1: मैं साहब बहुत पुराना श्रोता हूँ, जब से वो जो ये हेलो फरमाइश शुरू हुआ था कमल शर्मा ने 1996 में स्टार्ट किया था, वो मैंने पहला प्रोग्राम सुना था मैम साहब।
0: जी जी, बहुत बढ़िया। तब से आप सुन रहे हैं, तब से तो कितने सारे बदलाव हुए प्रोग्राम्स में,
1: बहुत काफी चेंजेस हुए हैं साहब। लेकिन 26 साल में कॉल लगा नहीं, लेकिन 2026 में मेरी दूसरी बार बात हो रही है विविध भारती में।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम फकीरा।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, मैं इंदौर से सत्यप्रकाश दीक्षित बोल रहा हूँ ममता दीदी।
0: जी सत्यप्रकाश जी, बताइए क्या हाल है आपका, इंदौर का क्या हाल है, बारिश वगैरह हो रही है?
1: हाँ, अभी पिछले एक हफ्ते से प्रकृति की बहुत अनुपम कृपा है कि अच्छी बारिश हो रही है और चारों तरफ हरितिमा और प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ गया है।
0: जी क्या
1: और
0: बात है?
1: ऐसा लगने लगा है कि सावन बहुत निकट ही है और आनंददायी वातावरण हो गया है।
0: सावन का जब इंतजार होता है तो मन यादों के गलियारे में पहुंच जाता है, तो जब सावन आता था तो आप अपने यादों के गलियारे में जाइए और बताइए कौन सा सावन आपके लिए बड़ा यादगार रहा है। बचपन में जो सावन के झूले पड़ते थे नीम की पेड़ पर, तो कभी झूलने का मौका मिला?
1: भी याद आते हैं, पेड़ों पे जब गांव में जाते थे तो पेड़ों पे झूले झूलते थे, बड़ा मनोरम वातावरण लगता था सावन का। चारों तरफ एक जो प्राकृतिक सुषमा प्रकृति की दिखती थी, बहुत ही मन भावन रहती थी।

0: रिद्धिमा और वसुंधरा जो प्राकृतिक वातावरण में जो सावन में हो जाती है वो बहुत याद आती है। और अक्सर हम जाया भी करते हैं गाँव में, तो वो पुराने दिनों को याद करके, सावन को याद करके मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, हर्षित हो जाता है।
1: तो उन दिनों में कजरी वगैरह गाई जाती थी सावन में, याद है क्या आपको?
0: हाँ, मैंने बहनों से भी सुने हैं वो। अभी तो खैर मैं चूंकि अभी वरिष्ठ नागरिक हूँ 71, तो थोड़ी सी याददाश्त भी थोड़ी सी क्षीण हो चली है, पर हाँ मैंने बहुत सुने हैं, बड़े मन भावन गीत और कजरी रही है।
1: आप बताइए आज कौन सा गाना सुना चाहेंगे? और ये भी बताइए, आपने कहा इतने वरिष्ठ नागरिक हैं, कहाँ पर आपने काम किया और कितने साल से रेडियो सुन रहे हैं?
0: मैंने बैंक में अधिकारी के रूप में काम किया करीब 40 वर्ष।
1: अच्छा।
0: और अभी 10 साल से सेवानिवृत्त हूँ, सामाजिक सेवा में और दूसरे कार्यों में समय निकल जाता है, पारिवारिक दायित्व भी है, उनका भी निर्वहन करते हैं। लोग रिटायरमेंट को ये कहते हैं कि अब आपकी सेकंड इनिंग चालू हो रही है।
1: हाँ।
0: तो वो एक तरह से सही भी कहते हैं।
1: हाँ।
0: कि अपन उन दायित्वों को पहले सर्विस में रहते नहीं पूरे कर पाए, तो उन दायित्वों का निर्वहन कर लें। और जो आनंद कहीं किसी विशेष स्थान की यात्रा वगैरह का नहीं ले पाए हों, कंपोजिट टूर प्रोग्राम हो, जब समय मिलता है तो पर्यटन के लिए, तो उन स्थानों पर जब भी जाने का मौका लगता है तो समूह के साथ चले जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, घूम के आए और एंजॉय करें। तो सत्यप्रकाश दीक्षित जी का फोन बीच से डिस्कनेक्ट हो गया, बातचीत उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से की, शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका। और उनके लिए हम सुनवा रहे हैं अनजाना फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं अशोक आनंद बोल रहा हूँ, लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से।
0: आपने लेक सिटी उदयपुर कहा, तो पूरे देश में बहुत सारी जगहों पर खूब बारिश हो रही है, मुंबई में भी। तो क्या आपके उदयपुर में बारिश हुई, तो झीलें भर गई?
1: कल शाम को भी बहुत झमाझम बारिश हुई थी।
0: क्या बात है, झीलें लबालब भर गई होंगी फिर तो?
1: नहीं, अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा, अभी उसमें जुलाई अगस्त तक में भरेगी। झीलों की नगरी है तो काफी सारी झीलें हैं, और जैसे जैसलमेर लेक है तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
0: जब बारिश होती है तो आप सोचते हैं कि राजस्थान में खासतौर से पानी की कमी होती है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं लोगों से मिलजुल कर?
1: मैंने जैसे कई बार देखा अपने घर पे भी, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जैसे अपने छत पे जो पानी होता है उसको पाइप से अपने वापस बोरिंग के अंदर जैसे सेट करवा रखा है, और वेस्ट पानी करते नहीं है। पर राजस्थान में हमारा उदयपुर शहर जैसे है ना, इतना पानी का यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम जैसे राजस्थान में लोग बोलते हैं कि सूखा होगा, वो एक्चुअली क्या है, जोधपुर जैसलमेर उससे ज्यादा सूखा होता है।
0: जी जी, वहाँ की और जगहों के बारे में बताइए, उदयपुर के आसपास क्या कुछ है
1: पर्यटन? उदयपुर के बाद में बताना चाहूंगा कि जैसे उदयपुर के पास में एक सज्जनगढ़ फोर्ट किला है, जिसकी दीवार विश्व की सबसे दूसरे नंबर की दीवार है, और उदयपुर पर्यटक की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो विश्व में एक नंबर पे आता है।
0: वाह।
1: तो पहले किसी जमाने में फर्स्ट प्रायोरिटी कश्मीर और दिल्ली हुआ करती थी, अब उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी मोस्टली होती है कि राजस्थान में उदयपुर या और दूसरे किले फोर्ट वगैरह, और राजस्थान के कुछ अच्छे मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध थी उनको देखने के लिए, विजिट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं।
0: क्या बात है, आप जो जानकारी दे रहे हैं, हमारे श्रोताओं की जानकारी समृद्ध हो रही होगी, और बड़ा अच्छा लग रहा है इतनी सारी बातें आपने बताई।
1: मैं और आपसे अर्ज करना चाहूंगा।
0: जी हाँ।
1: गाना आज का मेरा जो पसंद का है वो खुदगर फिल्म का है, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, नितिन मुकेश। नितिन मुकेश जी मेरे फेवरेट सिंगर हैं, बहुत अच्छा लगता है उनका गाना सुनना मुझे।
0: और मुकेश के गाने?
1: जी मुकेश के भी सुनता हूँ, किशोर जी के भी, लता जी के भी, खासकर मदन मोहन जी और लता जी का जो कॉम्बिनेशन है ज्यादा लाइक करता हूँ।
0: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया और इतनी सारी बातचीत की। तो बस विविध भारती से भी, सारे श्रोताओं से आपकी दोस्ती यूं ही सलामत रहे, इस बात के साथ बातचीत को दे रहे हैं विराम, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: दीदी, आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ।
0: राजू जी, आगरा में क्या खास है बताइए, कोई विशेष धरोहर है?
1: जी दीदी, आगरा में तो सबसे पहले तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल ही है, लाल किला है, सिकंदरा है, आगरा का पेठा।
0: आगरे का पेठा भी बहुत मशहूर है, क्या बात है भाई।
1: जी बिल्कुल, और आज मेरा सौभाग्य है कि मेरी बात आज ममता दीदी से हो रही है, बड़ा खुशी हो रही है दीदी मेरे को।
0: जी बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अब जरा आगरे के ताजमहल के बारे में बताइए, आपने देखा है ताजमहल?
1: देखिए दीदी, मैं तो ब्लाइंड पर्सन हूँ।
0: अच्छा अच्छा, ओ
1: तो मैं तो कभी ताजमहल गया नहीं, मैं तो उन्हीं जगह जाता हूँ जहाँ भगवान का मंदिर होता है, क्योंकि भगवान के मंदिर में हमें मंदिर नहीं देखना होता है, भगवान हमें खुद देखते हैं। वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमें भगवान को दिखाई दे या न दे, लेकिन भगवान हमें देखते हैं।
0: जी जी
1: दीदी, मैं
0: बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो बताइए और क्या करते हैं आप दिन भर घर में?
1: जी दीदी, मुझे संगीत से शौक है, मैं रेडियो सुनता हूँ, आपके विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता रहता हूँ अपने रेडियो के माध्यम से।
0: अब हमें बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, और आपने कहा कि संगीत का शौक है, तो निश्चित रूप से आप भी गाते होंगे, क्या सीखा है आपने गाना क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आज की फिल्म है लम्हे, आवाज है लता जी, इला अरुण जी और सखियों की, और गाने के बोल हैं

0: पे तूने किसको याद किया। ये वाला गाना सुनना था दीदी।
1: वाह, बहुत अच्छा गुनगुनाया आपने। तो आपने कौन सा संगीत सीखा, शास्त्रीय संगीत या सुगम संगीत?
0: जी दीदी, मैं ज्यादातर लाइट म्यूजिक में चलता हूँ, कथाओं में, भागवतों में, सुंदरकांड में, सत्संगों में। मैंने कुछ नहीं सीखा थ्योरिकली, मैंने कहीं से कुछ नहीं सीखा, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है जो कुछ भी है।
1: अच्छी बात है। तो कोई लोकगीत भी याद है उत्तर प्रदेश का?
0: जी बिल्कुल, ब्रज का लोकगीत मेरे को बिल्कुल याद है।
1: तो सुनाइए फिर हमारे श्रोताओं को भी।
0: अरे बंसी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था मैडम, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: जी टेकचंद जी, बताइए क्या हाल है आपका और छिंदवाड़ा का क्या हाल है?
1: मैडम हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
0: बढ़िया, एकदम बढ़िया। बारिश वारिश हो रही है?
1: हाँ मैडम, चार दिन से लगातार बारिश हो रही है, कहना चाहिए झमाझम बारिश हो रही है, जैसा कि हम लोग चाहते हैं, कहना चाहिए एक प्रसन्नता की बात है। और साथ में हमारे जो किसान भाई हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं।
0: स्वाभाविक है उनकी खुशी, उनके लिए तो पानी एक अमृत की तरह है, सारा कुछ, पूरी खेती किसानी उनकी बारिश पर ही निर्भर करती है ना।
1: जी जी जी
0: तो आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या काम काज है?
1: मैडम मैं जो हूँ एक सीनियर सिटीजन हूँ, और मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि मैं ये जो जुलाई माह है ये मेरे लिए काफी वरदान साबित है, कहना चाहिए।
0: अच्छा, किस सिलसिले में?
1: क्या हुआ मैडम, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि 2001-07-2020 को मेरा रिटायरमेंट हुआ है ऑल इंडिया से, तो सुरक्षित हम अपने काम से अपने घर लौटे हैं, ये बहुत खुशी की बात है।
0: कहाँ काम करते थे?
1: कोल इंडिया में मैडम, तो मैं उससे कहना चाहिए 38 वर्ष देकर के सुरक्षित अपन घर पर पहुंच गए हैं, ये एक हमारे लिए काफी और हमारे परिवार के लिए खुशी की बात है।
0: जी जी, बहुत बढ़िया बात है। तो वहाँ के कोई अनुभव, कोई छोटी सी घटना, कोई बात हो तो बताइए।
1: पहले जो होता था वो काफी असुरक्षित मतलब रहता था माइंस में काम करना, लेकिन अभी सरकार ने इतना ज्यादा सुरक्षित मतलब वर्करों को कर दी गई है, तो कहना मैडम अब उतना जो हमारे साथ जो घटनाएं होती थी वो अब नहीं के बराबर हो गई है। हम अपनी लापरवाही से कहना चाहिए या असावधानी जो होती है उससे दुर्घटनाएं होती है।
0: जी जी,
1: तो ये कहना चाहिए एक बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में जो दुर्घटनाएं नहीं के बराबर हुई है वो काफी हमारे मजदूरों को या हमारे जो साथ के कामगार हैं लोग को काफी प्रोत्साहित करती है इस ओर काम करने के लिए।
0: जी,
1: नहीं तो पहले के मजदूर मैडम काम करना छोड़ करके भाग जाते थे।
0: तब भी बहुत मुश्किल काम है, थोड़ा तो जोखिम भरा काम है ये।
1: धरती को चीर करके उसके सीने से कोयला निकाला जाता है।

0: ये एक बहुत बड़ी बात है और प्रकृति के विरुद्ध काम करना कहना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में हो प्रकृति के विरुद्ध करना हम देख रहे हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक ही हो, चाहे वो हम पृथ्वी के अंदर से कोयला निकाल रहे हो या बाहर प्रकृति के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, आज जो प्रदूषण हो रहा है या हम पेड़ काट रहे हैं, तो उसका भुगतान अभी हम ये बारिश देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे कई जगह पे हो रही, कई जगह पे हो ही नहीं रही।
1: जी बिल्कुल, मतलब जो पर्यावरण का असंतुलन होता है इस सबसे, वो हम सबके लिए बहुत नुकसानदेह है। अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: फिल्म है कहीं दिन कहीं रात, महेंद्र कपूर जी और आशा जी की आवाज है, संगीत ओपी नैयर का है, गीत है एच बिहारी का और गीत है मैडम तुम्हारा चाहने वाला खुदा की दुनिया में।
1: क्या बात है, बढ़िया गीत चुना है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार
1: वो प्यार भरा सुनने वाले हो, हेलो फरमाइश सुनने वाले को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट वारंगा फाटा, तालुका कळमनुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी पांडुरंग जी बताइए, बड़ा लंबा चौड़ा परिचय देते हैं।
1: कैसा है बम्बई में मौसम? कैसा है इधर? बारिश नहीं है, उधर बारिश होंगी तो थोड़ा भेज दो हमारे इधर महाराष्ट्र में।
0: एकदम भीगा मौसम, खूब सारी बारिश हो रही है और खूब सारी बारिश आपके रेडियो सेट तक भेजेंगे आपके गाने के माध्यम से और आपकी बातचीत के माध्यम से। जी बताए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है हीरो, गाने के बोल है तू मेरा हीरो है मैं तेरा, हीरो टाइटल सॉन्ग का गाना सुनना है।
0: सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं सेवन सिस्टर त्रिपुरा से आशुतोष देवनाथ बोल रहा हूँ।
0: प्राकृतिक सुषमा जहाँ पर मौजूद है, और दिल वहाँ जाए तो दिल वहीं पर रुक जाने का मन करता है ना, तो सबसे पहले आप त्रिपुरा के हालचाल बताएं। त्रिपुरा में जो प्राकृतिक छटा है वहाँ के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: मैम अभी तो त्रिपुरा में बारिश का सीजन है और कुछ दिन से लगातार बारिश चल रहा है। कभी कभी रुकता है, धूप निकलता है, फिर बारिश, ऐसा ही चल रहा है लगभग दो महीना।
0: तो ये बताइए कि बारिश जब होती है ज्यादा तो वहाँ के लिए नुकसानदेह है या सही है? ठीक है।
1: नहीं मैम जी, ज्यादा बारिश होने से तो नुकसान तो
0: हो ही जाता है बिल्कुल। और वहाँ के आसपास की जगहों को आपने कहा ना सेवन सिस्टर्स, यानी कि वो जो कौन कौन से उसमें शामिल है सेवन सिस्टर्स में, बताइए।
1: सेवन सिस्टर में त्रिपुरा का पासी है आसाम, और आता है मेघालय,
0: अरुणाचल प्रदेश,

0: प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
1: मतलब खूबसूरती का आलम है। तो त्रिपुरा के आसपास क्या है बताइए।
0: त्रिपुरा में तो मैं जहाँ रहता हूँ मैम जी, त्रिपुरा का नॉर्थ साइड में मैं रहता हूँ। ये ऊनकोटी टेम्पल, बाहर से बहुत लोग आता है दर्शन करने के लिए। ये सर्च करने से मैम जी आपको मिल जाएगा।
1: जी जी जी,
0: इंडिया का बाहर से भी आता है मैम जी।
1: जी बिल्कुल,
0: देखने के लिए
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: त्रिपुरा का और मसूर टेम्पल है त्रिपुरेश्वरी मंदिर, देवी का और शरीर का एक अंग घिरा था त्रिपुरेश्वरी मंदिर में, जो असम में भी एक घिरा था और बन गया बड़ा टेम्पल माँ कामाख्या।
1: तो ये शक्तिपीठ है
0: बिल्कुल।
1: और एक और खास बात है त्रिपुरा की, त्रिपुरा से एक बहुत बड़े संगीतकार आए जिन्होंने पूरी फिल्मी दुनिया में जिनके संगीत का जादू छाया, हम सब के दिलों पर आज भी कायम है उनके संगीत का जादू। वो नाम आपको पता है?
0: बिल्कुल पता है मैम जी, सचिन देव बर्मन
1: जी।
0: और उनका बेटा तो पिताजी को भी छोड़ के चला गया,
1: राहुल देव बर्मन। तो इसलिए त्रिपुरा और खास हो गया ना आपके लिए। तो
0: जी जी,
1: तो बताइए फिर कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं आज?
0: जी आज मुझे याद आया 1980 में रिलीज हुआ फिल्म का नाम है फिर वही रात, और इस गाने को गाया है सुरो का मल्लिका लता जी ने बिंदिया पेरिस से। और इस गाने को लिखा है मैम जी संगीत का सबसे बड़ा राइटर में एक नाम है मजरूह सुल्तानपुरी जी।
1: जी गीतकार,
0: संगीत तैयार किया है जी।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने त्रिपुरा से हमें फोन किया। अब बातचीत कर रहे हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश,
1: आपको प्रणाम है।
0: आपको भी प्रणाम है। नाम और कहाँ से बोल रहे हैं जरा बता दीजिए।
1: पहड़िया वाराणसी उत्तर प्रदेश अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 से अनिल रमा गुप्ता गोंड।
0: वाह भाई बढ़िया। तो ये नाम परमानेंट लगा रखा है अपने नाम के साथ अपनी पत्नी का?
1: जी जी जी, जब भी फरमाइश भेजता हूँ मैं वाराणसी से, वाराणसी का रहने वाला हूँ, तो यही बोलता हूँ श्रोता दंपति अनिल, जैसे मेरा नाम है अनिल गुप्ता गोंड और वाइफ का नाम है रमा गुप्ता गोंड,
0: तो
1: श्रोता दंपति अनिल रमा गुप्ता गोंड।
0: जी बहुत बढ़िया, आपने स्पष्ट कर दिया। तो बताइए अनिल जी और रमा जी के क्या हाल है और बनारस का क्या हाल है?
1: जी बनारस में तो इस समय तो मौसम बहुत सुहाना हो गया है, बरसात हो रही है। 2-3 दिन पहले तो बहुत गर्मी थी,
0: तो अब जरा बताइए कि बारिश हो रही है बनारस में, गंगा जी हैं, तो इस समय क्या बाढ़ आई है उसमें उफान पर है या नॉर्मल है नदी?
1: नहीं नहीं, अभी उतना नहीं है। जब एक्चुअल में जब ये उत्तराखंड में बरसात बहुत तेज होती है तो पानी का स्तर बढ़ने लगता है, लेकिन अभी इधर बरसात तो उतनी हुई नहीं जितनी उम्मीद रहती है हर साल, तो उतनी बरसात इधर उत्तर प्रदेश में कम हुई है बरसात।
0: जी बनारस में जो गंगा आरती होती है शाम को उसकी बड़ी प्रशंसा होती है, आप जरा बताइए क्या होता है उसमें?
1: गंगा आरती में एकदम बहुत बड़े बड़े वो दीपक टाइप के लेके उसमें हवन सामग्री जलाई जाती है।
0: गंगा जी में नौका विहार का भी एक अलग आनंद होता है, तो आपने कभी नौका विहार किया है वहाँ रहते हुए?
1: कई बार किए हैं। चलो मैं तो पहाड़िया क्षेत्र में रहता हूँ, लेकिन मैं गंगा जी में 78 में बनारस में आया था, मैं पहले दिल्ली में रहता था, तब से बहुत बार मैंने गंगा जी स्नान किया है, पूजा पाठ और आरती देखी गई है। मैं रहता हूँ वही बगल में सारनाथ है।
0: अरे वाह क्या बात।
1: सारनाथ में जैसा आप जान ही रही है अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह है म्यूजियम में,
0: फिर बनारस का पान, बनारस की चाट बहुत मशहूर है, और बनारस मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का लोकगीत बहुत मशहूर है, बनारस की ठुमरी बहुत मशहूर है, तो इनमें से आपको क्या शौक है? क्या बनारस की ठुमरी या बनारस का कोई लोकगीत याद है, सुनाना चाहेंगे श्रोताओं को?
1: कजरी जो है कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
0: अरे वाह क्या बात।
1: मिर्जापुर कैला गुलजार हो,
0: तो गा के सुनाइए गनवा।
1: मिर्जापुर कैला गुलजार हो, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
0: बहुत बढ़िया, बताइए कौन सा गाना?
1: देखिए बरसात का मौसम है तो मल्हार राग पर एक गाना था लगान फिल्म के, नर गनर घिरा बदला, यार रहमान जी जावेद अख्तर जी के बाद में लिखल।
0: बेहतरीन गाना चुना है बारिश के मौसम के अनुरूप, तो बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो भी नहीं जो मुस्कान देती है। अरे सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेती है। नमस्कार मैम जी।
0: क्या बात है भाई, नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कुंडलिया, तहसील नवाबगंज, झुमका सटी, बरेली, उत्तर प्रदेश से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं मैम जी।
0: क्या बात है भाई, बरेली से बोल रहे हैं।
1: हाँ जी मैम जी, आपसे लगता है हमारी पहली बार बात हो रही है।
0: जी, बरेली का नाम एक गाने में आता है, कौन सा गाना है याद है क्या आपको?
1: हाँ जी, साया मूवी का है, झुमका घेरा रे बरेली
0: बरेली
1: के
0: के
1: बाजार
0: बाजार
1: में।
0: में। और बरेली की और
1: हाँ
0: कोई
1: जी,
0: खासियत हो तो बताइए आपके नजर से।
1: बरेली की खासियत एक जरी के नाम से जाना जाता है, और एक नया काम चल रहा है, राम वाटिका जो रामायण में दिखाया गया वो सभी बनने आया है मैम जी।
0: अच्छी बात है। और
1: जी
0: अपने काम काज के बारे में बताइए, आप क्या करते हैं?
1: मैम जी, अभी तो खैर हमारे मकान का काम चल रहा है, वैसे तो हम भी जरी का ही काम करते हैं।
0: जरी का काम
1: हाँ
0: करते
1: जी
0: हैं, मतलब जरी वाली साड़ियां तैयार करते हैं या और दूसरी तरह के कपड़े, कुर्ते, क्या बनाते हैं
1: मैम जी, हम
0: क्या?
1: सूट भी बना लेते हैं, साड़ियां भी बना लेते हैं, आए पर शेरवानी भी बना लेते हैं, कलियां भी बना लेते हैं, और जो साड़ी होती है रेशम, करदाना, मोती, ये भी बना लेते हैं।
0: तो जरी के किस काम की ज्यादा मांग होती है, क्योंकि आजकल लोग सादा पसंद करते हैं ना ज्यादातर
1: सबसे ज्यादा डिमांड होती है लहंगा चुन्नी की।
0: शादियों में।
1: हाँ मैम जी,
0: बताएं कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: हाँ जी, मूवी का नाम रहेगा दिलवाले, गाने के वो रहेंगे सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूरी हो रही आपकी फरमाइश, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक वे हमें कृपया फोन ना करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें कॉल करने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से बता दें 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का एसटीडी कोड 022। और अब चलने से पहले आपको ये भी बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के ठीक 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं सौरभ कुमार।

नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे प्यारे युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवाओं की वाणी युववाणी में। हर शाम की तरह आज शाम हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए नए जोश और उत्साह के साथ। और आज के खास कार्यक्रम के साथ हाजिर है आपकी रेडियो साथी कंचन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब साथी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, हमारे दैनिक कार्यक्रम का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए आज भी शुरू करते हैं अपने शाम शानदार कार्यक्रम को और सुनते हैं कि आज के कार्यक्रम में क्या क्या खास होने वाला है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत दिन विशेष की चर्चा के साथ करेंगे। उसके बाद कार्यक्रम में आज अपने आसपास के युवा साथियों को सुनेंगे, उनसे बातें करेंगे और आज के इतिहास दर्पण में इतिहास से जुड़ी खास खबरों को सुनेंगे। कार्यक्रम के अंत में समसामयिक की चर्चा को सुनकर कार्यक्रम से विदा लेंगे। तो आइए अब बातों में समय जाया ना करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत में हम सबसे पहले सुनते हैं इस गीत को, फिल्म चलती का नाम गाड़ी। इस गीत के गायक कलाकार हैं किशोर कुमार। तो आइए सुनते हैं सुंदर से गीत को।

इस सुंदर से गीत के बाद अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा को सुनते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम में से इस सूत्र में, शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देना, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ऐसे अन्य सरकारी योजनाओं के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे विद्यालयों को एक निश्चित संख्या अल्पसंख्यक समुदायों की घनी जनसंख्या वाले गांवों क्षेत्रों में स्थापित किया जाए। एरिया इंटेंसिव और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम की केंद्रीय योजनागत स्कीम में शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से मूल शैक्षिक अवसंरचना और मदरसा शिक्षा के लिए आधुनिकीकरण के लिए प्रावधान है। इस आवश्यकता पर ध्यान देने के महत्व को देखते हुए ये 15 सूत्री कार्यक्रम पर्याप्त रूप से सुव्यवस्थित और प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। भारत में मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के उद्देश्य धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा भी उपलब्ध कराना है। इसी के साथ आज के दिन विशेष की चर्चा यहीं समाप्त होती है। आशा है कि श्रोताओं को चर्चा पसंद आई होगी। तो आइए अब डेली ट्रिविया में आज के खास सवाल को जानते हैं और जानते हैं कि आज का सवाल क्या है। AIR ने प्रसारण के डिजिटल मोड में परिवर्तन के लिए

0: कौन सी तकनीक अपनाई थी? तो इस सवाल के जवाब को अभी हमारे साथ साझा करें। सही जवाब सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ कार्यक्रम के अंत तक। तो चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आज अपने आसपास के युवा दोस्तों से मिलते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं कि वे वर्तमान समय में किन किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो आइए हमारे प्यारे दोस्तों से मिलते हैं इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से।
1: दोस्तों, आप सभी युवा साथियों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आउट ब्रॉडकास्टिंग के इस खास कार्यक्रम में। आज हम लोग अपने आसपास के युवा साथियों से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे और वर्तमान समय में युवाओं के सामने जो चुनौती आ रही है उन पर खुलकर बातें करेंगे, उनके विचारों को जानेंगे कि उनके जीवन में अभी वो किस चुनौती से लड़ रहे हैं और किन किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे आसपास के युवा साथियों से और उनके मन की बातों को आपके साथ साझा करते हैं। तो चलिए मिलते हैं साथियों से। तो आइए आज के हमारे युवा साथी हैं ऋषि कुमार, उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि वे किस तरह से अपने लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं और उनके सामने अभी कौन सी चुनौती है जिससे वो परेशान है। तो आइए मिलते हैं। हेलो ऋषि।
2: हाय,
1: कैसे हैं आप?
2: मैं बढ़िया हूँ।
1: और बताइए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है?
2: अभी तो ठीक ही चल रही है।
1: अच्छा, तो ऋषि जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं आपसे बातचीत करने के लिए आई हूँ, आप बताइए कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी चल रही है और आप अपने लाइफ में किन चीज़ों से परेशान हैं?
2: लाइफ स्टाइल तो बहुत बढ़िया ही चल रही है, पर परेशानी मुझे एक ही चीज़ से हो रही है।
1: क्या परेशानी हो रही है आपको?
2: ये सोशल मीडिया।
1: सोशल मीडिया तो अच्छी बात है कि युवाओं को इससे बहुत सारी जानकारी मिलती है और भी बहुत सारी सूचना मिलती है, थोड़ा बहुत मनोरंजन भी हो जाता है।
2: हाँ, ये एक तरफ से ठीक है, पर दूसरी तरफ से देखें तो जैसे हम लोग पढ़ने बैठने का कोशिश करते हैं तो मोबाइल चलाने का मन करता है, रील्स स्क्रॉल करने का मन करता है, इंटरनेट से जुड़ी कुछ देखने का मन करने लगता है, इसलिए यही मुझे प्रॉब्लम है।
1: हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही और आजकल के युवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है।
2: और मैं ये भी देखता हूँ कि आसपास के लोग भी मेरी तरह ही इंटरनेट में घुसे रहते हैं, कभी भी कोई मतलब नहीं, मतलब जैसे पहले बचपन में खेला करते थे, अब कोई मतलब ही नहीं, बात करने का टाइम मिलता है सिर्फ मोबाइल और कुछ नहीं। और सोशल मीडिया की वजह से तो लोगों की लाइफ स्टाइल ही बदल गई है। पहले लोग सही से एकदम वक्त पे खाना खाते थे, स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, लेकिन जब से ये इंटरनेट आया है तब से तो एकदम लोग व्यस्त ही हो गया है, नहीं किसी चीज़ का समय मिलता है, नहीं दोस्तों से बात करने का समय मिलता है। मैं इसलिए ये सब बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ से मैं खुद रिलेट कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को इतना कह पा रहा हूँ, क्योंकि आजकल के जनरेशन में सबके साथ ऐसा ही चल रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है कि सबके लाइफ में अब सोशल मीडिया एक अहम हिस्सा बन चुका है।
1: ऋषि, आप कुछ हमारे युवा साथियों को कुछ संदेश, कुछ मैसेज देना चाहते हैं?
2: हाँ, मैं बस यह कहना चाहूँगा अपने दोस्तों से कि जितना हो सके उतना कम यूज करें, सिर्फ अपने काम से यूज करें, जैसे मुझे अभी पढ़ाई करना है या कुछ जानना है तभी इंटरनेट खोलें, फिर अपने दोस्तों से बात करें, अपने रिश्तेदारों से बात करें, अपने फैमिली के साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए, बस यही।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि, आपने हमें बहुत सारी बातें बताई और अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब हमारे साथ हमारे दूसरे युवा साथी हैं प्रेम केडी, तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके मन के विचारों को और ये भी जानते हैं कि अभी वे अपने लाइफ स्टाइल को कैसे जी रहे हैं। हेलो प्रेम।
3: हेलो, कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
3: बढ़िया।
1: तो बताइए आपकी लाइफ स्टाइल कैसी चल रही है?
3: बढ़िया चल रही है मेरी, मेरा जीवन अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है और अभी फिलहाल में मैं अभी BFA कर रहा हूँ।
1: अच्छा,
3: बनारस से।
1: वर्तमान समय में आजकल के जनरेशन के यूथ किसी न किसी परेशानी से जूझ ही रहे हैं, तो आप बताइए कि आप किस परेशानी से रिलेट कर पा रहे हैं?
3: देखिए, परेशानियां हमेशा लगी रहती हैं, जीवन का नाम ही परेशानी है। अभी मेरे लिए सबसे परेशानी थोड़ा सा समय का अभाव हो जाता है। जैसा मैंने कि बताया कि मैं कलाकार हूँ, मुझे कला करना पसंद है, जैसे मैं अभी क्राफ्ट करता हूँ, उसके बाद पढ़ाई है, तो दोनों चीज़ों को लेकर चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है, परिवार को समय देना, अगर ये पकड़ते हैं तो वो छूटता है, वो पकड़ते हैं तो ये छूटता है, सबसे बड़ा चीज़ होता है कि अगर मैं ये क्लास कर रहा हूँ तो वो क्लास, सारा दिन ऐसे निकल जाता, लगता है अरे ये रात भी कैसे।

0: निकल जाएगा ये भी पता नहीं चलता है। कभी कभी तो 9-9 घंटे वर्क हो जाते हैं, उसके बाद अपना पार्ट टाइम जॉब भी है, फैमिली भी है, दोस्त भी है, ये सारी परेशानियां आती हैं। लेकिन हाँ, कुछ दिनों की परेशानियां होती हैं, कहते हैं ना, कोयला जितना घसता उतना हीरा बन के निखरता, बस इसी इसी पर चल रहा हूँ।
1: बिल्कुल सही कहा केडी आपने। आपने तो हमारे यूथ के लिए बहुत अच्छी बात कही कि कोयला जितना घिसता है वो उसी प्रकार हीरे के तरह चमकता है। और हाँ, लाइफ में मुश्किलें तो बहुत हैं, लेकिन इन मुश्किलों से जीत करके ही तो हम लोग अपने लाइफ को बहुत अच्छा बना पाते हैं, कुछ सीखते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे साथियों को?
0: हाँ, बस ये कहना चाहूँगा कि कभी हार नहीं मानना चाहिए, संघर्ष करो, परिणाम बहुत अच्छा आता है।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद केडी, आपने अपने विचारों को हमारे दोस्तों के साथ साझा किया और हमें बहुत सारी बातें बताई, अपने लाइफ से जुड़ी बातें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, अब हमारे साथ है हमारे युवा साथी मित्र दिलजीत भैया, आइए इनसे मिलते हैं और इनके विचारों को जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये अपने लाइफ स्टाइल को कैसे जी रहे हैं और हमारे साथियों से क्या कहना चाहते हैं। हेलो भैया।
2: हेलो आप सभी को, मेरा नाम दिलजीत कुमार है और अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि रोज़ हमें अपडेटेड रहना चाहिए। कैसे? तो देखिए, सबसे पहली चुनौती ये है कि अभी जो हमारे जीवन में चल रहा है, इस वजह से हमें रोज़ अपडेट रहना पड़ता है। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो गेम हो, चाहे वो किसी भी अन्य फील्ड से जुड़ा हुआ हो।
1: जी
2: जैसे संगीत में है तो हमें रोज़ नया गाना रेडी करना पड़ता है, रियाज करना पड़ता है, रोज़ करना पड़ता है। चाहे एक ही काम हो पर अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। जैसे जीके पढ़ते हैं, रोज़ रोज़ रोज़ नई जीके बन रही हैं, तो आपको हर एक चीज़ में अपडेट रहना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप खेल में चले जाइए, रोज़ किसी न किसी चीज़ में लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो मतलब हमें जानकारी हासिल करती रहनी चाहिए और अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है आज के समय में।
1: और दिलजीत भैया, आप बताइए अपने लाइफ स्टाइल में आप किस चीज़ से हर रोज़ परेशान होते हैं और कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा मुश्किल लगती है?
2: मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगती है ये सोशल मीडिया पर जो रोज़ रोज़ नई चीज़ें आती रहती हैं। अब
1: अच्छा,
2: मान लीजिए आज हमने ज़्यादा इंटरनेट यूज़ नहीं किया तो बहुत चीज़ों से पीछे रह जाते हैं। मैंने इसलिए कहा कि अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। अभी 1 घंटे के लिए अगर कोई फ़ोन ना छुए तो उसे बहुत कुछ मिस हो जाता है। वैसे ही हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए, कहीं ना कहीं से पता लगाते रहना चाहिए। डेली पेपर पढ़ें, डेली न्यूज़ सुने, डेली रेडियो सुने।
1: लेकिन आजकल के युवा तो ज्यादातर अपना समय इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे बिताते हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं?
2: इस बारे में बस इतना कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया से हम किसी को दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप की जगह अगर हम लोग न्यूज़ पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यूट्यूब पर आप शॉर्ट्स देखने के बजाय अपने काम की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हर एक जगह पर हर एक चीज़ है जिससे आपको फ़ायदा होगा।
1: और आप हमारे युवा साथी को कोई मैसेज देना चाहते हैं?
2: जी बिल्कुल, तो आप सभी के लिए आज का मैसेज ये रहेगा कि आप लोग अपडेटेड रहें, पेपर पढ़ें, न्यूज़ सुने, रेडियो सुने और अपने आप को हमेशा रेडी रखें किसी भी चीज़ के लिए। अपनी तैयारी हमेशा पूरी रखें। हौसला अफजाई के लिए सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, जिस भी काम में आप हैं उसे अपने पूरे लगन से करें, पूरे दिल से करें, मेहनत करें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने हमारे युवा श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी, उन्हें अपडेटेड रहने के लिए कहा और उनका हौसला बढ़ाने के लिए आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
2: थैंक यू सो मच।
1: तो दोस्तों, आज थे हमारे ये स्पेशल मेहमान हमारे कार्यक्रम के, जो हमारे साथ जुड़े, हमसे बातें किए। हमारे सभी युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: तो साथियों, हम सुन रहे थे इस ऑडियो क्लिप को जिसमें हमने अपने आसपास के युवा दोस्तों को सुना, उनकी परेशानियों को समझा और आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब इतिहास दर्पण से जुड़ी इस खास सेगमेंट में आज के इतिहास से रूबरू होते हैं और जानते हैं आज का इतिहास क्या है। आज के दिन 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई, जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1816 में आज आज के दिन अर्जेंटीना ने स्पेन से आधिकारिक रूप से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। 1925 में भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्मकार और अभिनेता गुरुदत्त का जन्म हुआ, जिन्हें प्यासा और कागज के फूल जैसे फिल्मों के लिए जाना जाता है। 1969 में आज के दिन शेर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इसी के साथ इतिहास दर्पण की चर्चा यहीं समाप्त होती है। तो आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं इस गीत को फिल्म कलाकार से। इस गीत के गायक कलाकार हैं किशोर कुमार।

0: अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
3: So easy.
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: तो आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब समसामयिक की खास खबरों को सुनते हैं और देश विदेश की जानकारी को जानते हैं। दोस्तों, गिरीश भारद्वाज, जिन्हें ब्रिज मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, उनका 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ICC महिला T20 विश्व कप 2026 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी श्री चढ़नी बनी। भारत और माली देश ने अपना पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम बमाको शहर में शुरू किया। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र की आधारशिला मध्य प्रदेश में रखी गई। ब्रिक्स की एंटी ड्रग्स एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक असम में आयोजित की गई। इसी के साथ समसामयिक की चर्चा यहीं खत्म होती है। आशा करती हूँ श्रोताओं को ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। तो आइए अब कार्यक्रम में आज फन फैक्ट्स में कुछ खास और नया जानते हैं। क्या आप जानते हैं, दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में रहती है, जहां 10 से 24 वर्ष के आयु वर्ग से 25 करोड़ से अधिक युवा और किशोर हैं। तो आइए अब कार्यक्रम में डेली ट्रिविया के प्रश्न के सही जवाब को सुनते हैं। प्रश्न का सही जवाब है, AIR ने प्रसारण के डिजिटल मोड में परिवर्तन के लिए डिजिटल रेडियो मॉड्यूल तकनीक को अपनाया। दोस्तों, डेली ट्रिविया और फन फैक्ट्स की जानकारी पसंद आई होगी। तो आइए अब कार्यक्रम में इस गीत को सुनते हैं, फिल्म मेरे जीवन साथी से। इस गीत के गायक कलाकार हैं किशोर कुमार।

इस गीत के साथ कार्यक्रम का ये प्यारा सा सफ़र यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आपको कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपना मैसेज हमारे पते और मेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा पता है युववाणी अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाशवाणी भागलपुर 812001। मेल आईडी है phair@gmail.com। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपसे ठीक शाम के 5 बजे इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अब अपनी रेडियो साथी कंचन को दे विदा। नमस्कार।

आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित हमारे दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे सौरभ कुमार। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो घड़ी में संध्या के 5:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म दिल चाहता है का शीर्षक गीत। इस गीत को गाया है शंकर महादेवन ने। शंकर एहसान और लॉय का संगीत है। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आप आइए सुनते हैं फिल्म हाउसफुल से ये गीत। इस गीत को गाया है मीका सिंह और साथियों ने।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: ट्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म जब वी मेट का ये गीत। सोनू निगम, जावेद अली और साथियों की आवाज़ें हैं। इरशाद कामिल हैं इसके गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं विशाल शेखर का संगीतबद्ध किया हुआ शेखर रवजियानी, कमाल खान, राजा हसन और श्रेया घोषाल की आवाज़ के साथ साथ साथियों की भी आवाज़ है इस गीत में। अन्विता दत्त ने इसे लिखा है, फिल्म है 30 मार खान।

श्रोताओं कार्यक्रम के अंत में सुनिए मीका सिंह, वाजिद, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ में तेरी मेरी कहानी का ये गीत। इस गीत को संगीतबद्ध किया है साजिद और वाजिद ने और इसके बोल लिखे हैं कुमार ने।

कार्यक्रम में गायक कलाकार शंकर मिश्र नाहर की प्रस्तुति। 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकगीत में गायिका मधु मिश्रा के गाय लोकगीत। दिन में 11 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। 11:30 पर फिल्म संगीत की खास पेशकश गुलदस्ता लेकर आएंगे हम। कल दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे शहरी महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोग। 12:30 पर NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनेंगे आप। दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकगीत में गायक कलाकार गोपाल भगत की प्रस्तुति। 1:30 पर कार्यक्रम घरांगन सुनेंगे आप। 2:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से लेकर आएंगे हम। संध्या 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। 5:30 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत। 6 बजे आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। संध्या 7:10 पर कल आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में एक भेंटवार्ता, विषय प्राकृतिक चिकित्सा के रोगों का उपचार। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर जेता सिंह। 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी में गायक कलाकार आनंद कुमार सिंह की प्रस्तुति। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। 9:30 पर आप सुनेंगे रेडियो साहित्यिक पत्रिका पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम शतदल। 10 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम में कलाकार उस्ताद यूनुस हुसैन खान की प्रस्तुति। और 10:30 पर आप सुनेंगे आप श्रोताओं के पत्रों और ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम पसंद आपकी। कार्यक्रम विवरण में अभी आपने जाना आज के शेष और कल की सभा में हमारे स्टूडियो से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति और उनके प्रसारण समय के बारे में। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अतुल कुमार प्रियदर्शन।

0: स्वागत है सभी श्रोता भाइयों बहनों का कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में। सबको लाखों का नमस्कार।
1: सब भाई का अकलू के भी नमस्कार। लाखों भाई आपनों को नमस्कार।
0: नमस्कार और हार्दिक स्वागत है अकलू भाई। और सब सुनाइए, क्या सब, हाल समाचार है?
1: सब चकाचक छे हो, अपनों बताओ
0: अकलू भाई। और जानते हैं कि अपना देश जो है ऋषि और कृषि का देश है
1: तो बताओ लाखों भाई, इतना खुश नजर के

बिहार का चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया था जो कि 2023 से 2028 तक चलेगा और इसका 1.62 यानी कि 1,62,00,000 करोड़ का बजट है।

0: 1,62,00 है कि नौ इस थे 1.62 लाख करोड़ के बजट
1: बिल्कुल से। और इसका लक्ष्य कृषि उत्पादन बढ़ाना और 2023 से 28 में किसानों को उनकी आय को दोगुनी करना लक्ष्य रखा गया है।
0: कितना अच्छा बात छे लाखो भाई,
1: बिल्कुल
0: कि कृषक जे छे ओकरो दुगुना आय हो जते, यानी जब कि अपनो किसान भाई के आय ज्यादा हो जते दुगुना हो जते तो समझी ला वो समृद्ध होते, आ जब अपनो किसान भाई बहन समृद्ध होते तो समझी ला कि गांव और देश फनो अपने आप समृद्ध होते और आगे बढ़ चलते।
1: बिल्कुल, और इस कृषि रोड मैप का उद्देश्य जो है साथ ही उन्नत सिंचाई, उन्नत बीज का विस्तार और जैविक खेती को बढ़ावा देना भी है।
0: होना ही चाहिए, जबकि अच्छा अच्छा बीज ऐते बाजार में ऐते या किसान भाई पास जैते चाहे कोनो भी माध्यम से जाए हुनी लगेते खेतों में, और सिंचाई के विस्तार होते जैसे पानी जैसे हर खेत तक पहुँचते और ओकरों की जैविक खेती का अगर बढ़ावा मिलते तो अपने आप कृषि जैसे खेती वो आगे बढ़ना चली।
1: बिल्कुल, और इससे क्या होता है कि जैविक खेती के बढ़ावे से प्रदूषण भी कम होता है और धान गेहूं के साथ साथ मोटे अनाज जैसे कि मक्का, बाजरा, दलहन और तिलहन की खेती पर भी जोर दिया गया है अकलू भाई। और आधुनिक तकनीक के साथ खेती को आसान बनाने के लिए नई मशीनरी और आधुनिक कृषि तकनीक का भी इस्तेमाल इस बिहार कृषि रोड मैप में किया जा रहा है।
0: यानी कि खेती वास्ते जे भी चीज होना चाहिए जकरा के खेत का लाभ पहुंचते, खेतों में फसल लह लहते, हौ सब चीज काम जे छे है कृषि रोड मैप में करलो जा रहा है।
1: बिल्कुल, देखिए आधुनिक तकनीक से होता क्या है कि फसलों के उत्पादन में वृद्धि होती है और अच्छे तरीके से हम लोग ज्यादा उत्पादन लेकर के अच्छा आर्थिक उन्नति भी कर सकते हैं। और लेकिन उपजा करके फसलों को, अनाज को, हम उसको यदि सही तरीके से रख ना पाए तो वो भी हमारे लिए हानिकारक होता है, इसलिए भंडारण और प्रसंस्करण भी बहुत जरूरी है अकलू भाई।
0: तो यह एक समस्या जगह कि अब उपजात ले लो तो ढेर को
1: बिल्कुल
0: और ओकरा समेटी के अच्छा से रखे नहीं पार लो और हम कीड़ा मकोड़ा लगे गए, चूहा लगे गए जे कि अनाज को बर्बाद कर दी छे, तो गलत बात छे।
1: बिल्कुल,
0: ओकरो अच्छा तरीका से जे छे संरक्षण करना आ ओकरा समेटी के रखना जैसे यह ज्यादा जरूरी चीज है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: यानी कि भंडारण भी अच्छा से अच्छा तरीका से करे के क्रम में लक्ष्य छे।
1: बिल्कुल, देखिए अनाज खराब ना हो इसके लिए कोल्ड स्टोरेज और मेगा फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है।
0: हाँ,
1: और साथ ही देखिए अपने बिहार में खासकर मखाना की कितनी जो है कि मांग बढ़ रही है और हमारे बिहार की मखाना जो है कि अन्य जगहों पे मांग बढ़ रही है,
0: प्रसिद्ध हो रहा है।
1: हाँ, तो मखाना और डेयरी उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। मखाना, मशरूम, शहद और मछली उत्पादन में वैसे तो बिहार पहले स्थान पे पहले से ही था अकलू भाई, लेकिन इस कृषि रोड मैप में इन सभी के उत्पादन और बिक्री को और बढ़ावा देने की बात कही गई है।
0: यही वास्ता तो बिहार जी छे वो मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गेलो छे।
1: बिल्कुल,
0: चावल, गेहूं और मक्का के उत्पादन से लाए करी का बिहार का कृषि कार्य के वास्ता कृषि कर्णम पुरस्कार भी मिल रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इतना ही नहीं देखिए आलू, गोभी, बैंगन, टमाटर के भी उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई है और साथ ही मखाना भी काफी उत्पादन बढ़ा है।
0: हाँ,
1: और अपने बिहार के मखाने की मांग लगातार दिनों दिन पूरे देश में बढ़ रही है।
0: देखो लाखों भाई, खाली खेती बाड़ी करला से काम नहीं होते, खेती के साथ साथ आरो हम की कर पा रहे, यानी कि खेती के जे उपयोग छे ओकरा हम कौन क्षेत्र में ओकरा उपयोग कर पा रहे छे यो सबसे ज्यादा जरूरी चीज छे। तो खेती के साथ साथ अपनो किसान भाई जे छे वो पशु भी पाले छे।
1: बिल्कुल,
0: खेती के साथ साथ पशु के उचित देखभाल के वास्ते भी एकरा में व्यवस्था करलो गेलो छे है जे चौथा रोड मैप चली कृषि रोड मैप जे चली।
1: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रत्येक 8 से 10 पंचायत पर पशु अस्पताल भी खोले जा रहे हैं ताकि पशुओं को की उचित देखभाल और इलाज हो सके।
0: उत्तर बिहार के में भी जैसे एक बड़ा हिस्सा है क्षेत्र में आवे छे।
1: बिल्कुल, और उत्तर बिहार में एक बड़ा हिस्सा चौर का भी क्षेत्र है अकलू भाई, जहां पर वर्ष में 9 महीना तक लगभग पानी रहता है।

0: और 9 लाख हेक्टेयर भूमि चौर क्षेत्र है। तो कृषि रोडमैप के तहत ऐसे 6 जिलों में योजना की शुरुआत की गई है जो कि इस चौथे कृषि रोडमैप में लक्ष्यों को पूरा करने में जो 1.62 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। और राज्य में 75% लोगों की आजीविका का आधार जानते हैं अकलू भाई की कृषि है।
1: हाँ।
0: और कृषि रोड मैप में सभी बातों का ध्यान रखा गया है और इसे बहुत ही व्यापक रूप से बनाया गया है। इससे ना केवल उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी अकलू भाई, बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और इससे राज्य को फायदा भी होगा। तो कृषि बिहार कृषि रोडमैप चतुर्थ जो है जैविक कृषि के साथ साथ जल संरक्षण को भी बढ़ावा देता जा रहा है और साथ ही भारत के विकास में बिहार का यह बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है अकलू भाई।
1: छेबे करे, बिहार जब विकास होते विकसित होते तब भारत भी विकसित होते, ठीक ना?
0: बिल्कुल।
1: तब बिहार विकसित हुआ यही हम अपनी कामना करे छे, कहना कि एकरो साथ साथ भारत के भी विकास होना छे।
0: बिल्कुल,
1: और
0: बिल्कुल।
1: खास करी का चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश छे तो यहाँ पर कृषि यानी खेती के भी बढ़ावा जे हो रहा छे और सरकार के द्वारा जे यो भी योजना चलेलो जा रहा छे ओकरो ज्यादा से ज्यादा एकरा में ओकरो लाभ मिल रहा छे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए साथ ही जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण इन सब बातों पर भी ध्यान दिया जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसके लिए हमें पेड़ पौधा समय समय पे सरकार द्वारा योजना भी पारित किए जाते हैं और लगवाए जाते हैं।
1: अब देखो पेड़ पौधा सरकार ने तो देवे करे छे, अपनो स्तर से भी तो ओकरा में योगदान देना छे।
0: बिल्कुल।
1: अब देखो अखनी आम के मौसम चल रहा है।
0: बिल्कुल।
1: अब तो समझी ला कि आम जहाँ 10-15 दिन है लेकिन आम के अभी मौसम चल रहा है, सब आम खैबो कर लके लेकिन गुठली हिंडो न फेंकी देलके।
0: बिल्कुल।
1: अब देखो हाउ गुठली के उपयोग भी हम असनी पौधा लगाए में कर पारे छे।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: गुठली जे फेकल है हाउ गुठली से फेनो पौधा निकले छे, नया नया पौधा निकले छे।
0: बिल्कुल।
1: ओकरा में जे स्वस्थ पौधा होते ओकरा ओकरा से हटाए करी के समूह से हटाए करी के ओकरा जे फेनो अच्छा जगह पर अच्छा मिट्टी देखी करी के ओकरा जे लगाबो ओकरा से फेनो हो पौधा जे पेड़ बनते और फेनो आवे वाला 4-5 साल में फल दिए लगते। तो एना करी की होले कि जे हम गुठली फेंकी दिलो छलिए जकरो की कोई मूल नहीं छले ओकरा से पौधा बना लिए और पौधा से पेड़ बनी गए और फिर पेड़ अगर ज्यादा मात्रा में लगे हो तो उतना बगीचा के रूप हो गए। तो है पेड़ है नहीं कि हम सरकार पर ही निर्भर रहे, अपनों तरीका से भी जे निःशुल्क है ओकरो हम उपयोग कर पा रहे थी और अगर ज्यादा है तो हम शुल्क मतलब थोड़ा सा पैसा लगाए कर 2-4 पौधा खरीद लिए ओकर लगा दिलिए समय से जहिया समय मिल रहा है कोनो अवसर ले शुभ अवसर ले घरों में केरो जन्मदिन हो ले या कोनो आरो शुभ अवसर है तो ओकरा जैसे 2-4 पेड़ लगा लिए एक सभी पेड़ पौधा जैसे लगावे में और ओकरो संख्या बढ़ावे में मदद मिलते और है जब पेड़ पौधा लगाए लबे तो एक पर्यावरण का भी फायदा होते।
0: बिल्कुल। और इन प्रकार के पेड़ हम अपने साथ लगाने के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें और पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे सरकारी योजनाओं द्वारा भी लगवाए जाते हैं तो हाँ, मनरेगा हाँ। के तहत इनमें बहुत सारे पेड़ लगवाए जाते हैं। एक मनरेगा कर्मी मुकेश कुमार से आइए बातचीत हमने की है अपने मनरेगा के तहत कैसे वो पेड़ पौधे लगवाते हैं विस्तार पूर्वक जानते हैं।

0: श्रोताओं, आज मैं बांका जिले के फुल्ली डूमर पंचायत पहुंचा हुआ हूं और यहां पहुंचकर यहां के पंचायत रोजगार सेवक से मिलकर बातचीत कर जानते हैं कि ये अपने क्षेत्रों में, चूंकि ये मनरेगा कर्मी हैं और मनरेगा के कार्यों में रात दिन लगे रहते हैं और सरकार के विभिन्न योजनाओं को लागू धरातल पे करते हैं, और उन्हीं योजनाओं में पेड़ लगाने का कार्य भी इनके क्षेत्र में काफ़ी होता है और प्रत्येक क्षेत्र में होता है, तो इनकी भी काफ़ी बड़ी भूमिका रहती है। तो आइए मिलकर जानते हैं कि तो पेड़ की क्या अहमियत है और वन क्यों जरूरी है, इस विषय में विस्तार पूर्वक हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जी, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा।

0: हुआ, फुल्ली डुमर में कार्यरत हूँ
1: जी।
0: मनरेगा से वृक्षारोपण किया जाता है, इसके अंतर्गत पहले सर्वप्रथम हम लोग पंचायत में ग्राम सभा करके योजना का चयन करते हैं
1: जी।
0: उसमें निजी स्थल पर सरकारी स्थल पर पौधारोपण किया जाता है
1: जी।
0: इसमें प्रत्येक एक यूनिट में 200 पौधा लगाया जाता है, उसके लिए कम से कम 7-8 कट्ठा जमीन होना चाहिए
1: जी।
0: और उनको हम लोग 5 साल तक मजदूरी भी देते हैं देख रेख करने के लिए लाभार्थी को
1: जी।
0: उनको लगा उनके द्वारा जो लगाया जाता है पौधा
1: जी।
0: हम लोग जो देते हैं पौधे को उनके साथ गेवियन घेरा के लिए सुरक्षा के लिए घेरा फेंसिंग वायर भी प्रोवाइड किया जाता है, चापाकल भी दिया जाता है।
1: अच्छा,
0: पर्यावरण बचाने के लिए सुरक्षित रखने के लिए पौधारोपण बहुत महत्वपूर्ण योजना है
1: जी।
0: इनकी जानकारी समस्त जनताओं को दिया जाता है
1: जी। जी मुकेश जी, आप हमें ये बताएं कि वन महोत्सव का या कार्यक्रम जो चल रहा है या वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो चल रहा है, यह जो है क्यों जरूरी है, इसका क्या उद्देश्य है मनाने का?
0: वन महोत्सव मनाने का बहुत उद्देश्य है आज के परिवेश में, क्योंकि हमारा पृथ्वी जो है बहुत प्रदूषित हो गया है
1: जी।
0: इनको बचाने के लिए वायुमंडल को संतुलित रखने के लिए
1: जी।
0: पौधे का रोपण किया जाता है
1: जी।
0: ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और प्रदूषित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं
1: जी।
0: इनके साथ और फल भी उत्पादन होते हैं जिससे लाभार्थी जीविका के रूप में चलाते भी हैं
1: जी। बिल्कुल, और पेड़ पौधे यदि ना हो तो वो श्वास भी लेना
0: असंभव हो जाएगा
1: जी।
0: इसलिए पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए पौधारोपण एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है
1: जी।
0: पौधा रोपने के लिए सर्वप्रथम इसकी शुरुआत मानसून के पहले के समय में कर दिया जाता है
1: जी, जी।
0: जहां पर गड्ढे रहते हैं वहां पर माउंट बनाया जाता है, यानी कि 2 फीट ऊंचा करके मिट्टी को आकार दिया जाता है, 2x2 का आकार दिया जाता है। अगर समतल एरिया है वहां पर पानी नहीं जमता है तो वहां पर 2x2 का गड्ढा किया जाता है, उसमें पहले सर्वप्रथम वर्मी कंपोस्ट दिया जाता है
1: जी।
0: गड्ढा होने के बाद उसके बाद कुछ दिन उसको सूखा रखने दिया जाता है
1: जी। वो सूखा क्यों रखा जाता है?
0: क्योंकि उसमें हानिकारक जो कीड़े मकोड़े हैं वो सारे नष्ट हो जाएं। इससे पौधा को उगने यानी बढ़ने में वृद्धि होने में सहायता प्रदान करे।
1: अच्छा, तो वो गड्ढे में जैविक खाद डाला जाता है?
0: वर्मी कंपोस्ट डाला जाता है।
1: अच्छा, यानी कहने का मतलब ये हुआ जितना भी सड़ने वाला चीज हो वो हम डाल सकते हैं। अच्छा, और उससे फिर पौधे को ज्यादा मतलब
0: बेनिफिट होता है,
1: वृद्धि
0: होने में सहायता प्रदान करते हैं।
1: अच्छा, और ये अभी के समय में ही चूंकि मानसून हो जाता है तो पौधा जल्दी लग भी जाता होगा।
0: हाँ, क्योंकि उनको लगातार मानसून के समय में बारिश का पानी मिल जाता है।
1: अच्छा, तो मुकेश जी आप हमें ये बताएं और खासकर हमारे देश के युवाओं को इनके प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है।
0: युवाओं को तो जरूरी ही है क्योंकि पर्यावरण बचाए रखने के लिए पौधारोपण महत्वपूर्ण है
1: जी।
0: युवाओं को इसमें आगे बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण संतुलित रहे। उनको जागरूक करने के लिए बताना चाहिए कि पौधा नहीं लगाएंगे तो ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो ज्यादा बढ़ रहा है जिससे बहुत सारे प्रदूषित हो रहे हैं हमारे वातावरण, उसको संतुलन बनाए रखने के लिए पौधा लगाना महत्वपूर्ण कार्य है
1: जी। मुकेश जी आप ये बताएं, अभी तो वैश्वीकरण का दौर चल रहा है और इसमें लगातार देखा जा रहा है कि फ्लाईओवर ब्रिज बनाने में, चाहे वो सड़क बनाने में या फिर फुटपाथ बनाने में, पेड़ों की धड़ल्ले से कटाई हो रही है और इसका कुप्रभाव भी देखने को मिलता है।
0: उस समय में इनका क्या होता है कि जो पौधे पहले से रोपित थे उनको काट दिया गया, अब उसी को मेंटेन करने के लिए संतुलित करने के लिए हम लोग को नए पौधे लगाना बहुत ही आवश्यक है। 33% लगभग होना चाहिए पौधारोपण
1: जी। और इससे क्या होता है कि उस समय में भूकंप आता है और
0: जलवायु में बहुत परिवर्तन हो जाता है, उस समय गर्मी ज्यादा हो जाता है
1: जी जी। और इनसे बचने के लिए क्या पेड़ बहुत आवश्यक है?
0: बहुत ही आवश्यक है।
1: अच्छा, तो मुकेश जी आप हमें ये बताएं कि हमारे आने वाली पीढ़ी के

0: लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: पीढ़ी के लिए ही संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम लोग को जीवन अच्छे से व्यतीत करना है तो पौधा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगाना ही चाहिए।
0: जी मुकेश जी, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ, तभी हम असनी समय मिली का सुन लिए है बाह्य ध्वनियांकन बातचीत पर आधारित के कुछ अंश, जे बात कर रहे ललित कुमार और बात कर रहे मुकेश कुमार जी से, और बड़ा अच्छा बात बतल के कि जे पौधा लगाना चाहिए, केना लगाना चाहिए और सरकारी योजना की छे, केना ओकरा समझने फायदा उठाओ पारे छे, लाभ उठाओ पारे छे मनरेगा के तहत।
0: बिल्कुल।
2: आरो है एकरो प्रस्तुत करता है अतुल कुमार प्रियदर्शन। तो चलो कार्यक्रम में आगे बढ़े छे और सुने छे कुछ संदेश।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners, starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
2: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
6: संदेश का सुनला के बाद एक बार फैनू से सभ्य श्रोता भाई बहन के स्वागत करे छे उनको पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी में।
7: बिल्कुल अगलो भाई, अभी हम लोगों ने सुना कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने जरूरी होते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि उस पेड़ पौधे वाले वनों में रहने वाले वन्य प्राणियों के लिए भी बहुत ही जरूरी होते हैं।
6: छेबे करे हो है जे वन्य प्राणी हो छे वो प्रकृति के अमूल्य धरोहर हो छे।
7: बिल्कुल,
6: केना कि वन्य प्राणी भी है धरती का अच्छा रखे में, स्वस्थ रखे में, स्वच्छ रखे में, हरा भरा रखे में जे छे अपनो हाथ बटावे छे।
7: बिल्कुल,
6: यह वास्ते वन्य प्राणी भी प्रकृति के अमूल्य धरोहर के ओकरो बचाए कर रखे के अपनो सनी कर्तव्य होना चाहिए।
7: बिल्कुल होना चाहिए। और इसी विषय पर पूर्व प्रसारित वार्ता के माध्यम से आइए हम अपने श्रोताओं को विस्तार पूर्वक बताते हैं।
8: यहाँ तो पूरी सृष्टि ही प्रकृति की सुंदर रचना है, किंतु समस्त प्राकृतिक प्राणियों में वन्य प्राणी प्रकृति की गोद में निवास करने, प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि करने एवं पर्यावरण संतुलन में सहयोग करने के कारण विशेष स्थान रखते हैं। इन समस्त प्राणियों को संभाव से देखना वैदिक काल से ही भारतीय दर्शन रहा है। इस उपनिषद में वर्णित एक श्लोक का अर्थ है, संपूर्ण ब्रह्मांड तथा इसके समस्त प्राणी प्रकृति की संपत्ति हैं, अर्थात कोई प्राणी दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है, अतः प्रकृति पर

समस्त प्राणियों का समान अधिकार है। वन्य प्राणी का तात्पर्य सामान्यतया ऐसे जानवर व अन्य प्राणी से है जिन्हें मनुष्यों द्वारा पालतू न बनाया गया हो अथवा जो अपने प्राकृतिक वास स्थानों में पाए जाते हैं। ये वन्य प्राणी संसार के सभी परितंत्रों इकोसिस्टम में पाए जाते हैं जिनमें रेगिस्तान, वन, घास भूमि, मैदान, पर्वत और शहरी क्षेत्र सभी शामिल हैं। सिंह, बाघ, हाथी, सियार, सुअर, लकड़बग्घा जैसे कुछ वन्य प्राणी यदि जंगलों पर्वतों में रहते हैं तो गिलहरियाँ, कबूतर, चमगादड़ जैसे वन्य प्राणी शहरों में भी बसते हैं। इस पृथ्वी पर प्रकृति विभिन्न जलवायु वाले भौगोलिक क्षेत्रों में संतुलित ढंग से रहने के अभ्यस्त जीवित प्राणियों का एक विषम जाल प्रस्तुत करती है। इन प्राणियों का जल चक्र, कार्बन चक्र, खनिज चक्र जैसे कई जैव भू रासायनिक चक्रों के द्वारा वातावरण के साथ आवश्यक तत्वों के लेन देन का चक्र सतत चलता रहता है और इस तरह

में प्राचीन काल से ही शाही समारोहों की शान रहा है। गणेश का मुख हाथी का होने के कारण इसे शुभ माना जाता है। शक्ति के प्रतीक के रूप में सिंह स्थापित है, जो अपने शारीरिक सौष्ठव के कारण जंगल का राजा और शक्ति की देवी दुर्गा की सवारी के रूप में प्रतिष्ठित है। इसी तरह कितने वन्य प्राणी ऐसे हैं जो अपनी खूबियों और खूबसूरती के कारण मानव समाज एवं संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ऐसे वन्य प्राणियों में हिरण, खरगोश, बाघ, चीता प्रमुख हैं। जानवर की तरह पक्षी का भी प्राचीन काल से ही मनुष्य से अटूट नाता रहा है। पक्षी जहाँ एक ओर हमारे जीवन में आनंद प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण संतुलन में मदद करते हैं। कुछ ऐसे पक्षी हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों, मक्खी, मच्छर, इल्ली, दीमक को खाकर फसलों की रक्षा करते हैं। चील, गिद्ध, कौवा, पक्षी पर्यावरण के सफाई कर्मी की तरह काम करते हैं। ये मृत पशुओं तथा गंदगी को खाकर पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। शक्करखोरा, फूलचूही जैसी कई चिड़ियाँ फूल के पराग को दूसरे फूल तक पहुँचाते हैं और परागण की क्रिया में मददगार साबित होते हैं। कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो वृक्षारोपण के कार्य द्वारा वन को समृद्ध करते हैं। ये पक्षी कठोर आवरण वाले बीजों को खाते हैं तो उनका आवरण हट जाता है और उनके बीज के साथ निकले बीज सरलता से जमीन पर उग जाते हैं। इतना ही नहीं, ये पक्षी पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हमें सूचना भी देते हैं। जिस क्षेत्र में कोयल और खंजन दिखे वह क्षेत्र प्रदूषण मुक्त तथा जिस क्षेत्र में हेरान, स्टिल्ट जैसे पक्षी दिखे वह क्षेत्र प्रदूषित होने का सूचक माना जाता है। इस तरह यह कहना सही है कि पक्षी मानव बिना जीवित रह सकता है, किंतु मानव का पक्षी बिना जीवित रहना कठिन है। आज मानव की स्वार्थपूर्ण नीति के कारण वन्य प्राणियों की कई प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के निमित्त वनों का कटना, समुद्री तट का अतिक्रमण करना, वन्य प्राणियों का शिकार करना, कृषि उद्योग परिवहन के लिए प्राकृतिक वास स्थान का घटना, जल विद्युत परियोजना के कारण प्राकृतिक वास स्थान को क्षति पहुँचना, पर्यावरण के अनेक अजैव घटकों जैसे वायु, जल, मृदा के प्रदूषण से अम्ल वर्षा एवं ओजोन परत का अपक्षय जैसी स्थितियों का उत्पन्न होना, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा का आना, ये सभी ऐसे कारण हैं जिनसे वन्य प्राणियों की प्रजातियों का तेजी से ह्रास हो रहा है। इस ह्रास से जैव विविधता में कमी आई है। एक अनुमान के अनुसार वन नाशन से उत्पन्न भूमंडलीय तापन से जानवरों और पौधों की 12,000 प्रजातियां नष्ट होने के कगार पर हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की कुल पक्षी प्रजातियों में से 72% पक्षी प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इस प्रकार विलुप्त होते जा रहे वन्य प्राणी का संरक्षण कैसे हो, यह वैश्विक चिंता का विषय है। पूरे विश्व में वन्य प्राणी के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्रियाशील हैं। इस दिशा में भारत सरकार ने भी कई ठोस कदम उठाए हैं। इसने वन्य जीवों के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्थापना की और राष्ट्रीय स्तर पर वन सेवा की शुरुआत की। भारत के सभी प्रदेशों में वन्य प्राणी संरक्षण हेतु राज्य स्तरीय वन विभाग भी स्थापित है। वन सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी की स्थापना भी की गई है। संसद द्वारा वन्य जीवों से संबंधित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में बनाया गया। इसके अलावे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 जैसे कई कानून वन्य प्राणी एवं पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित बनाए गए हैं। पूरे देश में वानिकी शिक्षा के विस्तार के लिए 8 भारतीय वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। संकटग्रस्त प्राणियों को 8 श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, जिसे रेड डाटा सूची की संज्ञा दी गई है। इससे काला हिरण, एक सींग वाला गैंडा जैसे संकटग्रस्त प्राणियों के संरक्षण संबंधी कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिलता है। बिहार में तरुमित्र, प्रतिवेश तथा प्रयास नामक गैर सरकारी संगठन भी इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। संकटग्रस्त वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए कई परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं। बाघों के संरक्षण हेतु बाघ परियोजना, घड़ियाल तथा हिम तेंदुआ के लिए क्रमशः घड़ियाल और हिम तेंदुआ परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है, जहाँ के प्रजनित बच्चों को बाद में प्राकृतिक

0: प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया जाता है। भारत में वन्य प्राणियों एवं उनके वास स्थानों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान या विहार तथा वन्य जीव अभयारण्य या शरण स्थल स्थापित किए गए हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 92 उद्यान तथा 500 वन्य जीव अभयारण्य हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्य प्राणियों, वनस्पतियों तथा ऐतिहासिक वस्तुओं को उसके मूल स्वरूप में सुरक्षित रखने के कानूनी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। इस क्षेत्र में प्राणी की किसी प्रजाति को मारना दंडनीय अपराध होता है। हिरण, नीलगाय एवं अन्य प्राणी के लिए हजारी बाघ हाथी जैसे प्राणी के लिए डाल्टनगंज स्थित बेतला, उत्तरांचल राज्य के नैनीताल स्थित कार्बेट, बाघ तेंदुआ जैसे वन्य प्राणी के लिए मध्य प्रदेश के मांडला स्थित कान्हा, विशेषकर बाघ के लिए पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरवन, बाघ चीतल सांभर जैसे प्राणी हेतु मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित शिवपुरी, हाथी एवं अन्य प्राणी के लिए असम स्थित मानस, बाघ के लिए राजस्थान स्थित रणथंभौर, पक्षी विहार के रूप में प्रसिद्ध बिहार राज्य के दरभंगा स्थित कुशेश्वर स्थान तथा बेगूसराय जिला स्थित कांवर क्षेत्र। ये सभी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं जहाँ वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं उनके सहज प्राकृतिक विकास का वातावरण देने का प्रयास किया जाता है। जंतु अभयारण्य प्रशासकीय आदेश से सुरक्षित ऐसे क्षेत्र को जंतु अभयारण्य कहा जाता है जहाँ वन्य प्राणी अपने प्राकृतिक वास स्थानों में सुरक्षित रहा करते हैं। ऐसे अभयारण्य में लुप्त होने के कगार पर पहुँचे प्राणी की प्राकृतिक अवस्था में जनसंख्या वृद्धि के प्रयास किए जाते हैं। असम स्थित काजीरंगा, तमिलनाडु स्थित अनामलाई, गुजरात स्थित गिरवन, कर्नाटक स्थित बांदीपुर, तमिलनाडु के नीलगिरी स्थित मुदुमलाई, उड़ीसा स्थित चिल्का झील, राजस्थान के भरतपुर शरण स्थल देश के ऐसे मुख्य शरण स्थल हैं जहां संकटापन्न पशु पक्षी के संरक्षण का ध्यान रखा जाता है। वन, वन्य प्राणी, पर्यावरण, मानव सभी अंतर संबंधित हैं। इन सब के बीच संतुलन का होना परम आवश्यक है। अतः समाज में इन सब के प्रति जागृति पैदा करने का प्रयास होना चाहिए। विश्व स्तर पर 26 नवंबर पर्यावरण संरक्षण दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस जैसे कई दिवस मनाए जाते हैं जो हमें प्रकृति, पृथ्वी और पर्यावरण के प्रति जिम्मेवारी का बोध कराते हैं। ऐसे अवसरों पर विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा प्राकृतिक संतुलन की दिशा में कारगर कदम उठाने की चेतना जागृत करने की जरूरत है। कुल भूभाग के अपेक्षित 33% की जगह मात्र 19.39% भूभाग में ही स्थित वन जैसी प्राकृतिक संपदा के विनाश, विवेकहीन दोहन तथा कुप्रबंधन से हम वर्तमान समय में संकट झेल ही रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए भी समस्या एवं संकट पैदा कर रहे हैं। विज्ञान और तकनीकी के सहारे हम चाहे जितनी उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएं, पर प्रकृति के प्रतिशोध से नहीं बच सकते। उत्तराखंड की विनाश लीला इसका ज्वलंत उदाहरण है। प्रकृति का विनाश करके हम अपने भविष्य का विनाश कर रहे हैं। वन एवं वन्य प्राणी का संरक्षण करके ही हम अपने आधुनिक वैज्ञानिक विकास को आधार दे सकते हैं, स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, वन्य प्राणी हमारी प्रकृति की अमूल्य धरोहर है और इसकी रक्षा करना भी हमारा ही दायित्व है।
2: तभी हम स्नेह पूर्व प्रसारित वार्ता सुन लिए। वार्ताकार छे रविंद्र कुमार सिंह और कतना अच्छा बात बतलके कि वन्य जीव जे छे ओकरो संरक्षण करना हम लोग के दायित्व होय छे और है समाज में सब के बीच में है जागृति फैलाना भी चाहिए कि वन्य प्राणी, वन्य जीव जंतु जे छे वह प्रकृति के संरक्षित करे में अपनो हाथ बटावे छे। ये वास्ते ओकरो जे छे अच्छा असर रखना छे, ओकरो संरक्षण करना छे।
1: बिल्कुल,
2: आरो जैसे तभी है धरती अच्छा बनलो रहते।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए देवी गीत सुनते हैं, आइए।

0: The future feels effortless with the Grand Vitara because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence, and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology, along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
1: Nexa.
2: बिल्कुल अकलू भाई, हमारे किसान भाइयों के लिए मौसम संबंधी जानकारी भी बहुत जरूरी होता
3: एकदम,
2: है।
3: एकदम एकदम। तो चलो झट से हम असली मौसम सूचना बता दिए।
2: बिल्कुल।
3: तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि 12 जुलाई के पहना तक जिला में एक दो स्थान पर गरज आरु चमक के साथ आंधी चले आरु हल्का सा मध्यम वर्षा के अनुमान छे।
2: बिल्कुल।
3: ज्यादा से ज्यादा तापमान 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड आरो कम से कम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना छे।
2: बिल्कुल।
3: सापेक्ष आर्द्रता भोर में 80 से 50

0: 80%, जबकि दोपहरिया में 50-55% रहे के संभावना छे। पूर्वानुमान अवधि में 15-16 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से दक्षिण पूर्वी हवा चले के भी अनुमान छे।
1: बिल्कुल, और वहीं पर धान की फसलों के लिए कुछ समसामयिक सलाह भी है अकलो भाई कि पिछले कुछ दिनों में हुई वर्षा का लाभ उठाते हुए धान की सबौर दीप किस्मों जैसे प्रभात, शुष्क सम्राट, सहभागी की बुआई 10 जुलाई तक करें। बुआई से पूर्व बीजों का कार्बेंडाजेम प्रति 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करें तथा 10 से 15 दिन की नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई करें, और मध्यम अवधि वाले किस्मों जैसे कि राजेंद्र नीलम, राजेंद्र कस्तूरी एवं राजेंद्र श्वेता की रोपाई कर सकते हैं। धान की किस्मों सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि की सीधी बुआई भी कर सकते हैं। और वहीं पर श्री अन्न जिसे कि मोटे अनाज की खेती हेतु उचास भूमि का चयन करें, और मरवा की वकुला KMR 316, GPU 67, VL 379, राजेंद्र मरवा RU 8 एवं RU 3 तथा कौनी की राजेंद्र कौनी 1 किस्मों की बुआई कर सकते हैं। और वहीं कुछ पशुपालक भाइयों के लिए भी सलाह है कि माह के अंत तक भैंसों का ब्यांत शुरू हो जाता है, ब्याने वाले भैंस पशु का विशेष ध्यान रखें। गलघोटू एवं लकड़ी रोग से बचाव के लिए जून माह में टीके नहीं लगाए हों तो इस माह में अवश्य लगा लें।
0: तो आरो आवे वाला दिन में वर्षा की संभावना को देखता हुआ खड़ा फसल में सिंचाई अभी रोकी दो, और खाद कीटनाशक के छिड़काव जब आकाश साफ रहते तभी ये करना
1: चाहिए।
0: इसलिए मौसम सूचना और कृषि संबंधी समसामयिक सलाह, और अब हम असनी लगे हाँ जैसे एक 12 मासा सुनी छे गोल्डी कुमारी और सहेली सा।
1: बिल्कुल।

0: आरो अब चलो समय हो रहल छै प्रायोजित कार्यक्रम सुनै के, तो चलो सभी मिलिक सुनै छियै प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान।
1: आयुष्मान ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुआर सासाराम के सौजन्य से।

0: पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में आप सबों का एक बार फिर से राजेश, जी हाँ मेरा नाम राजेश है, स्वागत करता है। ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं, आपके घर आंगन में लेकर आते हैं कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहें। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा करते हैं आपके इस कार्यक्रम में। बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, कोई भी हो, सारे लोगों की बात होती है, हेल्दी रहने की बात होती है। विशेषज्ञ डॉक्टर आते हैं, जानकारियां दिलवाते हैं। जी हाँ, ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के मातहत चलने वाला मेडिकल कॉलेज, नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। बहुत ही उम्दा अस्पताल, 1200 बेड का ये अस्पताल है और NMCH अपने आप में पूरे इलाके के हेल्थ सेक्टर को संभाले है। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड पर भी यहां इलाज किया जाता है। ऐसे इस अस्पताल की एक विशेषता बताएं कि यहां से पैसे के लिए कोई वापस नहीं जाता। नोट करें नंबर कि अगर आपके पास कोई समस्या है घर में, बाहर, उसके बाहर, उसके बाहर, यानी जहां भी समस्या है, इस फोन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं और सही लगे तो जाकर अपना इलाज भी करवा सकते हैं। नंबर नोट करें, नंबर है, ध्यान से सुनिएगा, नंबर बता रहे हैं और संकोच नहीं करना है कि हम फोन करें कि नहीं करें। नंबर है 6206803040, 6206803040, ये नंबर है। आप दिल खोल कर, हाँ, कहीं से संकोच नहीं कीजिएगा कि हाँ क्या इस समय फोन करें कि कब फोन करें। नहीं नहीं, हमने आगे से आपके लिए ये नंबर दिया है, फोन करने के लिए नंबर दिया है, तो शर्माने की या सकुचाने की या संकोच करने की या आहा इफ बट ये सोचने की जरूरत नहीं है। आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहें, हमारा पहला और अंतिम मकसद यही है। हम बच्चों की भी बात करते हैं, समय समय पर डॉक्टर रजत कालरा को भी लेकर आते हैं क्योंकि बच्चों के इलाज के लिए, उसके हृदय के इलाज के लिए अगर कोई समस्या है बच्चे के हृदय में, तो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बहुत ही उम्दा व्यवस्था है। आज हमारे साथ रजत कालरा है, लेकिन हम कहेंगे कि वो खुद से अपना परिचय दें क्योंकि बहुत सारे लोग, हाँ, इस कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं क्योंकि फोन कॉल्स बताते हैं। कोई कहता है पहली बार मैंने सुना, कोई दूसरी बार सुना, कोई कहता है हमने आपको फोन किया था। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है और आप अपना परिचय पहले खुद से दीजिए पूरे बिहार और झारखंड के लोगों को।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रजत कालरा है, मैं एक हार्ट सर्जन हूँ, यानी मैं हार्ट के ऑपरेशन करता हूँ, खासकर बच्चों को जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उसका हम नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में अब इलाज कर रहे हैं। मैंने अपनी ट्रेनिंग दिल्ली एम्स से करी थी और उसके बाद खासकर बच्चों की ट्रेनिंग के विषय में मैं अमेरिका से ट्रेनिंग लेके वापस इंडिया आया और इस समय पिछले 2 सालों से नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में हम बच्चों के हार्ट का फ्री इलाज कर रहे हैं।
0: डॉक्टर साहब, बातचीत की शुरुआत करते हैं और बच्चों की बात होगी, उसके हार्ट की बात होगी, हृदय की बात होगी, लेकिन कुछ अटपटा सा नहीं लगता है कि बच्चों में हार्ट की बीमारी, हाँ, क्या कहना चाहिएगा इस पर?
1: देखिए, आज से 10 साल पहले तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं,

0: बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम होना अविश्वास था, खासकर गांव जैसे जगहों पे। पर अब धीरे धीरे खासकर डिजिटल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से लोगों में अवेयरनेस तो आ रही है कि हाँ रेडियो के वैसे कि भाई ऐसी अवेयरनेस है कि बच्चों को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। बट अब मेन प्रॉब्लम है उसका डायग्नोसिस करना। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं, आउटरीच प्रोग्राम बढ़ रहे हैं, तो अब समय पे डायग्नोसिस हो पाता है जिससे उनको माता पिता को इतला दे पाए कि भाई इस वजह से बीमारी है। और फिर वो सोचते हैं, आगे हिम्मत करते हैं, कुछ इलाज कराते हैं, कुछ ओपिनियंस देते हैं। बट पहले और अब में ये फर्क है कि धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है।
1: क्या लोगों में विश्वास आ रहा है क्या?
0: देखिए, जैसे जैसे बच्चे ठीक होके जा रहे हैं, कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और पहले हमारे पास लोकल पेशेंट आते थे, अब सीतामढ़ी, मोतिहारी, झारखंड के अलग अलग इलाकों में, बनारस से, यहाँ तक कि दिल्ली NCR से भी पेशेंट आ रहे हैं।
1: कार्यक्रम चल रहा है आयुष्मान, पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान में राजेश हूँ, आप सबो के घर आंगन में, आपके आपके आपके आकाशवाणी केंद्र से ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। सारे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, खास करके जब बच्चों की बात आती है, आप बड़ों की भी बात आती है, तो हम चाहते हैं कि आप सेहतमंद रहें, जानकारियां आप तक भरपूर रहे कि कोई समस्या आए तो आप सही जगह जा सकें। एक फोन नंबर भी बताते हैं कि आप इसे डायल करके जानकारियां ले सकते हैं। नंबर है 6206803040, 6206803040। ये नंबर है और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, ये बच्चों के लिए जो हार्ट की समस्या या इस तरीके का जो आपने आपके नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो चिकित्सा दी जाती है, अकेले या आपकी पूरी टीम है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए पूरे बिहार वालों को, क्योंकि विश्वास एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है हेल्थ सेक्टर में, खास करके और खास करके जब बच्चों की बात आती है।
0: कहते हैं ना, प्लेयर इज एज गुड एज अ टीम, है ना। तो ऐसे ही केवल डॉक्टर के अकेले होने से हार्ट का इलाज नहीं हो पाता, तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सुविधा चाहिए, टीम चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो सब इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तभी हम डिलीवर कर पा रहे हैं। और ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि पूरे देश भर में कुछ ही गिने चुने सेंटर हैं जहाँ पे बच्चों का इलाज सब्सिडाइज कॉस्ट या फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, खासकर जहाँ पे वजन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे 10 किलो के ऊपर के बच्चे, उन्हीं का इलाज हो सकता है, लेकिन हमारे सेंटर में हम वजन पे कोई मायने नहीं रहता, बच्चे की गंभीरता पे देखा जाता है, चाहे 2 किलो का हो, 2.5 किलो का हो, और अगर बहुत सीरियस है जिसको इलाज की जरूरत है, हम लोग वो भी आयुष्मान में फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं।
1: इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, आपके जो साधन हैं, हाँ, उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या क्या है यहाँ?
0: देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, मॉडलर ओटी है, ICUs में हेपा फिल्टर लगे हुए हैं, मॉडलर ICUs हैं, वेंटिलेटर अप टू डेट है, यानी सारा इक्विपमेंट जो भी एक एडवांस कार्डियक सेंटर में होना चाहिए, देश में नहीं विदेश में, वो भी हमारे पास। ये एक क्वार्टनरी केयर सेंटर है, यानी यहाँ पे सीरियस मरीजों के इलाज किया जाता है, तो बाय वर्चू ऑफ दैट हम 24 घंटे सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं।
1: अच्छा, एक बात डॉक्टर साहब ये बताइए कि बच्चों में हार्ट की समस्या कब आती है, क्या गर्भ में या गर्भ से बाहर जब बच्चा जन्म लेता है, और क्यों क्यों होता है ये ऐसी तरीके की समस्या बच्चों में, कैसे आती है?
0: जो बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे पनप रहा होता है गर्भ में, तभी हो जाता है। तो ये पता तभी लगता है ऑफ कोर्स जब बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन आजकल एंटीनेटल इकोज होते हैं, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तो इको के जरिए बच्चे की हार्ट की सेहत भी देखी जा सकती है, ताकि ये प्लान करके डिलीवर कर सके। अब दूसरा, ये होता क्यों है? तो हर 3 या 4 बच्चे, हर 1000 में से 3 या 4 बच्चों को ये कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन, यानी हार्ट के बनावट में दिक्कत आ जाती है। तो इसका कोई एक कारण नहीं है, मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं। तो इसीलिए ये केवल भारत में ही नहीं, विकसित देशों से भी हटाई नहीं जा सकती, तो वहां पे भी उतना ही इंसिडेंट

0: इंपॉर्टेंस है जितना हमारे यहाँ है, तो कोई इसका एक विशेष कारण नहीं है। और ये इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप में दोष ढूंढा जाए।
1: कोई कारण पता नहीं चल पाया है इसका, डॉक्टर साहब का कहना है। कार्यक्रम चल रहा है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान, बच्चों के हृदय रोग क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इलाज होता है, कार्डियक सर्जरी क्या होती है, ये सारी चीजों पर डॉक्टर रजत कालरा से बातचीत चल रही है। और ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम रोहतास बिहार की तरफ से। 6206803040, 6206803040 ये नंबर है। इस पर आप डायल करके जानकारियां हेल्थ से संबंधित ले सकते हैं, या नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में क्या क्या सेवाएं दी जाती है इसके विषय में भी जानकारियां ली जा सकती है। वैसे हम आपको बताएं कि आयुष्मान कार्ड से यहां इलाज होता है। डॉक्टर कालरा, एक छोटा सा सवाल, क्या मैल न्यूट्रिशन भी इसका कारण हो सकता है, क्या हम ढूंढ सकते हैं क्या?
0: देखिए, मैल न्यूट्रिशन जहां तक बोला जाए, जैसे फोलिक एसिड डिफिशियंसी है, उसकी वजह से कुछ हद तक हो सकता है। पर बहुत सारे समाज में लोग हैं जो मेल नरिश नहीं है, खासकर माता पिता, हाँ फॉरेन में भी होता है, तो फिर वहां पे क्यों हो रहा है ये, राइट? तो कहीं पे मल्टी फैक्टोरियल बोलते हैं, थोड़ा सा जेनेटिक्स, थोड़ा सा खान पान, थोड़ा सा रहन सहन, तो मल्टीपल चीजें बनकर ये कॉज करती है। तो किसी एक चीज को एलिमिनेट कर दें तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा जिससे इसका इंसिडेंस कम कर सकें। हाँ, ये जरूर है कि फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, कुछ दवाइयाँ जैसे वॉरफरिन हो गया, लिथियम हो गया, इनको अवॉइड करना चाहिए, जिनकी वजह से पता है हमको कि हार्ट बनावट में प्रॉब्लम हो सकता है। बट बहुत सारे कारण हैं, सबको नहीं, एक पिन पॉइंट से नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से ही हार्ट की प्रॉब्लम।
1: अच्छा, एक बात डॉक्टर रजत कालरा, फटाफट, हाँ, लोगों तक जानकारियां पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
0: अभी हम लोग एक तो आउटरीच ओपीडीज कर रहे हैं, खासकर सीतामणि, मोतिहारी, फिर जमुई, इधर देवघर, बनारस, जौनपुर, तो इन जगहों पे जाकर कम्युनिटी में लेवल पे जाकर स्क्रीनिंग करके वो कर रहे हैं। फिर दूसरा ये है कि जगह जगह एडवर्टाइजमेंट्स यानी पोस्टर्स लगा रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे कि यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। और तीसरा है कि ऑडियो मीडिया जैसे रेडियो या प्रिंट मीडिया, अखबार में एडवर्टाइजमेंट्स, इनके जरिए कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक बेस्ट इज कम्युनिटी मैसेज, जितने बच्चे ठीक होकर जाएंगे वो एक दूसरे को बताएंगे, माउथ पब्लिसिटी, उसी से ही कॉन्फिडेंस। और
1: बहुत अच्छी पहल है डॉक्टर रजत कालरा, आप ओपीडीज में जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जाकर बता रहे हैं एडवर्टीजमेंट, और इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हमारी रीच करोड़ों लोगों तक होती है ना, जिसमें हम बताते हैं कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के तहत जो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है क्या क्या सुविधाएं दे रहा है, जन सेवा में खड़ा है। बहरहाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारे सवाल शेष रह गए हैं, अगले एपिसोड में हम आपसे बातचीत कर जानेंगे। पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका में अभी बातचीत चल रही थी डॉक्टर रजत कालरा से, बच्चों के डॉक्टर हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि चिकित्सा का जो स्थान है ना, वो भरोसा है, और आपका भरोसा हमें मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जमुआर सासाराम रोहतास में, जी हाँ, आयुष्मान कार्ड से इलाज होता है, पैसे के चलते कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता। नंबर नोट करें, 6206803040, 6206803040 ये नंबर है। तो बस आज हमें, यानी अपने दोस्त राजेश को दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह नहीं 15 दिनों के बाद फिर से मुलाकात होगी, क्योंकि ये है पाक्षिक स्वास्थ्य रेडियो पत्रिका आयुष्मान। हाँ, संकोच नहीं कीजिएगा, चलें, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और जिंदगी का भरपूर मजा लेते रहिए।
2: आयुष्मान,
1: नमस्कार।
2: ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे थे नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, जमुआर सासाराम के सौजन्य से।
3: हाँ अकलू भाई, लाखो भाई आबे जे छौ समय कहि रहलो छौ विदा ले वास्ते
4: बिल्कुल
3: तो अगला कार्यक्रम में अगला दिन करबे खूब बातचीत आरो सुनबे कुछ गीतलाद भी
4: बिल्कुल
3: आरो वार्ता भी सुनबे तो चलो यही वादा और इरादा के साथ अब सब से विदा ले छे सबका अकलू के नमस्कार
4: और साथ ही लाखों का भी नमस्कार
5: श्रोताओं आप सुन रहे थे हमारे दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से कृपया प्रतीक्षा करें

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टैक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन में झारखंड सरकार ने प्रस्तुत किया रोड मैप। 1150 करोड़ का निवेश रोड मैप तैयार। राज्य में SIR की प्रक्रिया जारी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया, अब तक 82% से अधिक मतदाताओं का हुआ मैपिंग। रथ मेले की तैयारियां तेज। पुलिस महानिदेशक ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती का दिया निर्देश। नेता प्रतिपक्ष से मिले रिम्स 2 निर्माण से प्रभावित रैयत, समस्याओं से कराया अवगत। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरा। और सरायकेला खरसावां जिले में CISCI जोनल कबड्डी प्रतियोगिता शुरू। कोल्हान प्रक्षेत्र के 16 विद्यालयों के लगभग 800 विद्यार्थी ले रहे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने झारखंड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित सुशासन और डिजिटल नवाचार का राष्ट्रीय मॉडल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन का आखिरी दिन आज राज्य सरकार ने विजन 2050 और प्रस्तावित AI नीति 2026-21 का विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत किया। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 1,150 करोड़ रुपए के निवेश से राज्य में AI आधारित डिजिटल इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने राज्य सरकार पर निवेश के लिए उपयुक्त माहौल बनाने में असफल रहने का आरोप लगाया है। श्री वर्मा ने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी स्टार्टअप इंडिया में राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। उन्होंने ट्रेजरी घोटाले को लेकर भी राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया।
1: प्रदेश में जिस तरह से इन्वेस्टमेंट के नाम पर राज्य सरकार या ये कहें कि मुख्यमंत्री जी झारखंड की जनता को बेवकूफ लगातार बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि अगर सबसे बड़ा धोखा कोई होता है तो वो होता है सपना दिखाना और सपने को तोड़ना।
0: राज्य में इन दिनों मतदाता सूची के विशेष ग्रहण पुनरीक्षण SIR के तहत BLO द्वारा मतदाताओं से ई न्यूमरेशन फॉर्म भरवाया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि वर्तमान में 82% से अधिक मतदाताओं का मैपिंग कार्य पूरा कर लिया गया है। इधर राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण की धीमी गति पर चिंता व्यक्त की है।
2: BLO को जो कार्य करना चाहिए वो घर घर जाने में असमर्थ हैं। साथ ही साथ जिस बूथ के BLO हैं वहीं पर आम मतदाता को बुला करके फॉर्म देने का काम कर रहे हैं। आयोग का ये कहना है अगर BLO पर सख्ती नहीं किया गया जो SIR का जो सपना है हमको नहीं लगता है कि वो पूरा होता हुआ दिख रहा है।
0: ऐतिहासिक जगन्नाथपुर रथ मेले के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी है। पुलिस महानिदेशक DGP तदाशा मिश्रा की अध्यक्षता में आज रांची में मेले के सफल आयोजन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में DGP ने अधिकारियों को मेला क्षेत्र तथा रथ यात्रा मार्ग पर निगरानी बढ़ाने, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करने और महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए

0: विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर योजना का उद्देश्य घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर लोगों को मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना का लाभ झारखंड और बिहार के लोगों तक पहुंचाने के लिए आज हजारीबाग में सांसद मनीष जायसवाल ने फ्रेंचाइजी केंद्र का उद्घाटन किया। मौके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस योजना का लाभ लेकर लोग बिजली बिल देने से मुक्त हो सकते हैं और सोलर पैनल से उत्पादित बिजली बेचकर आर्थिक रूप से संपन्न भी हो सकते हैं।
1: पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से 10 किलोवाट तक का जो है सोलर पैनल इन्वर्टर के साथ आपके घर पे लगाने का प्रावधान है, उसमें केंद्र सरकार से आपको 78,000 रुपए का सब्सिडी मिल जाता है। 78,000 का सब्सिडी मिलता है। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा और दूसरा फायदा है कि आज जो पावर कट का झंझट जो है उससे भी आप।
0: झारखंड उच्च न्यायालय में आज JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा फल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति MS सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी को किसी तरह की राहत नहीं देते हुए याचिका खारिज कर दी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश से @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से आज रिंग 2 निर्माण से प्रभावित रैयत और ग्रामीणों ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री मरांडी को समस्याओं से अवगत कराया और सहयोग की अपील की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नगरी में रिंग 2 के निर्माण को लेकर राज्य सरकार हठधर्मिता पर अड़ी है। श्री मरांडी ने कहा कि बेकार पड़ी बंजर भूमि पर रिंग 2 का निर्माण होना चाहिए।
2: जिद पर सरकार अड़ी होंगे, जिस जनता को आज वो उजाड़ रही है वही लोग आने वाला सरकार को लोग उजाड़ देगी। भाई हर खेती की जमीन आदिवासियों की है और आप हॉस्पिटल के नाम से जबरदस्ती आप उसको छीन रहे हैं। लोग विरोध कर रहे हैं, लोग लोगों से मिल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि भाई सभी पॉलिटिकल पार्टी को और राज्य की जनता को भी ऐसे लोगों को साथ दे।
0: प्रवर्तन निदेशालय ED ने जमीन कारोबारी कमलेश कुमार सिंह की लगभग 66 एकड़ जमीन जब्त कर ली है। गौरतलब है कि ED ने जमीन कारोबारी द्वारा जमीन की खरीद बिक्री की जांच के दौरान यह पाया था कि वह कांके और नगरी अंचल में 66 एकड़ जमीन में से कुछ का फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दिया है। इससे पहले जाँच के बाद कारोबारी सहित अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और जाँच जारी है। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP ने आज 78वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान रांची के मोराबादी स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मौके पर अधिवक्ता राजेश कृष्णन ने कहा कि ABBP का इतिहास गौरवशाली रहा है और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है।
3: आज अगर देश हमारा जिस जगह पर खड़ा है, मुझे ये लगता है कि इसमें सबसे बड़ा हक और योद्धा ABBP है। इसका सामाजिक इंसान, इसका नेशनल कंट्रीब्यूशन और सामाजिक संरचना में उसी जो भूमिका रही, मेरे विचार से आज समाज का हर व्यक्ति हर कौन विकास की ओर जा रहा है।
0: उधर हजारीबाग में ABBP के स्थापना दिवस पर मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। रांची महानगर कांग्रेस छात्रों की गूंज मुहिम के तहत 12 जुलाई को रांची में छात्र मैराथन का आयोजन करेगा। मोराबादी मैदान में आयोजित इस मैराथन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में छात्र हिस्सा लेंगे। मैराथन के संयोजक कुमार राजा ने अधिक से अधिक छात्रों को इसमें शामिल होने की अपील की है।
4: कैंपेन का मंशा यही है, उनको बताएं कि किस तरीके से उनके भविष्य के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम चिंतित और आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपको पेपर लीक मुक्त परीक्षा मिले। दूसरा, अगर भर्ती परीक्षा का कैलेंडर आए और छात्र को बता रहे कि किस समय पे कौन सी परीक्षा होने वाली है जिसको उसको भी नौकरी भर्ती मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया अभियान की परिकल्पना को जमीनी स्तर पर साकार करते हुए सरायकेला खरसावां जिले के जेवीएस स्कूल परिसर में आज से CISCI जोनल कबड्डी प्रतियोगिता शुरू हुई। दो दिवसीय इस खेल महाकुंभ में कुल्हान प्रक्षेत्र के 16 विद्यालयों के लगभग 800 विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन में झारखंड सरकार ने प्रस्तुत किया रोड मैप। 1150 करोड़ का निवेश रोड मैप तैयार। राज्य में SIR की प्रक्रिया जारी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया अब तक 82% से अधिक मतदाताओं का हुआ मैपिंग। रथ मेले की तैयारियां तेज। पुलिस महानिदेशक ने की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा। पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती का दिया निर्देश। नेता प्रतिपक्ष से मिले रिंग्स 2 निर्माण से प्रभावित रैयत, समस्याओं से कराया अवगत। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरा। और सरायकेला खरसावां जिले में CISCI जोनल कबड्डी प्रतियोगिता शुरू। कुल्हान प्रक्षेत्र के 16 विद्यालयों के लगभग 800 विद्यार्थी ले रहे हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गायिका रेणु भारतीय की प्रस्तुति। आरंभ में सुनिए एक लोकगीत।

श्रोताओं कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं एक सोहर।

I am.

धीरे धीरे।

मच्छर करे हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकगीत में गायिका रेणु भारतीय के गाय लोकगीत। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आगे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: पशुपालक भाई बहन, अत्यधिक गर्मी में पशुओं के रख रखाव का कृपया ध्यान रखें।
2: पशुओं को लू से बचाने के लिए छायादार जगह पर रखें। पशु घर को ठंडा रखने के लिए जूट की टाट लटकाकर उसे गीला रखें। उन्हें दिन में 2 से 3 बार नहलाएं, 3 से 4 बार ठंडा और साफ पानी पीने को दें। खाने में अजोला घास, चोकर और जौ की मात्रा बढ़ा दें। चराने के लिए सुबह जल्दी और शाम को देर से भेजें। लू लगने पर नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें।
1: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: और इस गीत के बाद
4: छाया गीत।

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: AIR at 90.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1 करोड़ राशन कार्ड बनाने के दिए निर्देश। किसानों के लिए 12 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया संबोधित। घुसपैठ रोकने के दिए सख्त निर्देश। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के अभिषेक कुमार और राजद की रेखा गुप्ता ने दाखिल किया नामांकन। और मौसम विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश में 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने आज पटना में केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागीय योजनाओं के लाभार्थियों का डेटाबेस तैयार करने और राशन वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बिहार की ऑनलाइन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन की सराहना की। श्री जोशी ने कहा कि बिहार की विकास प्राथमिकताओं और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में केंद्र सरकार हर संभव सहयोग देती रहेगी। बैठक के दौरान बिहार के अक्षय ऊर्जा रोडमैप, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी किसानों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक एग्रीकल्चर फीडर से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री अशोक चौधरी, ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा सभी जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। समाचार कक्ष से निधिश्री।
0: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अवैध घुसपैठ, सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी और ड्रोन से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करना आवश्यक है। श्री शाह आज नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके साथ ही श्री शाह ने जनसांख्यिकी बदलाव पर नजर रखने और घुसपैठ पर प्रभावी नियंत्रण के लिए समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। सम्मेलन में बिहार सहित देश के सभी सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी अभिषेक कुमार ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, सांसद रविशंकर प्रसाद, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। नामांकन के बाद आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार को कोई चुनौती नहीं है और उनकी जीत निश्चित है।
2: एक सांसद रविशंकर जी, दूसरे सांसद नितिन रवि जी और तीसरा आपका, आपने यानी बंटी जी को एक एक वोट देकर जिताया तो आपका विधायक और उससे बंटी जी बन गया। नितिन रवि जी के जो दूर संग्रह और बंटी जी के कंधे पर वो भार दिया गया है। एनडीए का एक एक कार्यकर्ता लगकर एक एक बूथ का एक एक घर तक जाकर अपने उम्मीदवार अभिषेक बंटी को जिताना है।
0: चुनावी सभा को जदयू के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी संबोधित किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रत्याशी

0: अभिषेक कुमार ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि उन्हें कहीं से कोई चुनौती नहीं है।
1: हमारे राजनीतिक गुरु थे, इनके साथ काम करने का मौका मिला, सीखने का मिला और इनके साथ बहुत ही कुछ सीखे हैं। बहुत भरोसा है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो काम किए हैं उस काम को आगे बढ़ाना है और उनके विश्वास पर खरा उतरना है। बांकीपुर की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे।
0: इधर राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता ने भी अपना नामांकन पर्चा भरा। मौके पर राजद समेत महागठबंधन के विभिन्न घटक दलों के नेता मौजूद थे। श्रीमती गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि उपचुनाव में उनकी जीत तय है।
2: बांकीपुर की जनता धोने का काम करेगी और यहीं से पूरे सरकार को आईना दिखाया जाएगा और एक नया इतिहास लिखेगा बांकीपुर के साथ। अभी तो उन्होंने तो जातिगत राजनीति कर दी ना, अपना उत्तराधिकारी उतार दिया।
0: जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर 11 जुलाई को अपना पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई तक निर्धारित है जबकि उम्मीदवार 16 जुलाई तक नाम वापस ले सकते हैं। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के तबादले के लिए पोर्टल आज से चालू हो गया है। इसके माध्यम से शिक्षक स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार ने स्थानांतरण की नीति बनाई है। उन्होंने कहा कि तबादले के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी हो चुकी है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को पेयजल की समस्या वाले विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने इस संबंध में सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र निर्गत किया है। पत्र में कहा गया है कि ऐसे विद्यालयों की सूची 10 जुलाई तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व न्यायालयों में मुकदमों की सुनवाई से संबंधित दस्तावेजों और साक्ष्यों की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। अब राजस्व न्यायालय में केवल ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज और साक्ष्य ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके साथ ही भौतिक रूप से कागजात जमा करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। एक रिपोर्ट।
3: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली RCMS के माध्यम से सभी आवश्यक दस्तावेज और अतिरिक्त साक्ष्य ऑनलाइन अपलोड किए जा सकेंगे। इसके लिए आवेदक बिहार भूमि पोर्टल पर जाकर RCMS में लॉगिन करेंगे, संबंधित न्यायालय का चयन करेंगे और फाइल केस ऑनलाइन तथा एड केस रिकॉर्ड विकल्प के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर अपने सभी दस्तावेज RCMS पोर्टल पर अपलोड करें क्योंकि अब केवल ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज ही मान्य होंगे। समाचार कक्ष से कामिनी ठाकुर।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
4: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कटिहार के अहमदाबाद में सबसे अधिक 108.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है।
1: राज्य के उत्तरी भाग के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है। दक्षिणी भाग कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पश्चिम

0: पश्चिमी चंपारण जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने चलने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत अरवल जिले के 20 गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। उप विकास आयुक्त शैलेश कुमार ने बताया कि चयनित गांव में सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, स्कूल, स्वच्छता और विद्युत आपूर्ति सहित सभी आधारभूत संरचनाओं का विकास किया जाएगा। वहीं शेखपुरा जिला प्रशासन ने जिले के अनुसूचित जाति बहुल 21 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी शेखर आनंद ने बताया कि चिन्हित गांवों में 10 मानकों पर काम करते हुए अंतिम व्यक्ति तक सभी सरकारी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में सिवान में पदस्थापित उत्पाद निरीक्षक अंकेश कुमार कुंड के पटना, मुंगेर और सिवान स्थित 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जांच एजेंसी ने उसके दानापुर स्थित आवास पर छापेमारी की। इसके अलावा मुंगेर और सिवान स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। सिवान में अंकेश कुंड के भाई से जांच टीम ने लंबी पूछताछ भी की है। उत्पाद निरीक्षक पर आय से 200% अधिक लगभग 2,38,00,000 रुपए की संपत्ति बनाने का आरोप है। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग, एसएसपी और पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। घटना वाल्मीकिनगर वन क्षेत्र के धनैया गांव की है। आक्रोशित लोगों ने कार्रवाई में लगी एक जेसीबी मशीन में आग लगा दी और कई वाहनों में तोड़फोड़ की। घटना में वन विभाग के कई कर्मियों के घायल होने की सूचना है। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हैं। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भूटान के थिम्पू में आयोजित 16वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में पटना के आदित्य राज ने कांस्य पदक जीता है। उन्होंने 75 किलोग्राम भार वर्ग में यह उपलब्धि हासिल की है। गया जिले के बोधगया थाना क्षेत्र के सिजुआ गांव के पास एक कार और ट्रक के बीच टक्कर के बाद कार में आग लग गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। कार चालक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत परमालपुर के पास एक तेज रफ्तार ट्रक के अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा जाने के कारण चालक और खलासी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गया जिले के परैया थाना क्षेत्र में रोलर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पटना के अमहरा थाना क्षेत्र के बबवनलई गांव में पुलिस ने शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक तस्कर को 13 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। नवादा जिले के कादिरगंज बाजार में एक कपड़े की दुकान में आग लग जाने से लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। पुलिस ने शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया है। पूर्णिया में आज जिला स्तरीय गजेटियर प्रारूप प्रकाशन समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और विकास संबंधी तथ्यों तथा विभागीय आंकड़ों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने अधिकारियों को जिले के इतिहास, धरोहर स्थलों और अद्यतन आंकड़ों को शामिल कर तथ्यपरक और त्रुटि रहित गजेटियर तैयार करने के निर्देश दिए। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में सुपौल जिले ने जून महीने की रैंकिंग में राज्य भर में पहला स्थान हासिल किया है। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 1 करोड़ राशन कार्ड बनाने के दिए निर्देश। किसानों के लिए 12 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया संबोधित। घुसपैठ रोकने के दिए सख्त निर्देश। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के अभिषेक कुमार और राजद की रेखा गुप्ता ने दाखिल किया नामांकन। और मौसम विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48

0: मिनट से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है पश्चिम चंपारण जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष कुमार।
1: पश्चिम चंपारण जिले में मानसून का असर दिखने लगा है। पिछले 3 दिनों से जिले में लगातार बारिश जारी है। बारिश के बाद किसानों ने खेतों में तैयार धान के बिचड़े से रोपनी शुरू कर दी है। वहीं नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी फाटक आंशिक रूप से खोल दिए गए हैं। इससे नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। आज गंडक नदी में 88,300 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बीते दिनों नगर विकास एवं आवास विभाग की 3 सदस्यीय जाँच टीम बेतिया पहुँची। संयुक्त सचिव सुनील कुमार अध्यक्षता में टीम ने नगर निगम के कनीय अभियंता सुजय सुमन पर लगे आरोपों की जांच की। करीब 4 घंटे तक अभिलेखों और फाइलों की जांच की गई तथा संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की गई। यह जांच उप महापौर गायत्री देवी की शिकायत के आधार पर की जा रही है, जिसमें कनीय बहाली और वित्तीय अनियमितताओं समेत कई आरोप लगाए गए हैं। इधर बेतिया अंचल कार्यालय के RTPS काउंटर पर तैनात कलर्क राजकुमार मिश्रा को निगरानी विभाग की टीम ने 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। श्री मिश्रा पर जमीन की जमाबंदी अनलॉक करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। निगरानी विभाग ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले के योगापट्टी प्रखंड के सारांश कुमार ने गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने रिदमिक पेयर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर जिले और बिहार का नाम रोशन किया है। गौरतलब हो कि इस प्रतियोगिता में 78 देशों के 500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। जिले के नरकटियागंज प्रखंड के सोमगढ़ पंचायत निवासी प्रगतिशील किसान आनंद सिंह अपनी एकीकृत खेती के मॉडल को लेकर चर्चा में है। वे मत्स्य पालक, जैविक खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों से बेहतर आय अर्जित कर रहे हैं, साथ ही करीब 25 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। आनंद सिंह ने बताया कि बायो क्लॉक तकनीक और जैविक खेती से कम लागत में अधिक उत्पादन संभव है। उनका यह मॉडल दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बन रहा है। जिले में बीते दिनों जिला बिसूत्री समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। जिला प्रभारी मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने अधिकारियों को योजनाओं का समय पर और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय के साथ काम कर पश्चिम चंपारण को विकास के क्षेत्र में आदर्श जिला बनाने पर जोर दिया। इधर जिले के विभिन्न पंचायतों में सहयोग शिविर आयोजित किए गए। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने आवास, राशन कार्ड, नल जल, शौचालय, नली गली समेत अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़े समस्याएं रखी। नरकटियागंज प्रखंड के हरसरी पुरैनिया पंचायत में आयोजित शिविर में केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे भी शामिल हुए। उन्होंने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। इधर जिले में ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पंचायतों में विकास कार्य तेज किए गए हैं। सड़क निर्माण, मिट्टीकरण, पौधारोपण समेत अन्य योजनाओं में बड़ी संख्या में मजदूर को रोजगार मिला है। उप विकास आयुक्त काजदेव वैभव नितिन ने बताया कि जिले के 318 पंचायतों में 51,000 से अधिक श्रमिक विकास कार्यों में लगे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। पश्चिम चंपारण जिले के नौतन प्रखंड में पशुपालन विभाग की ओर से अनुदानित दर पर बीते दिनों ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां का वितरण किया गया। जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर रामचंद्र कुमार रवि ने बताया कि योजना का उद्देश्य पशुपालकों की आय बढ़ाना और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना है। लाभुकों का चयन ऑनलाइन आवेदन के आधार पर किया गया। बीते दिनों वाल्मीकि नगर के बेलवा घाट स्थित संगम तट पर ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर 156वीं नारायणी गंडकी महाआरती का आयोजन हुआ। भारत और नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। उन्होंने पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा में भागीदारी निभाई। बेतिया में भाजपा की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के सचेतक और पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह ने केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियां बताई। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समेत अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ पश्चिम चंपारण के बड़ी संख्या में लोगों को मिल रहा है। पश्चिम चंपारण जिले में मुहर्रम का पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। पर्व को लेकर बेतिया और बगहा पुलिस जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। जिले के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सभी थाना क्षेत्र में शांति समिति की बैठकें आयोजित कर लोगों से आपसी भाईचारे और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की अपील की गई।
0: अभी आप सुन रहे थे पश्चिम चंपारण जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आशीष कुमार।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुरलहरी। सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में आज आप सुनेंगे गायक कलाकार राकेश कुमार की प्रस्तुति। आरंभ में सुनिए निदा फाजली का लिखा गीत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरलहरी में गायक कलाकार राकेश कुमार की प्रस्तुति। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा। फिल्म संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म टशन से।

ये गीत गाया है उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर ने, विशाल और शेखर का संगीत है और इसे लिखा है कौशर मुनीर ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म संघर्ष से।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म प्यार किया तो डरना क्या का ये गीत। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं। इस गीत को संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने और इसके बोल लिखे हैं समीर ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं अगला गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म सड़क से।

नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत फिल्म सड़क का है। अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज़ है और इसे लिखा है समीर ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते एक जरूरी संदेश।
1: Effortless with the Grand Vitara, because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology, along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
0: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीकंधा। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए फिल्म राज से। इस गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम और श्रवण ने। समीर ने इसके बोल लिखे हैं। आवाज़ है अलका याग्निक की।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया है से। इस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, संगीत है नदीम श्रवण का, समीर ने इसके बोल लिखे हैं।

0: A diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the e-Vitara. Get instant acceleration at every tap. Smooth, silent drives on every road with ADAS Level 2, 7 airbags, a range of 534 km and running costs of under ₹1 per km. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the e-Vitara today. Visit your nearest Nexa showroom.
1: Nexa.
2: श्रोताओं कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म दिल है तुम्हारा का ये गीत। इसे गाया है सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों ने। नदीम श्रवण का संगीत है, समीर ने इसके बोल लिखे हैं।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: अवसर पर न्यूजीलैंड के राजस्व और जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
1: ऑकलैंड में वाइटाकरी इंडियन एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक समारोह में न्यूजीलैंड में बसे भारतीय समुदाय के आर्थिक योगदान पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी और उसके व्यापक आर्थिक प्रभाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय समुदाय उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य, खुदरा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए इन्फोमेट्रिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रेड ऑल्सन ने कहा कि भारतीय समुदाय न्यूजीलैंड के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले समुदायों में से एक है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। ये समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमीट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बदलने के लिए बुनियादी विज्ञान में मजबूत आधार होना अत्यंत आवश्यक है। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
4: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि वैज्ञानिक क्षमता विकसित भारत की आधारशिला है। नाइजर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत

कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए फिल्म अब्दुल्ला से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, आनंद बख्शी ने इसके बोल लिखे हैं और संगीत है राहुल देव बर्मन का।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी ने इसके बोल लिखे हैं। आइए सुनते हैं गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म लावारिस से। इस गीत को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी और आनंद जी ने, बोल लिखे हैं अनजान ने, आवाजें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में अब आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म प्रेम रोग से। इस गीत को गाया है सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर ने। संतोष आनंद है इसके गीतकार और इसे संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गायक कलाकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से गायन प्रस्तुति आप सुनेंगे राग जय जयवंती में।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आपने सुना गायक कलाकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से गायन प्रस्तुति राग जय जयवंती में। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाना सफ़र।

कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए तीन देवियाँ, कई लोकप्रिय गीत। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसके बोल लिखे हैं। संगीत है सचिन देव बर्मन का, आवाज़ है किशोर कुमार और साथियों की।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म प्रेम पुजारी का ये गीत। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और साथियों ने। सचिन देव बर्मन का संगीत है, नीरज ने इसके बोल लिखे हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म सरस्वती चंद्र से। इस गीत को गाया है मुकेश ने।

श्रोताओं कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म गुमराह का गीत। इस गीत को गाया है महेंद्र कपूर ने, संगीत है रवि का और इसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने।

कैफी आजमी ने इसके बोल लिखे हैं, संगीत है मदन मोहन का, आवाज़ है लता मंगेशकर की। फिल्म हीर रांझा से सुनिए ये गीत।

श्रोताओं कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म सफर का ये गीत। इस गीत को गाया है मन्ना डे और साथियों ने। हिंदी वर ने इसके बोल लिखे हैं कल्याण जी, आनंद जी का संगीत है।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाना सफर। कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में आए परिवर्तनकारी महत्वपूर्ण बदलाव का स्वागत करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए व्यापक सहयोग ढांचे को अंतिम रूप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज कहा कि तीसरा वार्षिक भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की बेहद सफल राजकीय यात्रा का समापन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता एंगस टिलर से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG का भी दौरा करेंगे। दोनों नेता इस अवसर पर ऐतिहासिक भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सहयोग रोडमैप का अनावरण भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन तीनों सीटों के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा। ये तीनों नेता हाल ही में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। केंद्र सरकार जल्द ही फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए E85 ईंधन शुरू करने की योजना बना रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसकी कीमत E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम होगी। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना और सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। ईरान ने अमेरिका पर आज बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास

0: And results. The National Commission for Women, that is NCW, to reconstituted a high-level expert committee amid growing concerns over irregularities in the rapidly expanding assisted reproductive technology, that is ART, sector. The panel will undertake a comprehensive review of the regulatory framework and concerned laws governing IVF clinics, ART centers and gamete banks, with a focus on protecting the reproductive rights, dignity and safety of women. Former judge of the Delhi High Court, Justice Asha Menon, will chair the expert committee. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। हम कल प्रातः 5:48 पर कल के सभा के कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। अभी अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।